एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 की आश्विन मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 8 अक्टूबर 2026 प्रातः के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रथम प्रसारण सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6 बजने को हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ये आयोजन 10 तारीख तक चलेगा। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही ये सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध कराएगा। आईएमसी 2026 का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। ये डिजिटल नवाचार अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी आधारित विकास में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसके लिए सभी का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को गुजरात के वडनगर से शुरू हुई बाइक सेवा यात्रा भी कल काशी में सम्पन्न हो गई है। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिन का शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और

0: लागत को कम करना है। भारत ने अमरीका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने तथा वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों पर रोक लगाने के उपायों का आह्वान किया गया है। 15 भागीदार देशों द्वारा हस्ताक्षरित ये संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय USTR ने कल रात जारी किया। बयान में देशों ने बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों को समाप्त करने सहित संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन को खत्म करने के उपाय करने का आह्वान किया। आज वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम है यानी अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार है। चाइना ओपन टेनिस प्रतियोगिता में आज महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। कैरोलिना मुचावो का सामना निकोला बार्तुनकोवा से होगा, वहीं मीरा एंड्रीवा का मुकाबला एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा से होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम, माही, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज का चिंतन। चिंतन का विषय है सड़क, तो सुनते हैं चिंतन।
2: वर्तमान में हम सुगमता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं। सुगम यात्रा के लिए पक्की सड़क का होना आवश्यक है। आवागमन के लिए सड़क एक महत्वपूर्ण माध्यम है। पूरे विश्व में आने जाने के लिए रेल व हवाई मार्गों के अतिरिक्त सड़क मार्गों का एक विस्तृत नेटवर्क है। सड़कों का वर्तमान स्वरूप कच्चे रास्तों और पगडंडियों का परिवर्तित रूप है। जो चमचमाते सड़क राजमार्ग हम देखते हैं, उन तक पहुंचने का साधन पगडंडियां रही हैं और सड़क के विकास की एक लंबी कहानी है। अलग अलग रूप में हम सड़क को जानते हैं, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ते हैं, फिर स्टेट हाईवे जो किसी राज्य के बड़े शहरों को आपस में जोड़ते हैं। इसके साथ ही ग्रामीण सड़कें हमें विभिन्न गांवों से रूबरू कराती हैं। पहिए के आविष्कार के साथ ही मनुष्य को सड़क की आवश्यकता महसूस हुई होगी। आरंभ में पत्थर के चौके या ईंटें बिछाकर सड़क बनी। तकनीकी विकास के साथ साथ कोलतार की सड़कों का जाल बिछने लगा। वर्तमान में सीमेंट कंक्रीट की सड़कें बनाने पर जोर है। कंक्रीट की सड़कों को अधिक टिकाऊ माना गया है। इसके अतिरिक्त बीच बीच में प्लास्टिक सड़क की चर्चा भी हमें सुनाई देती है। जब सड़क बनी होगी तब उस पर चलने वाले वाहनों और आम जन के लिए कुछ नियम भी बनाए गए थे, जिन्हें आज हम यातायात नियमों के रूप में जानते हैं। विभिन्न शहरों में सड़क के बीच डिवाइडर या मार्ग विभाजक बनाए जाते हैं ताकि यात्री के लिए भी कुछ नियम बने हुए हैं। अलग अलग देशों में सड़क पर चलने और वाहन चलाने के नियम वहां की आवश्यकता के अनुरूप हैं। अलग अलग प्रकार की सड़कों पर वाहन चलाने की गति भी अलग अलग होती है। शहर में विभिन्न बाजारों व कॉलोनियों की सड़कें अतिक्रमण के शिकार है। कॉलोनियों में सड़क सीमा में लंबे रैंप या सीढ़ियां बनाकर रास्तों को संकुचित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त हम यातायात नियमों का पालन करने में भी कोताही बरतते हैं। हमें एक नागरिक के तौर पर सड़क पर चलते समय ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए और सड़क पर किसी भी प्रकार से अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, क्योंकि सड़क हमारी सुविधा के लिए है।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन, ये आकाशवाणी है। आप सुन रहे हैं जयपुर अजमेर का आमेर चैनल। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का।

कार्यक्रम का अंतिम भक्ति गीत सुनिए, रविंद्र उपाध्याय और ज्योत्सना जावड़ा और साथियों के स्वर में।

0: शाम 6:45 पर।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत के अंतर्गत वंदना कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM बैंड 101.3 MHz पर। प्रातः के 6:30 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

चित्रकूट पहुंचकर श्री राम को देखते ही भरत हे नाथ रक्षा कीजिए कहकर रूखे सूखे बांस की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत और राम का इस प्रकार का हृदय स्पर्शी मिलन देखकर उपस्थित लोगों को अपनी सुधि न रही। कैसे वर्णन किया जाए इस प्रेम मिलन का, जो कवि के कर्म मन और वाणी तीनों की पहुंच से परे है। भरत श्री राम का प्रेम ऐसा अगम्य है जहां ब्रह्मा विष्णु और महादेव का मन भी नहीं पहुंच सकता। संभवतः इसी कारण दोनों भाइयों का मिलन देख देवता इस आशंका से भयभीत हो गए कि श्री राम को अयोध्या लिवा ले जाने में भरत सफल न हो जाएं। किंतु देवगुरु बृहस्पति के समझाने पर उनका भय जाता रहा और उन्होंने भ्रातृप्रेम के इस अभूतपूर्व दृश्य पर पुष्प वर्षा की। श्री राम सहज प्रेम से शत्रुघ्न से मिले।

और फिर केवट निषाद राज से, भरत और लक्ष्मण और फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न का मिलन हुआ। भरत और लक्ष्मण ने सीता के चरणों की रज अपने माथे पर धारण की। स्नेह और शील का ये अद्भुत दृश्य है, जहां उपस्थित सभी लोग प्रेम और आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। कोई न कुछ कहता है, न ही कुछ पूछता है। तब निषादराज बोले, हे नाथ, कुलगुरु वशिष्ठ जी के साथ सभी माताएं, नगर निवासी, सेवकगण, सेनापति, मंत्री सभी आपके वियोग में व्याकुल यहां आए हैं।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब आपको रूबरू करवाते हैं कार्यक्रम विवरण से। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आप जानेंगे आज दिन भर में प्रसारित होने वाले शेष रहे कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण और उनका प्रसारण समय।

सुगम संगीत आप सुनेंगे ठीक सुबह 9:10 पर और सुबह 11:00। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय रहेगा ठीक सुबह 9:30 पर।

हमारी केंद्रीय से प्रसारित फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं सुबह 11:30 पर और रात्रि 10 बजे से। युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युवा वाणी आप सुनेंगे ठीक शाम 5:05 पर।

0: आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल को आपने ट्यून किया है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:45 हो चुके हैं। आप प्रस्तुत है किसान भाइयों और बहनों का अपना कार्यक्रम खेती नी बात।
1: खेती नी बात कार्यक्रम हमारा वारा सभी किसान भाइयों ने निबुन ने वीणा बहनों राम राम राम राम। किसान भाइयों देखो अभी आ धीरे धीरे करीने आपणे जे खरीफ फसल ने कटाई नो समय है एम नजदीक आवी रह्यो थको है। किसान भाई ने अगली फसल यानी कि रबी फसल ने बुवाई ने तैयारी भी करवी पड़ी रही है। खरीफ फसल है जेम जेम पाके ने नजदीक आवे तो आपणे ने रबी फसल ने तैयारी हरू भी चिंता बढ़ी जाए। किसान भाई देखो खास करीने रबी फसल ने बुवाई है ये आपणे समय माथे भी करवी जरूरी है। पण देखो रबी फसल बीज है मिट्टी है खाद है सिंचाई है इनी तैयारी है पहले थे कि शुरू कर देवी है इनी तैयारी करेने पसे राखवी है ताकि आपणे जी पैदावार है ये आपणे अच्छी खासी लई शक। आवा वाला समय हरू बुवाई वक्त आपणे देरी ने लागे ने जल्दी आपणे करी दे पण खास करीने रबी फसल ने बुवाई अगर आखरी समय ऊपर तैयार थई गई खेत तैयार थई गयो बीज आपणे जुटावे ने खाद नी व्यवस्था है ई आपणे करी दीधी तो ठीक ने तो पसे समय आवी जाय रबी फसल ने अच्छी पैदावार हरू आपणे ने अच्छो खेतर भी तैयार करवी जरूरी है। जेम कि हवे आ खरीफ फसल है पूरी तैयार थई गई है तो ई भी आपणे ने काम आवी पड्यु है। बीजो रबी फसल हरू आपणे खेतर बीजो तीजो तैयार करवू है इने भी आपणे ने चिंता आवे बढ़ी गई है। तो किसान भाई चिंता बढ़वा

0: योगेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
1: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
0: लेप्रोसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
2: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान।

0: है कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पजिशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझ भैया?
1: पंडित जी देखो ना, फ्लैट खरीदने में
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है।
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट है।
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं,
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: इस लोक भजन के साथ ही कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 7:20 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम वातायन। वातायन के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर सीमा शाह से कहानी। कहानी का शीर्षक है घना अंधकार।
1: सुबह सुबह बाबूजी अखबार के पन्नों पर नई खबरों की उम्मीद में झुक झुक कर पढ़ते। उनकी आंखों की पुतलियां चमक उठती और कोई खबर उन्हें उत्साहित भी नहीं करती। उनके बायफोकल चश्मे से घिसे हुए कांच के बीच से उनकी आंखों के तरंगे उठती साफ देखी जा सकती थी और वे न्यूज पिटारा मन के अंतस में परत दर परत समेट लेते। शाम को जब मैं ऑफिस से घर लौटता तो वे आराम कुर्सी पर बैठे मुझसे दिन भर की बातें और अखबार की सुर्खियों से रूबरू करवाते। मैं अच्छे श्रोता की तरह सुनता, उनकी पीठ सहलाता और ऊपरी मंजिल पर चाय के लिए आ जाता। वहां भी दोनों बच्चों की चिल्लों और पत्नी निशी का घर पुराण। मैं सोचता कि क्या घर की परिभाषा अब इतनी जटिल होती जा रही है कि आदमी उम्र से अधिक बूढ़ा होने लगता है। हर किसी की आकांक्षा और विशेष पत्नी बच्चों की ख्वाहिशें पूरा करते करते वह भूलने लगता है अपना वजूद, अपना अस्तित्व। शायद यही सब चलते चलते सोच, व्यवहार, आदतें इन संस्कारों पर हावी होने लगती है जो बचपन में माता पिता ने सुई से धागों में पिरोए थे। आज ही घर में पिक्चर देखने का प्रोग्राम बना और हमारा परिवार बाबूजी को घर में ताले में बंद कर एंजॉय की दिशा में चल पड़ा। छोटे से फ्लैट में वे कब आराम कुर्सी पर गर्दन औंधी कर निद्रा मग्न हो जाते पता ही नहीं चलता। ताला खोलने के बाद बाबूजी को जगाकर बिस्तर पर सुलाना मेरी ड्यूटी थी। खैर, समय पंख लगाकर उड़ता जा रहा था। आज महाशिवरात्रि थी, उन्हें मंदिर जाना था। मुझे देख उनका मन ममता से भीग गया। आज जल्दी आ जाना, ऑफिस से मुझे मंदिर ले चलना। मुझे मालूम था कि मैं उनकी अभिलाषा पूरी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ऑफिस में आज एक पार्टी थी और मुफ्त का खाना पीना छोड़कर मंदिर नहीं, यह नहीं हो सकेगा। मैंने निशी को बताया कि वह आज रिक्शे से

बाबूजी को मंदिर ले जाए। अगले दिन सुबह मुझे मालूम पड़ा कि निशु को बच्चों का होमवर्क करवाना था, इसलिए वह नहीं ले जा पाई। खैर बात आई गई हो गई। ऐसी कई कई बातें जो माँ के जाने के बाद घटित होती थी पर्दे में छिप जाती और पता ही नहीं चलता कि कौन किसको छील रहा है। पर बाबूजी का तार तार होता मन लगता था, रो रो कर उनकी आंखों की पुतलियां लीचियों की मानिंद धुंधली दिखाई देती। आजकल बाबूजी की शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता साफ नजर आती। वे कब से उठ जाते, दरवाजे खिड़की खोले बिना ही अंधेरे में बैठे रहते। नाश्ता भी निशी उनके कमरे में ही पहुंचा देती, क्योंकि मेरे बच्चों को दादाजी के मैले कपड़ों से दुर्गंध आती। आजकल वे ज्यादातर समय खामोश रहते। तमाम तरह की आयुर्वेदिक गोलियां टोटके और हर 15 दिन में उनके वैद्य मित्र का डॉक्टर लड़का उनको चेक करने आ जाता। वह उनका बड़प्पन था कि कोई फीस नहीं लेता और निशी चाय का भी नहीं पूछती। बुरा नहीं मानता, बल्कि अंकल जी स्वस्थ रहें उन्हें दवा खाने की ताकीद देकर चला जाता। पिछले कई सालों से बाबूजी भोजन के बाद एक कटोरी दही जरूर खाते। उन्होंने किताबें छानकर यह साबित कर दिया था कि इससे दिल की बीमारी को रोका जा सकता है। कमरे में कांच की शेल्फ के ऊपर तमाम तरह के डिब्बे जिनमें बिस्किट मुरमुरे खट्टी मीठी गोलियां तरह तरह के चूर्ण खाना खाने के बाद चलते फिरते उनका मुंह चलता ही रहता। बाबूजी के पलंग के नीचे एक छोटी सी लोहे की पेटी थी। कभी कभी वे उसे टटोलते, कई यादगार लम्हों से रूबरू होकर हंसते या रोने लगते। उनमें हाथ घड़ी पाइप सिंगार के खाली बक्से माँ के साथ शादी की तस्वीर उनका लावण्य भरा चेहरा इन सब के साथ पुरानी हिसाब किताब की कॉपी जिसमें मेरे चॉकलेट का हिसाब भी लिखा हुआ था। आजकल अखबार की लाइनों पर नीली पेंसिल से नीचे लाइन खींच देते। कभी कभी अखबार की तह में छुपाकर रुपए रखते तो अखबार निशी रद्दी में भेज देती। वे चिल्लाकर चुप हो जाते। अंधेरे में आराम कुर्सी में धस कर सब कुछ खो चुके व्यापारी की तरह बैठे रहते। समय के बोझ से थके मेरे बाबूजी के दिन इसी तरह व्यतीत होते, रातें भी इसी तरह कटती। शायद उम्र के दौर की यह सांझ वेला हर उम्र दराज को झेलनी पड़ती होती है। अकेलेपन का प्रभाव घने से घना होता जाता है। कभी कभी उनकी आंखों के अंचल में अवसाद दिखाई देने लगता। समाज परिवार जीवन की निरंकुशता से बहुत तकलीफ होती तो अंधेरे में सीढ़ियों के नीचे अकेले बैठे रहते। निशी का अनुशासन खींच खींच कर उन्हें और अशक्त और निर्बल बना रहा था। खाने में कमी, बड़बड़ाने में तेजी, लापरवाही का अंदाज, कभी सर्दी खांसी गर्मी का उपद्रव, सभी कुछ खत्म होने पर भी खत्म नहीं होता। उम्र का स्वभाव तेजी से बदलाव के दौर में उपस्थित था। निशी की बहन आज ही आई थी, वह भी सब परिवार। हंसी ठहाकों के दौर चल रहे थे कि प्रोग्राम बना कुल्लू मनाली और आसपास घूम आए। कई दिनों से जा नहीं पाए थे। बच्चों ने भी कहा हमारी छुट्टियां हैं, हमारे पर्यटन की तारीख पर मोहर लग गई। साथ ही ऋषि ने एक वाक्य पर मुझे चौंका दिया कि बाबूजी अब अशक्त हो गए हैं, अतः हमारे शहर के ओल्ड एज होम में उन्हें प्रवेश दिला सकते हैं ताकि उनका बुढ़ापा आराम से गुजरे, हमारा जीवन भी तसल्ली बंद हो जाए। मैं सकते में था, कुछ भी नहीं बोल पाया क्योंकि ऋषि का बोलना निरंतर चालू था। वहां की फीस भी उनकी बहन ने माफ करवा दी थी क्योंकि वह ओल्ड एज होम की डायरेक्टर थी। पैसे और व्यक्तित्व की चमकदार धनी महिला, शायद यह सब उसी ने करा धरा होगा। बाहर रिक्शा आ गया था। बाबूजी व उनका जो भी छोटा मोटा सामान जाने के लिए आ चुका था। दोनों बच्चे फ्लैट की बालकनी से हंसते हुए बाय बाय कर रहे थे। निशी और मैं बाबूजी की इस जीवित विदायगी के साक्षी बन उन्हें रिक्शे में बिठाने की मशक्कत कर रहे थे। मेरा दिल जार जार रो रहा था पर कुछ नहीं कर पा रहा था। बाबूजी अर्थात छायादार बड़ा वृक्ष जिसमें बचपन अपना घोंसला बनाता है, चिड़ियों की चहचहाट और बांसुरी की तान उसमें गूंजती है। अंडे से बच्चा और बच्चे से बड़ा होने तक वह उन्हीं पिता की उंगली पकड़ पांव पर खड़ा होना सीखता है, उनके कांधों पर चढ़कर शहर की गलियों से दोस्ती करता है नन्हा मुन्हा, फिर पिता की आंखों में
अंकुआते हैं।

0: बेटे को हर तरह से बड़ा करने के हजारों सपने, पिता की पीठ पर घुड़सवारी करके सुरक्षा की तहजीब सीखना, मिट्टी में खेलते हुए संस्कारों को संजोना, यही मेरे बाबूजी की चमकती कद्दावर आंखों में बेटे की व्यक्तित्व को निखारने की चाह थी। मुझे एक एक बात रील की तरह मस्तिष्क में फिल्म की तरह चलने लगी। बाबूजी आंसू और मुस्कान का वह समुच्चय जो मेरे दुख में रोए सुख में हंसे, एक ऐसी चिंगारी जो जरूरत के वक्त तब्दील करता है शोले में, जो तपाता है घड़े को, जो अपनी संतान के लिए ढोता है पीड़ाओं के पहाड़, दर्द के हिमालय लेकर दौड़ता है रात और दिन, उफ नहीं करता, ऐसी हजारों हजार बातें कि निशि ने कहा ओल्ड एज होम आ गया है। बाबूजी को रिक्शे से नीचे उतारो और ऑफिस की कागजी कार्यवाही करो। मैं बोझिल कदमों से चल पड़ा यंत्रवत निशि की आज्ञा मानते हुए। मेरे सपनों की अकाल मौत मुझ पर अट्टहास कर रही थी, पर हर विचार सरोकार पर अभिव्यक्ति देने की क्षमता पर विराम लग चुका था। घना अंधकार मेरे आसपास छा रहा था कि गिरते गिरते बचा और बाबूजी ने यह पूछा कि बेटा कहीं चोट तो नहीं आई। रुलाई फूटी पर फिर भी किसी को बोल नहीं पाया। जबान उस अंधकार की कालिमा से लिपटकर कुछ बयां नहीं कर पाई। निशि और मैंने बाबूजी के कागजों पर हस्ताक्षर कर बाबूजी को वहीं छोड़ वहां सबसे विदा ली।
1: इसी के साथ कार्यक्रम वातायन यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM बैंड 101.3 MHz पर। प्रातः के 7:30 होने को हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमें रही प्यार के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दूर का राही इस फिल्म के गाने के साथ किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: कार्यक्रम का अगला गाना प्रिंस फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में फारूक कैसर के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत।

0: आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है
1: ना, बोलो बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
3: वादा, हाँ जी वादा।
4: हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम के बाकी गाने सुनते हैं इस अंतराल के बाद।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमें रही प्यार के। अगला गाना सुनते हैं तुमसे अच्छा कौन है, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में हसरत जयपुरी के बोल और संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए सुनते हैं एक फूल दो माली इस फिल्म से गाना। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में प्रेम धवन के बोल और संगीत है रवि का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली की यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किये। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे, 75 वर्ष की आयु में आज गोवा में निधन। केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज बारिश की संभावना। और मानुष शाह और दिया चिताली की भारतीय जोड़ी ने इतिहास रचते हुए पहली बार चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। कल शुरू हुआ यह आयोजन 10 अक्टूबर तक चलेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष का आयोजन 9 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है।
1: इस वर्ष के आयोजन में 5G और 6G, AI, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण से जुड़े तकनीकी समाधान जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर भी चर्चा की जाएगी। ये कार्यक्रम 4 नए क्षेत्रों स्मार्ट मोबिलिटी, स्टेडियम एक्सपीरियंस, औद्योगिक रोबोट और परिवहन तकनीक पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यक्रम में इस वर्ष 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। साथ ही 500 से अधिक साझेदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप और 900 विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। हमारे संवाददाता ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी।
2: इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य कर अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार जीएसटी व्यवस्था में सुधार के अगले चरण के लिए एक 5 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखेगी। इन प्रस्तावों में प्रशासनिक अड़चनों को स्वचालित और आसान बनाना शामिल है, जिससे खासकर छोटे कारोबारियों पर अनुपालन का बोझ कम हो सके। इस योजना के तहत प्रक्रिया और संरचनात्मक सुधार, जीवन और कारोबार को आसान बनाना तथा सेवाओं के निर्यात और ई कॉमर्स से जुड़े बदलाव शामिल हैं। प्रस्तावित प्रमुख बदलावों में खरीदार और विक्रेताओं के बीच इनवॉइस का स्वतः मिलान, कागजी कार्रवाई कम करना और छोटे कारोबारियों के लिए कई राज्यों में पंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त करना शामिल है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के

0: साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए एक संयुक्त मंत्रिस्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा जारी इस साझा बयान का मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजारी नीतियों पर रोक लगाना है। ये कदम हाल ही में अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के मिलवाकी शहर में हुई G20 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक के बाद उठाया गया है। बयान में कहा गया है कि दुनिया के कई देश अपने स्थानीय उद्योगों, श्रमिकों और अर्थव्यवस्थाओं को ऐसी व्यापारिक विकृतियों से बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं। सभी देशों ने जोर दिया है कि आपसी सहयोग, सूचनाओं के आदान प्रदान और मिलकर की गई कार्रवाई से इन प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 15 भागीदारों में भारत और अमेरिका के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, पोलैंड, तुर्की और ब्रिटेन शामिल है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहे बेदाग जालिम लोशन
3: तो शुरू करें।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे किए हैं। उनकी ये यात्रा सेवा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता की मिसाल रही है। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको ऐसी ही एक पहल के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसमें सेवा और सुशासन की ये सोच धरातल पर दिखाई देती है। ये पहल है केरलम में शुरू की गई कोच्चि वाटर मेट्रो सेवा।
2: कोच्चि के जलमार्ग हमेशा से शहर की पहचान रहे हैं। आज वही जलमार्ग कोच्चि वाटर मेट्रो के जरिए यात्रियों की एक नई पीढ़ी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल 2023 को इसका उद्घाटन किया और अगले ही दिन वाटर मेट्रो ने यात्रियों के लिए सेवा शुरू कर दी। तब से ये शहरी सार्वजनिक परिवहन में एक नई पहल के तौर पर उभरी है जो कोच्चि के द्वीपों को मुख्य भूमि से जोड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वाटर मेट्रो से कोच्चि में ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी।
3: वाटर मेट्रो से कोच्चि के इर्द गिर्द के अनेक द्वीपों में रहने वाले साथियों को सस्ता और आधुनिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। ये जेटी, बस टर्मिनल और मेट्रो नेटवर्क के बीच इंटर मॉडल कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगी। इससे कोच्चि की ट्रैफिक समस्याएं भी कम होगी और बैक वाटर टूरिज्म को भी नया आकर्षण मिलेगा।
2: कोच्चि के लेखक टीएन वेणुगोपाल ने बताया कि वाटर मेट्रो ने शहर में जल परिवहन को बदल दिया है।
4: वाटर मेट्रो ने कोच्चि में जल परिवहन की व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया है। ये अलग अलग द्वीपों और मुख्य भूमि के बीच पहुंच प्रदान करती है। परिवहन के किफायती साधन के तौर पर वाटर मेट्रो धीरे धीरे आम आदमी के लिए एक लग्जरी सुविधा के रूप में उभर रही है। इसने पर्यटन क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है क्योंकि अब देश विदेश के पर्यटक कोच्चि के बैकवाटर्स में वाटर मेट्रो की यात्रा को अपनी यात्रा की योजना का अहम हिस्सा मानते हैं, जिससे सड़कों पर यातायात की समस्या काफी हद तक कम करने में सहायता मिलेगी।
2: कोच्चि भारत का पहला शहर है जहां वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। ये वाटर मेट्रो 15 रूटों पर चलाई जा रही है। वाटर मेट्रो एयर कंडीशनड और बैटरी से चलने वाली नाव है जिनमें चार्जिंग की खास सुविधाएं और यात्रियों के लिए आधुनिक टर्मिनल बने हैं। यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस साल 2 अक्टूबर तक वाटर मेट्रो में 77 लाख से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। 2 अक्टूबर को ही 11,670 यात्रियों ने इस सेवा का लाभ उठाया। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात आबदान में कोटे डी आइवर के उपप्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तेने बिरहामियामा आउत उतारा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों

0: पक्षों ने आपसी विश्वास, क्षमता निर्माण और साझा हितों पर आधारित बढ़ती रक्षा साझेदारी पर चर्चा की। उन्होंने प्रशिक्षण और संस्थागत स्तर पर आदान प्रदान बढ़ाने सहित रक्षा और आतंकवाद निरोध के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया। आबिजान में हुई बैठक में डॉ जयशंकर की घाना, कोटे डी आइवर और इथियोपिया की 5 दिन की आधिकारिक यात्रा का एक हिस्सा है। इस यात्रा का उद्देश्य इन तीनों अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना है। रूस ने यूक्रेन के कीव और करीब 12 अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए 70 मिसाइलें और दर्जनों ड्रोन दागे। यूक्रेन पर किए गए हमले में कल 25 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग घायल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन की सेना ने 44 मिसाइलों को रोक दिया और 117 ड्रोन को निष्क्रिय किया, लेकिन वह पूरे हमले को रोकने में सफल नहीं रही। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए इसे हिंसा के जानबूझकर किए गए प्रदर्शन का रूप बताया। ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हुती ने सऊदी अरब के 2 हवाई अड्डों पर हमला किया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। इस बीच हुती अधिकारियों ने दावा किया है कि विद्रोहियों ने यमन के दक्षिण पश्चिमी तट के प्रमुख इलाकों धुबाब अल जदीद और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य के कुछ हिस्सों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। हालांकि यमन सरकार के एक अधिकारी ने इन दावों को खारिज किया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह गोवा स्थित उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से 75 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। एक श्रद्धांजलि।
1: मैं इंडस्ट्री का हूँ नहीं, मैं यहाँ आता हूँ, काम करता हूँ, वापस भाग जाता हूँ। मैं गांव खेड़े का हूँ और वही का रहूंगा और वही अच्छा लगता है। जरूरत सीमित होना तो बहुत आसान हो जाता है, एसी है नहीं, बड़ा बड़ा मजा आता है। सिर्फ अपने यहाँ शहर में जैसे दीवारें होती है ना, घर में हमारे यहाँ पहाड़ है, इस तरफ पहाड़ ही बीच में हम रहते हैं।
2: अपनी काबिलियत और दमदार अभिनय से सबके दिलों पर राज करने वाले नाना पाटेकर आज हमारे बीच नहीं हैं। सबकी आंखें नम हैं, फिल्म उद्योग से लेकर उनके फैंस के बीच शोक की लहर है। अभिनेता नाना पाटेकर ने 1978 में आई फिल्म गमन से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। नाना ने करीबन 8 वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष किया। फिल्म परिंदा में अन्ना की भूमिका को लोगों ने काफी सराहा।
3: न भाई न बहन न बीवी न बेटा,
4: कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। जाओ जोल।
2: फिर आई 1994 में क्रांतिवीर, जहां उनके दमदार अभिनय को नई पहचान मिली। इसके बाद अग्नि साक्षी, तिरंगा, डॉक्टर प्रकाश, बाबा आमटे द रियल हीरो, नट सम्राट और वेलकम जैसी फिल्मों ने उनकी विरासत को और मजबूत किया। फिल्म अग्नि साक्षी में उनके नेगेटिव किरदार को खूब सराहा गया।
5: क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो, किस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? तो कौन सा तीर मारा, ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर, और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें?
2: अभिनेता नाना पाटेकर फिल्मों में अभिनय से 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं।
4: कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी, कौन समझा उसकी बात को, किसे जगाती वो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी।
2: इसी के साथ उन्हें 3 बार अपनी एक्टिंग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं।

0: नाना पाटेकर ने हिंदी फिल्मों के अलावा मराठी सिनेमा में भी अपना लोहा मनवाया। और अब मौसम का समाचार। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। साथ ही आज बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। खेलों में पेचिंग में मानुष शाह और दिया चिताली ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए डब्ल्यूटीटी चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मानुष और दिया सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय मिक्स डबल्स जोड़ी बन गई हैं। आज भारतीय वायुसेना दिवस है और इस वर्ष का विषय है अचूक, अभेद्य और सटीक। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 साल पूरे होने का समाचार कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री का संकल्प प्रकाशित किया है, भारत के विकसित होने तक न थकूंगा न रुकूंगा। दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रधानमंत्री मोदी

0: वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात का भी चित्र प्रकाशित किया है। आरबीआई द्वारा त्योहारों से पहले रेपो दर बढ़ाने का समाचार भी कई अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, रेपो दर में 0.25% की वृद्धि, कर्ज की किश्त बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने आज भारतीय वायुसेना दिवस पर खबर दी है, जहां हौसलों की उड़ान वहीं भारतीय वायुसेना, 94 साल में बदली वायुसेना की रणनीति। दैनिक जागरण लिखता है, छठी कक्षा में देखा सपना और ऑपरेशन सिंदूर से फलक पर छा गई व्योमिका। नाम के अनुरूप आकाश में उड़ान भरने वाली, देश का गौरव है लखनऊ की बेटी, बनी फौजियों के गांव की बहू। ठंडे इलाके के बजाय गर्म क्षेत्र में आ रहे जीव जंतु, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने किया शोध, हिंदुस्तान की खबर है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडप में होगी। भारत ने अमरीका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे, 75 वर्ष की आयु में आज गोवा में निधन। केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज बारिश की संभावना। और मानुष शाह और दिया चिताली की भारतीय जोड़ी ने इतिहास रचते हुए पहली बार चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी पांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 8:15 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कुछ दिल से।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी बांसवाड़ा के माँ ही चैनल पर आपका अपना कार्यक्रम कुछ दिल से। मैं हूँ आपकी दोस्त और रेडियो होस्ट हीना जैन। स्वागत करती हूँ आप सभी का इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आसमान को देखते हुए हम अक्सर कहते हैं कितना खूबसूरत है ये आसमान, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसी आसमान की ऊंचाइयों पर कुछ वीर जवान हर पल हमारे देश की सुरक्षा के लिए तैयार रहते हैं। जहां हमारे लिए आसमान बादलों, चांद और सितारों की दुनिया है, वहीं हमारे वायु योद्धाओं के लिए यह जिम्मेदारी का क्षेत्र है। आज का दिन उन्हीं वीरों को समर्पित है। 8 अक्टूबर भारतीय वायु सेना दिवस। यह दिन हमें याद दिलाता है कि देश की सुरक्षा सिर्फ सीमा पर खड़े सैनिकों से ही नहीं, बल्कि आकाश की ऊंचाइयों में तैनात हमारे वीर युवा वायु सैनिकों से भी होती है। तो आज का कुछ दिल से समर्पित है उन सबके वीरों को जो आसमान की ऊंचाइयों से भारत की धरती पर रक्षा करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं एक देशभक्ति गीत के साथ।

दोस्तों, भारतीय वायुसेना का इतिहास सिर्फ विमानों और तकनीक का इतिहास नहीं है, ये इतिहास है साहस का, अनुशासन का, समर्पण का और कर्तव्य का। कल्पना कीजिए, जब पूरा देश चैन की नींद सो रहा है, तब कोई जवान अपने मिशन की तैयारी कर रहा होता है। जहां हमारे लिए सुबह सूरज की पहली किरण से शुरू होती है, वहीं किसी वायु योद्धा की सुबह एक जिम्मेदारी के साथ शुरू होती है। राष्ट्र पहले। आसमान में उड़ना शायद बहुत खूबसूरत लगता हो, लेकिन उस उड़ान के पीछे कितनी मेहनत, प्रशिक्षण और अनुशासन होता है, कि सिर्फ वही जानता है जो उस वर्दी को पहनता है। उनके लिए हर उड़ान सिर्फ उड़ान नहीं होती, वह होती है देश के विश्वास की उड़ान।

परसों जब हम आसमान में किसी लड़ाकू विमान को देखते हैं तो कुछ ही सेकंड में वह हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, लेकिन उस कुछ सेकंड की उड़ान के पीछे सालों की मेहनत होती है। कठिन प्रशिक्षण, कड़े अनुशासन, शारीरिक और मानसिक तैयारी, तकनीकी ज्ञान और हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता। एक वायु योद्धा को सिर्फ मशीन नहीं उड़ानी होती, उसे अपने भीतर के डर पर भी विजय पानी होती है, क्योंकि साहस का अर्थ डर का ना होना नहीं है, साहस का अर्थ है डर के बावजूद अपने कर्तव्य को निभाना। और शायद यही हमारे सैनिकों की सबसे बड़ी ताकत है। वे जानते हैं कि मिशन कठिन हो सकता है, रास्ता चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन जब सामने देश का कर्तव्य हो तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। हौसले जिनके आसमान छूते हैं उनके कदम इतिहास लिखते हैं। आइए दोस्तों सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: अरे नेहा, तू इतनी रिलैक्स लग रही है आजकल, क्या सीक्रेट है यार?
2: सीक्रेट नहीं, स्मार्ट मूव है। मैंने लिया है LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
1: ओह रियली, क्या स्पेशल है इसमें?
2: देख, छोटी बचत से बड़ी सेविंग होती है और इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। इसमें गारंटीड एडिशंस मिलते हैं, एडिशनल सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है 3 अट्रैक्टिव ऑप्शंस के साथ, और तो और ऑटो कवर भी है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये प्लान केवल महिलाओं के लिए है, एक्सक्लूसिव।
1: वाह, मुझे भी लेना है यार LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
2: तो अभी विजिट करें LIC.in या अपनी नजदीकी LIC शाखा में संपर्क करें। LIC, हर पल आपके साथ।

दोस्तों, देशभक्ति का मतलब सिर्फ झंडा देखकर गर्व महसूस करना नहीं है। देशभक्ति एक भावना है, लेकिन साथ ही एक जिम्मेदारी भी है। एक सैनिक देश की रक्षा करता है, एक डॉक्टर अपना कर्तव्य निभाकर देश की सेवा करता है, एक शिक्षक बच्चों को अपना भविष्य, उज्जवल भविष्य देकर देश की सेवा करता है, एक किसान अन्न उगाकर देश की सेवा करता है, और हम ईमानदारी से अपना काम करके, नियमों का पालन करके, देश की संपत्ति की रक्षा करके, अपने आसपास के लोगों का सम्मान करके देश के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं। क्योंकि राष्ट्र सिर्फ सीमा पर नहीं बसता, राष्ट्र हम सबके व्यवहार में बसता है। इसलिए आज जब हम वायुसेना के जवानों को सलाम करें, तो साथ में खुद से भी एक सवाल करें, मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूं। शायद यही सवाल हमारी देशभक्ति को एक नई दिशा दे सकता है।

तो दोस्तों अब इसी गीत के साथ समय हो चला है आपसे विदा लेने का। तो आज हमने बात की उस आसमान की जिसे हम रोज देखते हैं, लेकिन आज शायद हम उसे थोड़ी अलग नजर से देखेंगे। जब अगली बार आसमान में भारतीय वायुसेना का कोई विमान दिखाई दे तो सिर्फ उसकी गति मत देखिएगा, उसके पीछे छुपे अनुशासन को महसूस कीजिएगा। उस उड़ान के पीछे छुपे त्याग को याद कीजिएगा और उस तिरंगे को याद कीजिएगा जिसके सम्मान के लिए हमारे वीर हर पल तैयार खड़े रहते हैं। तो दोस्तों इसी देशभक्ति और गर्व की भावना के साथ आज के कुछ दिल से में मुझे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मिलेंगे नए दिन नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त हीना जैन को कहिए अलविदा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम कुछ दिल से।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: FM 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 8:45 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं राजस्थानी लोक संगीत।

0: रेरा राजस्थान भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा, सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट है?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 9 बजने को है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।

कृपया प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पंचायती राज चुनाव के पहले चरण के लिए आज लोक सूचना जारी। 17 जिला परिषदों और संबंधित पंचायत समितियों के सदस्यों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। भारतीय वायुसेना दिवस पर आज जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के तहत एयर शो का आयोजन। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के विमान हवाई करतब दिखाएंगे। और प्रदेश में अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष अभियान में 7,744 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा आज लोक सूचना जारी की जाएगी। इसके साथ ही 17 जिला परिषदों और संबंधित पंचायत समितियों के सदस्यों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन पत्र 13 अक्टूबर तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जमा किए जा सकेंगे। नामांकनों की जांच 14 अक्टूबर को होगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इसी दिन नाम वापसी का समय समाप्त होने के बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची और चुनाव चिन्ह जारी किए जाएंगे। पहले चरण में अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर और हनुमानगढ़ जिला परिषदें शामिल हैं। राज्य में पात्र और नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया के तहत ये विशेष अभियान शुरू किया गया है। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान मतदाता सूची में शामिल होने से शेष रह गए पात्र नागरिकों और 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पात्र युवाओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत 7 दिनों में 57,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। श्री महाजन ने पात्र नागरिकों से इस विशेष अभियान का लाभ उठाने और मतदाता सूची में नाम जुड़वाने तथा अन्य पात्र युवाओं और नागरिकों को मतदाता पंजीकरण के लिए प्रेरित करने की अपील की है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का आयोजन आज से नई दिल्ली के यशोभूमि में शुरू होगा। 4 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में अगली पीढ़ी के डिजिटल बुनियादी ढांचे, तकनीक आधारित आर्थिक विकास और डिजिटल पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी। सुरक्षित डिजिटल तंत्र विकसित करने के साथ वैश्विक सहयोग, निवेश और तकनीकी ज्ञान के आदान प्रदान पर भी विचार किया जाएगा। यह आयोजन दूरसंचार विभाग और भारतीय सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन की ओर से किया जा रहा है। सेवा सेतु अभियान 2026 के तहत बकाया गृह कर और नगरीय विकास कर जमा कराने पर करदाताओं को छूट।

0: दी जाएगी। कल से शुरू हुए अभियान के तहत आयोजित शिविरों में बकाया गृहकर एक मुश्त जमा कराने पर मूल राशि में 50% और शास्ती में पूरी छूट मिलेगी। ये छूट आवासीय और व्यावसायिक भवनों तथा भूखंडों के बकाया गृहकर पर लागू होगी। वहीं वर्ष 2025-2026 तक के बकाया नगरीय विकास कर पर ब्याज और शास्ती पूरी तरह माफ की जाएगी। जयपुर विकास प्राधिकरण में अभियान के तहत जोनवार विशेष सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में नागरिकों को विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ ही उनकी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। जेडीए के उपायुक्त राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि 16 अक्टूबर तक चलने वाले अभियान का उद्देश्य नागरिकों को सरकारी सेवाओं का त्वरित लाभ उपलब्ध कराना है।
1: सरकार की मंशा है कि हर व्यक्ति जो पट्टा लेने के लिए पात्र है उसको पट्टा दिया जाए, मौके पर ही उसकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाए। और ये 7 तारीख से लेकर 16 तारीख तक का ये कैंप है, इसमें समस्त प्रकार की जो सेवाएं, जैसे मान लीजिए लीज होल्ड से फ्री होल्ड है या नाम ट्रांसफर है या अन्य प्रकार की जो भी वो सर्विस लेना चाह रहा है, तो उसमें सभी ने अलग अलग प्रकार की छूट दी हुई है। जो 10 जून का एक सर्कुलर सरकार का निकला था वो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। और कैंप में आने वाले व्यक्ति के लिए 2-3 चीजों की सहूलियत है कि उसको कैंप में आने के बाद लगातार उसका फाइल का मूवमेंट उसको पता रहता है। कोशिश यही रहती है कि जो सुबह आ रहा है तो दोपहर तक या शाम तक वो अपना पट्टा लेके जाए।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है इंडियन एयरफोर्स इनफेलिबल इम्पेनिट्रेबल एंड प्रिसाइज, यानी अचूक अभेद्य और सटीक। दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और अटूट प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि पिछले साल ऑपरेशन सिंधु ने एकीकृत हवाई अभियानों की निर्णायक क्षमता को फिर से स्थापित किया और देश की संप्रभुता की रक्षा करने की सेना की क्षमता और सामर्थ्य को प्रदर्शित किया। वायुसेना दिवस पर आज जोधपुर एयरबेस पर एयर शो आयोजित किया जा रहा है। ये प्रदर्शन वायुसेना के मल्टीलेटरल युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 के तहत होगा। सुबह 10 बजे शुरू होने वाले एयर शो में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के किरण हॉक विमान, सारंग टीम के हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान तेजस हवाई करतब दिखाएंगे। तेजस के कोबरा मैनूवर सहित अलग अलग हवाई करतब दर्शकों को देखने के लिए मिलेंगे। गौरतलब है कि तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया सहित 12 देशों की वायुसेनाएं भाग ले रही हैं। जयपुर में पर्यटन सीजन शुरू होने के साथ ही प्रमुख पर्यटन स्थलों पर देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। आमेर किला, जंतर मंतर और हवा महल में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ी है। पर्यटन सीजन को देखते हुए ऐतिहासिक स्मारकों पर सैलानियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। जंतर मंतर के अधीक्षक प्रतिभा यादव ने बताया कि पर्यटकों को किसी तरह की असुविधा न हो इसके लिए आवश्यक तैयारियां की गई हैं।
2: अभी पर्यटन सीजन शुरू हो गया है और अभी 4 दिन की छुट्टी लगा पाई, उस दौरान तो थोड़ा टूरिस्ट पर डे आए हैं हमारे पास। और टूरिस्ट सीजन को देखते हुए हमने प्रॉपर तैयारियां कर रखी हैं, हमारी तैयारियां पूरी कंप्लीट हैं। टूरिस्ट आए यहाँ पे और क्योंकि कंफर्टेबली उसकी यात्रा रहे, वो आराम से भ्रमण करे, उसके लिए हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है, हमारी पूरी टीम इसके लिए तैनात है।
0: प्रदेश में अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस ने 7,744 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत एक ही दिन में प्रदेश भर में 17,000 से अधिक ठिकानों पर दबिश दी गई। इस कार्रवाई में करीब 12,000 पुलिसकर्मियों की 2,961 टीमें शामिल रही। गिरफ्तार लोगों में 55 इनामी अपराधी, 354 हिस्ट्री शीटर और अन्य अपराधी तथा 922 वारंटी और फरार आरोपी शामिल है। अभियान के दौरान 787 नए मामले भी दर्ज किए गए। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत निशुल्क कोचिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 25 अक्टूबर कर दी गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने वर्ष 2026-2027 के लिए आवेदन की अवधि बढ़ाई है। योजना के तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी

0: एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सीएम अनुप्रति कोचिंग आइकन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की अंतिम तारीख 7 अक्टूबर निर्धारित थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को आकाशवाणी की मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 139वीं कड़ी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंचायती राज चुनाव के पहले चरण के लिए आज लोक सूचना जारी। 17 जिला परिषदों और संबंधित पंचायत समितियों के सदस्यों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। भारतीय वायुसेना दिवस पर आज जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के तहत एयर शो का आयोजन। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के विमान हवाई करतब दिखाएंगे। और प्रदेश में अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष अभियान में 7744 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रातः के 9:10 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रूप जौहरी की आवाज में गाए कुछ गैर फिल्मी गीत।

0: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट पर बिल्डर ने पोजीशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजीशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
1: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
0: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
2: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 9:30 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आज के उमंग कार्यक्रम में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
0: और अजीत का भी नमस्कार।
2: सुनते हैं आज का सुविचार। माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल, टेकलाल पटेल जी ने सुविचार भेजा है। वो लिखते हैं
0: समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह का आगाज होता है। बस विश्वास रखिए, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: तो पहला संदेश हमें मिला है गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना। लिखते हैं, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता आदरणीय विमलेश जी और अजीत जी को सादर नमस्कार। आगे लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम के सितंबर माह के मासिक श्रोता संवाद में श्वेता तंवर जी के साथ जेंडर समावेशन जैसे महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषय पर चर्चा हुई, जो अत्यंत सार्थक, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रही। समान अवसर, सम्मान तथा बिना किसी लैंगिक भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के अधिकार पर आधारित ये संवाद हमारी सोच को व्यापक बनाने वाला रहा।
0: आप आगे लिखते हैं, आपका यह मासिक कार्यक्रम विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के लिए अत्यंत उपयोगी है।
2: जी,
0: इसके माध्यम से उन्हें NCERT द्वारा संचालित विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी प्राप्त होती है तथा वे इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित होते हैं।
2: जी।
0: ऐसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम विद्यार्थियों में जागरूकता, सकारात्मक सोच एवं सीखने की भावना को बढ़ावा देते हैं। इस उपयोगी एवं प्रेरणादायक कार्यक्रम के लिए हार्दिक धन्यवाद एवं हमारा आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल
0: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में हमें बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी सुनने को मिलती है। आविष्कारों के बारे में जानने के साथ साथ भारत के अनमोल ज्ञान, संस्कृति और गौरवशाली विरासत की भी जानकारी मिली। हर प्रस्तुति कुछ नया सीखने और जानने की उमंग जगा देती है।
0: जी।
2: ऐसे शानदार ज्ञानवर्धक और रोचक कार्यक्रम के लिए पूरी टीम को हृदय से बधाई और साधुवाद।
0: और अगला संदेश हमें मिला है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। तो लिखते हैं, प्रिय विमलेश जी और अजीत जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं पूरी उमंग टीम और सभी श्रोताओं को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

0: में दिनांक 14/9/2026 का उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने एक प्यारे डॉगी के बारे में बताया जो अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक की कक्षा 2 पर आधारित थी। वो कहानी हमें बेहद पसंद आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी तरह से कार्यक्रम पेश किया।
1: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र रौनक सेन ने लिखा है।
0: आपका कार्यक्रम उमंग हमें बड़ा सुंदर और शिक्षाप्रद लगता है, साथ ही साथ ज्ञानवर्धक भी। हम इसके नियमित श्रोता हैं। आगे लिखते हैं कि जीवन को खुशहाल और पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए एक पेड़ हर वर्ष अवश्य लगाएं। धन्यवाद।
1: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश देने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं प्रतिष्ठित पुरस्कारों की।
0: जी तो श्रोताओं, इस क्रम में आज हम बात करेंगे भारत के सर्वोच्च सैनिक वीरता सम्मान परमवीर चक्र की।
1: जी
0: वैसे परमवीर चक्र का नाम तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी शायद बहुत कम लोग जानते हैं।
1: तो आइए करते हैं शुरुआत और जानते हैं इसके बारे में। श्रोताओं, परमवीर चक्र की स्थापना हमारे प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ये सम्मान जल, स्थल और वायु में शत्रु पक्ष का सामना होने पर सैनिकों द्वारा दिखाई जाने वाली असाधारण वीरता और साहस दिखाने वाले भारतीय सैनिकों को प्रदान किया जाता है।
0: यानी ये विशिष्ट रूप से युद्ध भूमि में दिखाई गई सर्वोच्च वीरता को दिया जाने वाला सम्मान है। आपको बता दें श्रोताओं कि इसे सैनिकों को मरणोपरांत भी दिया जाता है, और ये चक्र यूनाइटेड किंगडम के विक्टोरिया क्रॉस और संयुक्त राज्य अमेरिका के मेडल ऑफ ऑनर के बराबर है।
1: जी तो अजीत जी, अब बात करते हैं इसके डिजाइन की कहानी पर। इस पदक को डिजाइन किया श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर जी ने। वे स्विट्जरलैंड में जन्मी, उनका मूल नाम था एवानून लिंडा। वहाँ वे रॉयल मिलिट्री अकादमी के भारतीय कैडेट विक्रम रामजी खानोलकर से मिली और उनकी जीवन संगिनी बनी।
0: जी हाँ श्रोताओं, वे भारतीय सैन्य परंपराओं और भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित थी।
1: जी
0: उन्होंने भारतीय संस्कृति और सैन्य परंपराओं का गहरा अध्ययन किया था, और वे एक बहुत अच्छी कलाकार भी थी।
1: जी
0: कला कौशल और भारतीय संस्कृति से अनुराग रखने के कारण उन्हें परमवीर चक्र को डिजाइन करने के लिए चुना गया।
1: ये कांस्य का गोल पदक है और इसे बैंगनी रंग के रिबन के साथ पहनाया जाता है। ये जानना बहुत रोचक होगा कि भारतीय सेना के इतिहास में पहला परमवीर चक्र किसे प्रदान किया गया।
0: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर जी की बेटी कुमुदिनी शर्मा के देवर मेजर सोमनाथ शर्मा को सन 1947 में बड़गाम की लड़ाई में वीरता दिखाने के लिए सर्वप्रथम परमवीर चक्र प्रदान किया गया।
1: बहुत रोचक। इस सम्मान की मूल भावना है कर्तव्य, साहस और सर्वोच्च बलिदान। अजीत जी, क्या परमवीर चक्र केवल थल सेना के सैनिकों को ही दिया जाता है?
0: नहीं विमलेश जी, ऐसा नहीं है। ये भारतीय सशस्त्र सेनाओं के उन सदस्यों को दिया जाता है जिन्होंने युद्ध के दौरान असाधारण वीरता दिखाई हो। यह भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता सम्मान है।
1: और इसे प्रदान कौन करता है?
0: परमवीर चक्र भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। परमवीर चक्र केवल एक सैन्य पदक नहीं, बल्कि भारत के उन वीर सैनिकों की स्मृति और सम्मान का प्रतीक है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च योगदान दिया।
1: भारत के वीर सैनिकों को हमारा नमन।
0: जय हिंद। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र के बारे में। तो अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, परमवीर चक्र पदक को डिजाइन किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: परमवीर चक्र पदक को डिजाइन किसने किया था? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800044559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है किसान की होशियारी।
1: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि किसान ने कैसे अपने चातुर्य और बुद्धिमत्ता से भालू से पीछा छुड़ाया और अपनी जान बचाई।
2: एक किसान अपना खेत जोत रहा था, अचानक कहीं से एक भालू आ गया। भालू किसान को मारने झपटा। किसान ने कहा,
3: मुझे क्यों मारते हो, उपज होने दो, जो खाओगे वही खिलाऊंगा।
2: भालू ने कहा,
4: भूमि के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी।

0: किसान ने आलू बो दिए। उपज हुई तो भालू को पत्ते खाने को मिले। भालू चिढ़ कर रह गया। अगली बार भालू ने कहा,
1: इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर की तुम्हारी।
0: इस बार किसान ने गेहूं बो दिया। जब उपज हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं। भालू को मिली केवल जड़ें। भालू खींच कर रह गया। इस बार भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची। उसने किसान से कहा,
1: भूमि के सबसे ऊपर और भूमि के नीचे की उपज मेरी।
0: किसान मान गया। इस बार किसान ने लगाया गन्ना। जब उपज हुई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें। भालू का सिर चकरा गया।

0: अभी आपने सुना ये हास्य प्रधान कार्यक्रम किसान की होशियारी। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया, माँ की गोद ने और नदियों की घाटियों ने। हजारों हजारों साल से माँ ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा

0: नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।
1: लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं।
1: हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: करूंगा तू?
1: मैं क्या करूंगी? गमक कुआ इधर बनाऊंगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि इससे शरबत बनता है? तो शरबत बनाऊंगी।
0: अरे बस्सी, तू बिल्कुल बावरी है। अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में गुरास के फूल चुन रही है। हा? चल चल, अरे चल, सब बोल रहे हैं तुझे। अरे चल ना, जल्दी कर।

0: तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था, और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।

बेटी तू बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई बेटी। अरे तू विधवा हो गई।

0: स्तर है इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की।

बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से, है ना? बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी, तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी

0: कोसानी जाते हुए मन्नान ने बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई, मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो, ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको, तुम अपने जीवन को मायने दे सको।
0: बसंती घबराकर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
0: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपने जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसंती, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी, वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार का?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है, चलो। ठीक है दीदी, चलो चलो।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका तो उपाय क्या है, क्या करें? हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।
3: कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

0: हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियां काटने।
1: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियां मत काटना।
2: है? वो भला क्यों? हा? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
1: मेरे लिए नहीं, अपनी कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
0: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
2: हाँ?
0: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
2: और क्या
0: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
2: हाँ?
1: देखो इन जंगल के पेड़ों में ही तो प्राण बसे हैं कोसी के। आमा तुम तो जरूर जानती होगी, तुम बताओ ना कि क्या रिश्ता है कोसी का हमारे पिनाट के जंगल से? बताओ ना कि क्या रिश्ता है कोसी का हमारे पिनाट के जंगल से?
0: आज से 40 साल पहले जब ब्याह कर मैं गांव आई थी तब तो कोसी अपने उफान पर थी, और आज अब तक में उसके प्राण है। बेटा तू कौन है, कहाँ से आई है?
1: अब, आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
0: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा।
1: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझाकर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
0: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
2: अरे चलो चलो बसंती बहन, चलो हमारे गांव चलो
3: चलो चलो चलो।
2: हाँ जल्दी चलो, हम सबको बताते
4: हैं। और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सेल, हीराकोटा, कांटली आदि गांव में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: अरे कहाँ जा रही हो बहनों, क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
1: हाँ,

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

0: ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु,
1: अर्शद,
2: चेतना,
1: कुसुमलता,
2: वीरेंद्र
1: और हमारी आज की विशेषज्ञ
2: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 10 बज चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती

0: जिनकी फिल्म हनुमान अंश इन दिनों हमारे मन को छू रही है, खास तौर से इसके कुछ गीत जैसे कि ये
1: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई,
0: और ये गीत तो हमारे दिल में घर ही कर चुका है।
2: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
0: तो आज हनुमान अंश फिल्म की शूटिंग और सृजन से जुड़ी बातें हमसे साझा करने आए हैं निर्देशक विशाल चतुर्वेदी। आपसे बातचीत कर रही है ममता सिंह। आइए सुनते हैं इस दिलचस्प बातचीत की पहली कड़ी।
3: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक ऐसे लेखक निर्देशक की आमद है जो इन दिनों बहुत चर्चा में है। ये है युवा लेखक निर्देशक और आजकल इनके नाम के दीवाने हो रहे हैं लोग, वो हैं जाने माने निर्देशक और लेखक विशाल चतुर्वेदी जी। उनकी फिल्म बहुत हिट हुई है। विशाल जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
4: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए ममता जी।
3: विशाल जी, सबसे पहले तो बधाई लीजिए अपनी फिल्म की हनुमान अंश। हमने भी देखी और समूह के साथ देखी, बहुत अच्छी लगी, तो बहुत बहुत बधाई।
4: धन्यवाद।
3: और अब हमें बताइए कि ये हनुमान अंश की कहानी ने कैसे आपके दिल में दस्तक दी, कैसे आपके मन में विचार आया?
4: तो एक तो हनुमान अंश टाइटल है और दूसरा हनुमान अंश की जो कहानी है वो श्री नीलकंठ बाबा महाराज जी के बारे में है, जो भारत के पिछले सदी के आई थिंक सबसे रिवर्ड संत आज की डेट में कहे जा सकते हैं। साईं बाबा भी थे और इसके अलावा बहुत सारे श्री अरविंदो, ऐसे बहुत सारे संत हुए हैं, जिसमें श्री नीलकंठ बाबा की जो कहानी है वो मुझे बहुत खास तौर पे इंटरेस्ट इसलिए करती है क्योंकि बहुत सादगी से भरी हुई है और किसी तरह का कोई आडंबर उनके जीवन में था नहीं
3: जी।
4: इसके अलावा वो मतलब हर तरह की चमत्कारों से वो हरदम भागते रहे और किसी एक स्थान पर रुक के उन्होंने किसी तरह का एक अपना एक साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश नहीं की। उनका उद्देश्य सिर्फ जगह जगह पे हनुमान जी के मंदिर बनाना और लोगों को भूखों को भोजन, भक्तों को प्रसाद, ये उनका टोटल आइडिया था। और भी उनकी कुछ सीख थी जो जीवन में देते थे, पर वो आध्यात्मिक सीख होंगे, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में, एक मानव के रूप में मुझे वो बहुत ज्यादा जैसे बोलते हैं इंटरेस्ट करते हैं। प्लस उनकी चेहरे पे जो एक अजीब सी कोई ऐसा अट्रैक्शन है कि हर व्यक्ति आभा है, कुछ तो है ऐसा जो कि हर व्यक्ति उनको देख के ना देखते रह जाता है, तो ये भी एक चीज थी, इसलिए मुझे लगा कि ये होना चाहिए। पर मैं खुद से उनको फॉलो करता हूँ कुछ पिछले 20 साल से, और जब मैं हल्द्वानी में पोस्टेड था, पहली पोस्टिंग मेरी हल्द्वानी में थी, वहां से एक मेरे साथ भी कुछ ऐसा इवेंट हो गया था जिसकी वजह से मैं नया पर्सपेक्टिव मिला लाइफ को लेकर कि ऐसा भी हो सकता है। तो इस वजह से मैं उनकी कहानी बहुत समय से फॉलो कर रहा था। हनुमान अंश टाइटल मुझे नीप करोरी गांव है उत्तर प्रदेश में जहां पे उन्होंने साधना की वो अपने फिल्म में दिखा। तो वहां पे जब मैं गया था रिसर्च के लिए तो वहां के लोग उनको आंशिक हनुमान और आंशिक अवतार हनुमान का बोलते थे, हनुमान जी का बोलते थे, जिस वजह से मुझे वो टाइटल बहुत अच्छा लगा और मैं उनके नाम से फिल्म नहीं बनाना चाहता था। पहले दिन से क्लियर था कि मुझे उनके नाम से फिल्म नहीं बनानी क्योंकि वो इतने पॉपुलर हैं कि वो ऐसा कहीं से प्रतीत ना होने लगे कि मैं उनके नाम पे राइड कर रहा हूँ, और प्रतीत होने से ज्यादा खुद से स्वयं से भी अंदर से भी वो इच्छा होती है ना कि आप एक कॉन्सेप्ट को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ना कि किसी तरह की बायोपिक पे आप राइड करके कि भाई बड़ा व्यक्ति है उसकी बायोपिक बनाने मिल गई तो अब ये अच्छा उसमें

0: नंबर्स आएंगे, यू विल ऑलवेज गेट आई मीन अ लॉट ऑफ, आपको बहुत तालियां मिलेंगी, अप्रिशिएशन मिलेगा. इंस्टेड ऑफ दैट क्या हम समाज को क्या दे रहे हैं कॉन्सेप्ट लेवल पे, आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट के लेवल पे. तो ये आई थिंक उद्देश्य था, इसलिए हनुमान अंश और श्री नीम करोली बाबा, दिस इज द रीजन एंड दिस इज हाउ उनकी आमद हुई.
1: तो नीम करोली बाबा को एक भक्तिभाव से लोग देखते हैं और कुछ चमत्कार के रूप में भी देखते हैं, भले ही वो चमत्कार न करते हो, और रहस्य के रूप में भी. तो ये उनके पूरे व्यक्तित्व को फिल्म में आपने उतारने की कोशिश की है, तो किस तरह की चुनौतियां आई, कौन सा भाव पक्ष आप ज्यादा लाना चाहते थे और आपको लगा कि ये सही हुआ?
0: मुझे लगता है कि उनकी मैंने एक मानवीय कहानी बोलने का ज्यादा प्रयास किया है. चूंकि वो स्वयं चमत्कारों से बचते थे, तो हम भी चमत्कारों से फिल्म में बचे हैं
1: जी.
0: लीलाएं होती हैं जब आपके कोई संत महात्मा आपके जीवन को देख लेता है. वो अकाल जो बोलते हैं ना कि वो उनको त्रिकाल दर्शी होते हैं, वो समय को देख सकते हैं, आपके पास को भी देख सकते हैं, आपके फ्यूचर को देख सकते हैं. तो वो आपको आपके अंदर एक ऐसा छोटा सा चेंज लेके आते हैं जो ऑन अ ट्रेजेक्ट्री लेवल, अगर वो आज उन्होंने 0.5% का अगर उन्होंने एंगल चेंज किया आपके लाइफ का, डायरेक्शन रीडायरेक्ट किया आपको, तो ऑन द कोर्स ऑफ टाइम 10 years और 20 years कहां से कहां पहुंचेगा. लाइक मेरा अपना स्वयं का एक वो है कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहां पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूं तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है. वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम 20 इयर्स बैक. तो इसको लीला बोलते हैं, तो उसको चमत्कार नहीं बोल सकता मैं. चमत्कार तो कोई जादूगर भी कर सकता है. वो होते हैं ना कि हवा में ऐसे कुछ करते हैं, कुछ ले आते हैं. तो चमत्कार ही व्यक्ति लोग उनको चमत्कारी बोलते हैं पर वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा. उन्होंने हरदम बोला कि हनुमान जी ने किया होगा, आपका राम जी कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, ऊपर वाली कृपा होगी. तो इस तरह से तो मैं मानवी उनके साइड को ज्यादा तवज्जो देने का प्रयत्न मैंने किया
1: जी. ये फिल्म में आपने दर्शाया भी है जब वो क्रांतिकारी अंदर कमरे में है और वो बेल बजाते हैं तो वो पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला कि मुझे भूख लगी है. तो ये क्लियर है कि जैसे वो चेहरे के भाव पढ़ लेते हैं या इंट्यूशन हुआ है, इस बात को आपने दर्शाया भी है. तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आज का जो युग है इसमें जरूरी है कि चमत्कार से दूर जाया जाए. और आपने बताया कि, और हम सभी जानते हैं कि आपने मेडिकल की पढ़ाई की, MBBS पढ़ रहे थे और अचानक फिल्मों की ओर रुख कर लिया. कैसे ये संभव हुआ, कहां से आपके मन में ये बदलाव आया?
0: मुझे लगता है कि लखनऊ, जब मैं रहने वाला बुंदेलखंड का हूँ, वहीं पढ़ाई पला बड़ा भी वहीं पे हूँ और मैं पढ़ाई भी वहीं से की है. जालौन जिले में एक छोटी सी जगह है कोंच, वहां पे मैंने अपनी 10+2 तक पढ़ाई की. उसके बाद एक साल ग्वालियर था, वहां से लखनऊ आ गए. और लखनऊ में जो एक जैसे बोलते हैं वहां की जो सभ्यता है, वहां की जो अपनी तहजीब है
1: जी.
0: वो कहीं ना कहीं मैंने उसको इम्बाइब करना शुरू किया. तो पहले तो भाषा सुधरी वहां जाके, एक ठेठ बुंदेलखंडी और खड़ी हिंदी बोलने वाला व्यक्ति, एक थोड़ी नफासत आ जाती है, एक आपकी जबान में थोड़ा उर्दू आ जाती है. तो पोइट्री वहीं से फूटी, वहीं से मैंने म्यूजिक में इंटरेस्ट मेरा आया. मैं जिस गली में रहता था वहां पे प्रताप नारायण मिश्र जी, जो बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उनकी हवेली जस्ट घर के सामने थी, छन्नूलाल जी मिश्रा और ये सब लोग जो है ना वो गली का ही पार्ट थे. तो उसमें बहुत सारा इन्फ्लुएंस हुआ. फिर मैं भातखंडे जाना शुरू किया. फिर मैंने भातखंडे में कुछ एक साल विशारद का प्रथम वर्ष भी किया, मतलब संगीत में, गायकी में.
1: अच्छा.
0: और वो एक साल ने मुझे काफी हद तक जो है ना परिवर्तित कर दिया. एक मेरा जो एक क्रिएटिव साइड होगा जो मुझे पता नहीं था, वो सडनली स्फुटित हो गया. और उस वजह से मुझे लगता है कि लखनऊ हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ. तो बेसिकली वो मेडिकल का सिलेक्शन होने से पहले ये सब मेरे अंदर इम्बाइब हो गया था. तो तैयारी करता था शाम को 6 बजे से, वहां की क्लास होती थी, तो शाम को 6 बजे तक सब फिनिश हो जाता था. तो वहीं से अपने कोचिंग से लौटता था मैं और 1 घंटे की वो क्लास करके घर आता था. और उसी बीच में आगे कहीं प्ले हुआ कोई तो देख लिया, या कुछ ऐसा कार्यक्रम चलता रहता रहा है. अमरनाथ बलि नाम का एक वहां पे प्रेक्षागृह है, तो वहां पे प्रेक्षागृह में कुछ ना कुछ चलता ही रहता था. तो एक रूटीन बन गया. और फिर वो सिलेक्शन होने के बाद में मैं नहीं चाहता था कि मैं MBBS करने जाऊं. तब तक मेरा काफी इंटरेस्ट चला गया था इसमें. तो मेरी माता जी ने मुझे बोला कि तुम ये कर लो, उसके बाद तुम्हें जो करना हो तो कर लेना. एंड मेरा जब मैं गया, मुझे कॉलेज जो मिला वो गोरखपुर था.
1: जी,
0: तो गोरखपुर का थोड़ा कला वगैरह से थोड़ा सा कम लेना देना है, ऐसा नहीं कि नहीं है. और हमारा कॉलेज भी बिल्कुल मेडिकल कॉलेज,
1: ग्रामीण परिवेश है, बिल्कुल आंचलिक
0: जी, और शहर से बाहर भी है. तो वो करीबन 7-8 किलोमीटर दूर था. तो शहर जाने के लिए, फिल्म देखने के लिए जाते थे हम लोग बस. बाकी वो हमारा जो 12-15-50-40-50 एकड़ की जो कॉलेज कैंपस था, वो वही दुनिया थी हमारी.
1: जी,
0: तो उसके अंदर की जो, सो खैर कहने का मतलब ये है कि एमबीबीएस

0: किया, तो उस बीच में जितनी भी क्रिएटिव परस्यूट्स थी उनको फॉलो भी किया वहां पे, बट इवेंचुअलिटी में अब होता है कि आप किसी चीज के साथ में बहुत समय तक रहने लगे तो आपको वो भी अच्छा लगने लगता है। तो मैं लास्ट फाइनल प्रोफेशनल तक मैं सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ता था।
1: जी।
0: फाइनल प्रोफेशनल में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे सडनली मेडिसिन अच्छी लगने लगी, एज द वे पीपल जब वो अच्छे हो जाते हैं, जब वो उनके अंदर इम्प्रूवमेंट होता है, प्लस आप जो मानवीय शरीर है उसको आप बहुत डिटेल में देख रहे हो और कैसे रिएक्ट करता है, ऑल ऑफ दैट, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया
1: जी।
0: तो फिर मैंने कहा कि अब जॉब भी करते हैं, और पहला जॉब इसीलिए हल्द्वानी में, पिथौरागढ़ में था एक्चुअली, कुछ महीने के बाद मैंने वो छोड़ के हल्द्वानी में आ गया था मैं, और वहां से ये नई ट्रेजेक्ट्री शुरू हुई, जिसे हनुमान अंश की यात्रा जिसे बोलेंगे, वहां से शुरू हुई जी।
1: तो अब यहाँ पर आपने बहुत सारा जिक्र किया, गाने का भी जिक्र किया, मतलब कि ऐसा लगा कि आप गाते भी हैं, और हनुमान अंश में आपकी आवाज में एक गाना है जो काफी प्रचलित भी है और लोग पसंद कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना होगा।
0: आप जो कहेंगे वो सारे गाने मुझे बहुत प्रिय हैं, हृदय में जिनकी सीताराम जो मैंने गाना गाया है वो भी बहुत क्लोज टू माई हार्ट है, और वो बहुत ही कमाल की बात है कि उसको मैंने कंपोज नहीं किया, वो अचानक से मेरे दिमाग कहीं से उतर आया हूँ
1: जी जी,
0: और वो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपनी फिल्म में अपने म्यूजिक को ना इंक्लूड करूं। मैं आया तो म्यूजिक डायरेक्टर बनने ही था सबसे पहले मुंबई में, और विशाल भारद्वाज मेरे लिए बहुत, जिसे बोलते हैं ना, वो बहुत ही मेरे लिए आइडियल थे
1: जी जी।
0: लेकिन विशाल जी को मैंने बहुत ज्यादा, उनकी फिल्म जो है ना मकबूल को मैंने 27-28 बार देखा, मतलब
1: लिटरली
0: उनकी वो जो सीडी थी मेरे पास में वो घिस दिया था, मतलब ऐसा हो गया था कि स्क्रैच आ गए थे उसमें, इतना देखा मैंने मकबूल।
1: क्या बात है।
0: कहने का मतलब ये कि होता ये है कि आप जब आते हो कुछ करने के लिए, फिर आपको समझ में आता है कि नहीं आपका अल्टीमेट गोल ये है, फिर आप ये क्यों कर रहे हो। कोशिश मैंने बहुत की कि अपने आप को अवे रखूं म्यूजिक से, क्योंकि वो मेरे लिए, मेरी अपनी आत्म शांति के लिए मैं म्यूजिक करता हूं। मेरा सुबह का रूटीन अभी पिछले एक साल से तो बिगड़ गया, लेकिन सुबह का रूटीन मेरा एक हनुमान चालीसा जो मैं गाता हूं अपनी खुद से, मैंने कंपोज की थी वो मैं अपने लिए गाता हूं, उसको रिलीज ही नहीं किया मैंने, इट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई लोगों को बहुत सारों के पास। तो हृदय में जिनके सीताराम आई विल से कि इज समथिंग व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बट यू स्पेसिफिकली आस्क मी एनी ऑफ द सॉन्ग, आई लव ऑल द सॉन्ग्स, आई कैन सिंग एनी वन ऑफ इट, आई वोंट माइंड।
1: लेकिन मैंने आपकी आवाज के गाने का जिक्र इसलिए किया कि वो गाना तो हम सुनवाएंगे, लेकिन आपकी आवाज में यहाँ पर हम चाहते हैं कि श्रोताओं को भी सुनवा दें।
0: चलिए तो मैं पहले हृदय में जिनकी सीताराम ही गा
1: दें जी, एक लाइन सुना दीजिए।
0: एक ही लाइन है, उसमें दूसरा लाइन है भी नहीं। हृदय

0: क्या बात है, एक साधक की मुद्रा में आप आ गए थे और वो ऐसा लग रहा था कि कहीं आपने जैसे साधना की हो बैठ के
1: जी।
0: तो यहाँ पूरी फिल्म में हनुमान अंश में हनुमान चालीसा को कथा के रूप में कहीं कहीं पिरोया है आपने, तो ये कहाँ से आपके मन में विचार आया, कुछ पहले से सोच रखा था या फिल्म बनते समय?
1: तो एक तो वो इवेंट जो है वो रियल इवेंट है
0: जी,
1: जो फिल्म में आपने देखा है, लेकिन मैं 2021 में जब कोविड बहुत पीक पे था और मेरे बहुत परिवार के और मेरे दोस्तों के, मेरे मित्रों के फैमिली मेंबर्स एक एक करके जा रहे थे, तो मेरे फर्स्ट कजिन, मेरे लोकल गार्जियन थे कॉलेज में, वो

0: ऐसे करते करते मेरे मामा जी, मेरे बेस्ट फ्रेंड रघुवेंद्र सिंह है, उनकी माता जी, ऐसे बहुत सारे लोग कुछ 5-7 दिन के अंदर ही बहुत सारे लोग चले गए। और वो एक एज ए डॉक्टर मुझे जो है ना, मैं घर पे बैठा था, मैं क्योंकि मेडिसिन प्रैक्टिस छोड़ के बहुत साल हो गया है और बाकी सब तो कुछ कर नहीं रहे हैं। अब मैं एज ए मेडिकल मतलब डॉक्टर आई शुड डू समथिंग, मुझे कुछ करना चाहिए था और मेरे पास कोई सच कोई डायरेक्ट कनेक्ट बचा नहीं था, तो जितना हेल्प कर पा रहा था मैं कर रहा था। लेकिन मुझे ऐसा एक क्लब हाउस नाम की एप्लीकेशन थी जहां पे बहुत सारे दोस्त मिलना शुरू हो गए थे, वो एक अलग चीज बन गई थी जहां पे सब लोग वॉइस में बात कर सकते हैं। तो वहां पे मुझे ऐसा दिल में ऐसा ख्याल आया कि जितने लोगों को शांति चाहिए है वो शायद हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो शायद होप देगी लोगों को। तो हमने हनुमान चालीसा नाम का एक क्लब चालू किया 2021 में, अप्रैल का महीना था। पहले दिन ही लोग 8 घंटे तक उसमें हनुमान चालीसा होते हैं, लोग आईसीयू में लेटे हुए हैं और वो हमारे क्लब को सुन रहे हैं। पीपल रिकवर्ड फ्रॉम देयर आईसीयू, जो कि आईसीयू से बहुत कम लोग निकलते थे उस वक्त, तो आईसीयू से बाहर निकले फिर वो हमारे मॉडरेटर्स बन गए। तो वो क्लब आज भी वो क्लब चला रहे हैं।
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: एक 12,000 से ऊपर उसके सब्सक्राइबर हो गए, लोग अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आते थे और वो हनुमान चालीसा। तो ऐसे में मेरा एज अ फाउंडर ऑफ दैट क्लब मेरा रूटीन बन गया कि 2-2.5 घंटे तो हनुमान चालीसा को डिकोड करना शुरू किया मैंने।
1: जी जी जी।
0: उसके पहले तो पढ़ना होता था, फिर हनुमान चालीसा को डिकोड करना, वो मेरी एक तरह से मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग वर्ल्ड बन गया। तो कहें तो हनुमान अंश का कोर जो है वो हनुमान चालीसा है। अगर आप वो उसमें भी एक डायलॉग है फिल्म के अंदर जहाँ पे बच्चा पूछते हैं मान जी उससे के, मान जी पूछते हैं कि आपका जो है क्यों हनुमान जी का ही पार्ट क्यों है, ओके तो कहते हैं क्योंकि हनुमान चालीसा में लिखा है। तो क्या तो तुम्हारे भजन राम जी को पावे, तो वो कहते हैं किसी से प्रेम नहीं है, तो कहते हैं कि नहीं माँ से था क्यों, बोले माँ राम जी के पास चली गई। और करना क्या चाहते हो, राम जी के पास पहुंचना है क्योंकि मुझे अपनी अम्मा के पास पहुंचना है। तो ये पूरी फिल्म को हनुमान चालीसा में क्या लिखा है और एक बच्चे की भावना अपने माँ के प्रति क्या है और वो कितना अकेला अपने को महसूस कर रहा होगा कि वो जो है ना अपनी माँ से इतना प्रेम था कि वो उन तक पहुंचना चाहता है क्योंकि किसी ने बोल दिया कि राम जी के पास चली गई। तो उसने पूरा अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया कि मुझे राम जी तक पहुंचना है क्योंकि मुझे अपनी अम्मा तक पहुंचना है। एंड प्रॉब्ली दिस इज वन ऑफ दी मोस्ट, जिसे बोलते हैं ना कि सबसे ज्यादा जो लाइन लोगों को पसंद आती है, स्पेशली मदर्स हैं, बच्चे हैं, बच्चे इमीडिएटली कनेक्ट हो जाते हैं उस लाइन से। वो हुआ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आई सॉर्ट ऑफ डिकोडेड हनुमान चालीसा फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। अभी भी मुझे बहुत मजा आता है। अब अगर आप मुझसे आप बात करेंगे तो आई विल लव टू चैट अबाउट हनुमान चालीसा फॉर आवर्स।
1: अभी सुनाइए
0: हनुमान चालीसा चैट एज इन
1: थोड़ा सा तो सुना सकते हैं। देखिए वहाँ एक बात मैं अपनी ओर से जोड़ना चाहती हूँ, वो जो दृश्य है जिसका आपने जिक्र किया सचमुच बहुत मार्मिक दृश्य है कि एक पिता अपनी दूसरी शादी करके आ रहे हैं और बच्चा बोलता है कि मुझे राम जी के पास जाना है। तो ये बहुत मार्मिक था और हम सबको यहाँ पर इमोशनल भी किया आपने, मतलब देखा कि लोग रो रहे हैं वहां पर। और इस पूरी फिल्म में कई जगह ऐसे लगता है कि हाँ हम कहीं, आपने जो साधक के रूप में दिखाया वो साधना में हम सब लीन हो रहे हैं, कई ऐसे दृश्य आए।
0: जी, जी।
1: तो यहाँ फिर से वापस लौटते हैं हनुमान चालीसा पर, तो वो अगर आप गाते हैं तो
0: नहीं हनुमान चालीसा मैं गा दूंगा, बट मैं हनुमान चालीसा को जो डिकोड करता हूँ मैं हनुमान चालीसा को, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, आई विल ऑल्सो सिंग कपल ऑफ लाइन्स। मुझे लगता है कि हनुमान चालीसा जो है ना बहुत ही मल्टीपल कॉस्मिक कॉन्सेप्ट हैं, उनका संकलन है। और आपके जीवन में आप कैसे आध्यात्म की तरफ आप बढ़ते हो और आपको जब अल्टीमेट को जो आप पाना चाहते हो, भगवत प्राप्ति जो आप करना चाहते हो, तो उसका राह वो आपकी सुगम करती है, आपके जीवन को भी बहुत सॉर्ट करती है। जैसा कि श्री निकोली बाबा भी बोलते थे कि वो कहते थे राम नाम का जप करते रहना, राम नाम लिखते रहना, और हनुमान जी की भक्ति के लिए हरदम बोलते थे। आप भक्त क्या होता है वो आप हनुमान जी से सीख सकते हो कि वो अपने ईस्ट से ज्यादा बलशाली है पर वो सरेंडर उनको ही करते हैं,
1: ईस्ट
0: को ही करते हैं। भक्ति इसको बोलते हैं कि आप किसी भी, तो ये एक तो चीज है और प्लस जो है ना उसमें तीन और कोड्स हैं कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिन पैसारे। तो हनुमान जी की भक्ति के बिना, हनुमान जी को समझे बिना, उनकी आज्ञा के बिना आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, दैट इज वन। द अनदर लाइन इज दैट राम रसायन तुमरे पासा, सो यू हैव दी द कॉस्मिक कोड और द कोड द फॉर्मूला टू रीच राम, सदा रहो रघुपति के दासा। तीसरी लाइन है तुमरे भजन राम जी को पावे, एज एन अगर आप हनुमान जी को भजते हो या आप हनुमान चालीसा करते हो तो आप भगवान राम को की प्राप्ति आप कर सकते हो। ये तीन लाइनों के अलावा पवन तनय संकट मंगल रूप राम लखन सीता सहित हृदय भसों, हृदय भसों स्वभूप का मतलब क्या है कि आपको उनको दिल में, आपको दिमाग में नहीं रखना है, आपको हृदय में रखना है, इसलिए वो हृदय में जिनके सीताराम जैसा लाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट अष्ट सिद्धि नवनिधि दाता, 8 सिद्धियां आप ही दे सकते।

0: और यही प्रॉब्ली नीम गौरी बाबा के उनकी लाइफ में भी आप देखें, जो सिद्धियां जिनकी प्रचलित सिद्धियां हैं वो कहीं ना कहीं उनको हनुमत भक्ति से आई है। कोई हनुमत भक्ति जो है ना कलयुग में शायद वही एक भक्ति है जो आपको सुगम तरीके से, क्यों, क्योंकि अगली लाइन उसकी है अष्ट दिन दाता असबर दिन ऐसा वर सीता दीन दीन जानकी माता
1: जी।
0: तो जो जगत जननी माता सीता है उन्होंने आपको ये वरदान दिया कि आप ये सिद्धियां जो आपके पास ऑलरेडी हैं वो आप किसी को भी दे सकते हैं। ऐसा ही एक एक भगवान राम ने भी उनको वरदान दिया कि सहस बदन तुम वो जसगावे अस्के श्रीपति कंठ लगावे, जब लाए सजीवन लखन जी आए, जब वो संजीवनी लेके आए तो उन्होंने ऐसा वरदान दे दिया सहस बदन तुम वो जसगावे। इसलिए आज भी भगवान राम से भी ज्यादा पॉपुलर हनुमान जी है
1: जी,
0: क्योंकि हनुमान जी को सब जानते हैं। तो आपको साउथ अमेरिका चले जाएंगे आपको वहां पे जो टेम्पल्स हैं वो पेरू वगैरह में वहां पे भी आपको हनुमान जी की मूर्ति मिल जाती है जो कि 5,000-5,000 साल पुराने टेम्पल्स हैं
1: जी। बिल्कुल,
0: ही वाज सो पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड एंड स्टिल इट इज पॉपुलर कि आपका जो अमेरिका का राष्ट्रपति जो पिछले राष्ट्रपति थे वो हनुमान जी की मूर्ति जेब में रखते थे बराक ओबामा।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: हनुमान चालीसा लोग अपने पास रखते हैं, सिरहाने रख के सोते हैं, पर्स में रखते हैं, डर से निजात पाने के लिए कहा जाता है। हम सब भी वो करते डर लगता था,
0: डर लगता था हनुमान चालीसा पढ़ना,
1: हनुमान चालीसा पढ़ते अंधेरे कमरे में पार करना है तो हनुमान चालीसा पढ़ते जाना
0: है। वो फिल्म में वो सीन जो है ना वो डेडिकेटेड टू दैट लाइन है कि आप पढ़ते तो हनुमान चालीसा इसलिए हो क्योंकि आपको भूत पिशाच निकट नहीं आवे, उस लाइन के लिए पढ़ते हो आप, लेकिन वो लाइन तो बीच में आती है तो आपको पढ़नी तो पूरी है
1: जी जी।
0: तो मन से पढ़ना बहुत आवश्यक है, इंटरनलाइज करना, और आपको जिस भी आप देवता जिस भी भगवान को आप ईष्ट है आपके उनको अंदर से मन से उनका ध्यान करना, मन क्रम वचन ध्यान चुलावे, संकट ते हनुमान चुलावे, मन क्रम वचन ध्यान चुलावे जी।
1: बिल्कुल सकारात्मक भाव पैदा होता है। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का, कौन सा गाना सुनते
0: हैं? मैं भी आपको हनुमान चालीसा ड्यू है, मैं आपको दो कम से कम लाइनें सुनाता हूँ
1: जी जी, प्लीज सुनाइए
0: जी जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, जय सिया राम जय सिया राम। हाथ वज्र और ध्वजा बिरा

0: अभी मतलब मैं तो गाता रहूंगा तो 15 मिनट इसी में निकल जाएंगे। बट
1: गाने की बात, चलिए हनुमान चालीसा आप गा ही रहे तो हम आपके पीछे की ओर बचपन की ओर ले चलते हैं, बचपन की गलियारों में। वहाँ आपने जिक्र भी किया कि आप विशारद करना चाहते थे, पंडित चन्नूलाल मिश्र का जिक्र किया, तो क्या बचपन में आपने सोचा था कि आप गायकी की दुनिया में आएंगे या फिर सोचा था उस समय क्या सपना था आपका?
0: मुझे लगता है कि बचपन में सपने तो थे पायलट बनने के, फिर लग गया चश्मा, फिर पता चला कि वो तो नहीं कर सकते, फिर लगा कि फिर ऐसा लगा कि आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए। तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो सुदूर जो जगह है वहाँ पे
1: डॉक्टर
0: इंजीनियर आईएएस, तो मेरा थोड़ा पायलट पायलट सोचता था, मैं थोड़ा आगे की सोचता था, लेकिन वो शायद एनीवेज। तो हुआ ये कि लखनऊ आने से मैंने डिस्कवर किया कि आई कैन सिंग, उसके पहले तो मुझे पता ही नहीं था। तो 17 साल तक की उम्र तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं गा सकता हूँ या मैं एक पोइट्री लिख सकता हूँ, ये भी नहीं मुझे पता था। तो लखनऊ आके वो परस्यूट डेवलप फिर से वापस स्फुटित हुए, अंकुरित हुए, या मुझे आई डिस्कवर्ड देम, सेल्फ डिस्कवरी हुई मेरी, हनुमान जी की तरह से उनको अपनी शक्तियां पता चली वैसे मुझे, एंड दैट टुक मी। वरना बचपन चंबल में बीता तो वहां पे बुंदेलखंड में, तो जहां पे ये आपने जो बैंडिट क्वीन देख रहे हैं, पान सिंह तोमर देख रहे हैं, वो एक और फिल्म थी तिशु की, एक और तिशु के बाद में अभिषेक चौबे की एक फिल्म आई थी, फॉरगॉट द नेम, सुशांत सिंह राजपूत की थी, वो सारी फिल्में, वो सारी दुनिया जो है ना बुंदेलखंड है, वो है जो हमने जिया है देखा है। से कॉन्ट्रास्टिंग आई रीच्ड लखनऊ, और लखनऊ में जो जीवन जैसे बोलते ना कि परिवर्तन हुआ, तो वहां पे मैंने विशारद के लिए एडमिशन के लिए मैंने टेस्ट दिया जिसमें 30 सीटें थी, 30वां नंबर रैंक मेरा आया।
1: अच्छा।
0: और वो तेज सिंह ताकजी वहां पे मेरे टीचर थे, और उन्होंने जो भी सिखाया वो इतना काम भविष्य में आया कि मतलब एक ही साल किया था मैंने, 5 साल में से एक ही साल करके फिर आई टू गो फॉर द मेडिकल मेडिसिन। तो 4-5 साल वहां पे फिर वो रॉक वॉक गाते थे, फिर पॉप रॉक में दुनिया में चले गए, फिर क्लासिकल भूल गए। क्लासिकल को दोबारा से मैंने पिछले 4-5 साल में फिर से दोबारा से स्टार्टेड यू नो practicing and working on it, and I do it primarily for myself. तो मतलब वो कम्प्लीटली मेरे उसको कमर्शलाइज करता नहीं हूँ, म्यूजिक को कुछ भी कमर्शलाइज नहीं करता। सो इट्स अ वेरी सोल सेटिस्फाइंग सॉर्ट ऑफ एन इवेंट फॉर मी एवरी डे। लेकिन नेक फॉर म्यूजिक, फाइंडिंग ग्रेट म्यूजिक, रिकग्नाइजिंग ग्रेट टैलेंट, म्यूजिकल टैलेंट इज प्रॉब्ली वन आर्ट आई डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ मतलब मल्टीपल ईयर्स डेकेड साइल से। तो अनुभव सिन्हा जी के साथ में मैंने करीबन 3 साल काम किया, उसमें भी ऐसा हुआ कि वो साल भर के बाद उनको पता चला कि मेरा म्यूजिक सेंसिबिलिटीज ऐसी हैं, तो उन्होंने फिर मुझे म्यूजिक भी सारा दे दिया करने के लिए। तो बनारस बीट नाम का उनका एक अपना एक छोटा सा
1: जी,
0: था। तो बनारस बीट मैं हैंडल करता था,
1: उसी के नाम से उन्होंने अपना का फोन नंबर भी।
0: हाँ जी जी जी। तो बनारस बीट जो है मैंने काफी समय तक वो भी चलाया, बहुत सारा म्यूजिक मैं सिलेक्ट करता था उनके लिए, या एटलीस्ट चूज करता था कि सुनिए आपको क्या अच्छा लगता है, एंड दैट्स हाउ प्रॉब्ली आई थिंक द फिल्म बिकेम अ म्यूजिकल, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, एंड आई बिलीव द ग्रेट म्यूजिक ग्रेट साउंड। 45% विजुअल्स होते हैं, 55% जो है ना वो

0: साउंड होता है और वही आपको सबकॉन्शियस लेवल पे हिट भी करता है, अफेक्ट भी करता है, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द डायलॉग डिलीवरीज, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द डायलॉग संबोधन जो है उसमें भी जो पॉकेटेड इन्फॉर्मेशन होती है अपार्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड म्यूजिक एंड द सॉन्ग्स विच वी सिलेक्ट एंड वी गो फॉर। तो मुझे लगता है कि म्यूजिक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेरे मैं सारे फिल्म मेकर्स को ये सजेस्ट करता हूँ जो हम सडनली गानों से दूर भागने लगे हैं एज एन इंडस्ट्री के लिप सिंकिंग करना है, बैकग्राउंड में कहीं कहीं गाने डाल देना है, गानों से पूरा वाइब क्रिएट होता है फिल्म का। थर्ड वीक ऑनवर्ड्स गाने चिपके हैं। अच्छा आप अच्छा है खराब है मुझे पता नहीं, पर पहले दो वीक तक कोई गाना चला ही नहीं और वही कारण था कि फिल्म भी डिप करी थी। फिर फिल्म के बारे में भी लोगों ने बात करनी शुरू हुई, फिर गाने भी डिस्कवर होना शुरू हुए चौथे वीक से
1: और गाने बजने
0: और फिर गाने ऐसे बजने लगे कि फिल्म को उन्होंने उठा दिया।
1: हाँ। और रील बनने लगे,
0: रील बनने लगे, हजारों की संख्या मतलब अनगिनत है, तुम गिन भी नहीं रहे, गिनना बंद कर दिया, जो मिलता है उसको रीशेयर कर देते हैं, वरना तो हाँ निकल ही रहा है, मतलब कॉन्स्टेंट इतना बन रहा है कि हम वी कांट सी, 24 घंटे भी देखेंगे तो नहीं देख पाएंगे,
1: बिल्कुल
0: इतना कॉन्टेंट बन रहा है।
1: तो यहाँ पर गानों का जिक्र चला है और आपकी फिल्म के गाने के रील बन रहे हैं और ज्यादातर इस गाने के पार्वती
0: जी
1: जो है तो वो सुना दे श्रोताओं को।
0: जी मतलब वैसे साधु तिवारी जी का गाना है, उनसे परमिशन लेके मैं गाता हूँ वैसे, लेकिन चलिए मैं सुनाता हूँ। जब जिद पे आ गई पार्वती, पार्वती पार्वती, समझाने पहुंचे सप्तऋषि, सप्तऋषि सप्तऋषि, अरे काय जिद कर रही, अरे काय खुमर रही, अरे काय जिद कर रही, काय खुमर रही, ऐसे वर के लाने, काय जिद कर रही, काय खुमर रही, ऐसे वर के लाने, जाके शीश पे गंगा।

0: बम भोले भोले बम भोले।
1: इस गाने के बाद हम आपसे जानना चाहते हैं, अभी आपने बातचीत के दौरान जिक्र किया अनुभव सिन्हा जी का
2: जी।
1: अनुभव सिन्हा जी विविध भारती के स्टूडेंट
2: हैं और
1: उनसे सौभाग्य मेरा कि उनका भी इंटरव्यू मैंने ही लिया था, बातचीत की थी
2: जी।
1: तो उनसे कुछ निर्देशन की कुछ बारीकियां भी आपको मिली या गानों के बारे में ही?
2: मुझे लगता है कि उनके सानिध्य में काम करना, मैं उनके अंडर तो काम करने का मुझे मौका नहीं मिल पाया
1: जी, जी।
2: उनके सानिध्य में काम किया
1: जी,
2: पर बहुत सारी जो जिस तरह से उनकी वो जस तरह से इलेवेट करते हैं चीजों को ना, सिनेमा हाँ सिनेमा में इलेवेशन क्या होता है कि आप जब हम फिल्म देखते हैं तो आप जब जिस तरह से हीरो को पोजीशन करते हो, जिस तरह से इलेवेट करते हो, बहुत बारीक बारीक नजर है उनकी, बहुत सुंदर सुंदर, वो भी उनके बहुत कान बहुत तेज है उनके भी म्यूजिकल तेज। तुम बिन उनकी पहली फिल्म भी इतनी बड़ी ह्यूज म्यूजिकल हिट थी, और आप चाहे वो रावण का म्यूजिक सुने या मुल्क का हाँ थप्पड़ के गाने, मुल्क के भी गाने बहुत सुंदर थे, पर मुझे लगता है कि रावण के गाने बहुत सुंदर थे, और उसके पहले भी जितनी फिल्में उन्होंने की है, मतलब आप चाहे कैश पकड़ लो, फिर उसके पहले एक और फिल्म थी उनकी
1: अनेक भीड़,
2: तो ये अभी की फिल्म है, लेकिन एक वो जो कमर्शियल फिल्म बनाते थे उनके म्यूजिक एल्बम, ओ माई गॉड क्या क्या एल्बम उन्होंने चूज किए। तो कहीं ना कहीं वो मेरा अनुभव सर का ये बहुत ही, जैसे बोलते ना कि हमारे बहुत सारे विचार, लेकिन हम बहुत, मैं उनका इतना सम्मान है हृदय में, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि वो कभी भी आपके आप क्या सोचते उस पर इंटरफेयर नहीं करते। और मैं उनके उनके ऑफिस में बैठ के मैंने एक फिल्म लिखी थी जो उनकी पसंद की फिल्म थी, उन्होंने कहा कि इस फिल्म को लिख पूरा, शॉर्ट फिल्म सुनाई थी जिसपे उन्होंने कहा कि इसको तो पूरा फिल्म बना के लिख।
1: अच्छा।
2: फिल्म का नाम था, उस वक्त उसका नाम डीमो था, फिर उसका नाम भसाड़ हो गया, कॉमेडी फिल्म थी, एक रात की कहानी, दो दोस्त मिलते हैं और क्या होता है उस रात को, लेकिन उन्होंने उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो प्रॉब्ली उनको हो सकता ना ही पसंद आई हो, पर उन्होंने उसमें मेरे कभी काम में इंटरफेयर नहीं किया। और यही एक सबसे बड़ी फिल्म मेकर की खासियत होती है कि वो आप क्या सोच रहे हो वो आपकी सोच है, मैं क्या सोच रहा हूँ मेरी सोच है, हम दोनों एक सब्जेक्ट को डिबेट कर सकते हैं पर मैं तुम्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि मैं सबसे ज्यादा जो चीज सीखी है उनसे मैंने वो यही सीखी, और मैं इस बात के लिए मतलब सदैव उनको याद करता हूँ और हर बार यही बात बोलता हूँ, और मेरी बात उनसे दो साल दो बार ही होती है, और लेकिन तो मतलब मेरा सम्मान उतना ही उनके लिए हृदय में उतना ही सम्मान है जी।
1: बेहतरीन बातचीत हुई थी और बेहतरीन इंसान। यहाँ पर आपकी फिल्म का हम गाना सुनना चाहते हैं, मतलब उसका जिक्र करना चाहते हैं, मैंने तेरे ही भरोसे
2: जी,
1: ये सुनील लोधी बुंदेलखंड के। तो ये कैसे मिले आपको, कहाँ से, क्यों बुंदेलखंडी गाते हैं वो?
2: बुंदेलखंड में पैदा हुआ, जैसे मैंने बताया बुंदेली मुझे बहुत पसंद है, अभी भी सोते मेरी पहली फर्स्ट लैंग्वेज भी आप बुंदेली बोल सकते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, फर्स्ट बोली है, क्योंकि बोली है वो तो लैंग्वेज नहीं है। तो बुंदेली मुझे चूके, तो मैं क्या हो रहा था पिछले 2-3 साल से ना, एक बुंदेली दुनिया नाम का एक चैनल था
1: जी,
2: तो मैं बहुत सारे ऐसे बुंदेली गीतों को के लोग जो बनाते तो उनको फॉलो कर लेता था। तो उसमें देखा कि मैंने ये लड़का जो है ट्रेन में गाता है और उसका
1: नेत्रहीन है
2: वो है। और वो ट्रेन में गाता है या ट्रेन में ट्रेवल करते हो, किसी ने वीडियो बनाया तो इसलिए वो फेमस हो गया कि ट्रेन में लगा गाता है। अच्छा, मैं काफी दिनों से फॉलो कर रहा था, एक दिन मैंने दिखाई दिया कि वो इंस्टाग्राम पे उसे कोई पिक्चर दी, वर्सोवा बीच पे है वो। मैंने कहा ये कहां से वो आ गया, एंड मैं उसको अप्रोच करने की वजह से सोच रहा था कि उसको किसी को बोलता हूँ कि इसको अप्रोच करके बुलाओ मुंबई, पर मुंबई बुलाने के लिए संसाधन चाहिए होते हैं और हमारी बहुत छोटी फिल्म है, हम ऐसा नहीं है फ्लाइट टिकट देंगे भाई आ जा तू, बट चूंकि ये मौका था कि वहां पर था तो मैंने उसको रात में ही 11:30 बजे

0: इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजा और हैपन सो देट इन हाफ एन आवर ही वॉज इन द स्टूडियो इन आर ऑफिस एंड स्टूडियो. फिर हमने उसका सेटल किया कि भाई कब जा रहा है वो क्या है कैसा, तो पता चला कि वो 11 बजे सुबह निकल रहा है 12 बजे. तो उसके पहले हमने एक स्टूडियो बुक किया और सारे जो भी उसके जो गाने थे उसके पास में वो उसने सुने उससे हमने, और ये गाना मैंने तेरे ही भरोसे मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया तो मैंने कहा कि इसको रिकॉर्ड करते हैं. तो उसने अपने ही उस पे तंबूरे पे एक तारे पे अपने उसने रिकॉर्ड किया, एक ही इंस्ट्रूमेंट के साथ में रिकॉर्ड किया. मैंने कुछ उसमें लाभ लग गया बट कुछ किया ही नहीं, इट्स जस्ट दैट. और वो लोग बोले फिर इसके ऊपर कुछ म्यूजिक नहीं करोगे, इनफैक्ट उसने भी बोला मुझे कि सर आपने इस पे कुछ कराया नहीं. और तो मैंने कहा कि नहीं इस पे कुछ कराने की आवश्यकता नहीं है, ये ऐसे ही वर्क कर रहा है और ऐसे ही वर्क करेगा क्योंकि स्ट्रेट इट द वॉइस गोज डायरेक्टली टू योर हार्ट, कोई दूसरा कोई माध्यम है ही नहीं, स्ट्रेट टू द हार्ट. कि मैंने तेरे ही भरोसे हनुमानो बहुत गूढ़ शब्द है उसमें.
1: जी जी.
0: सागर मैंने ये डाल दी कौन उसमें लाइने हैं कि मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डार दई, अरे काहे की बो नाव बनाई काहे की पतवार.
1: जी जी बिल्कुल याद है.
0: और काहे की लगा दई जंजीर सागर में नैया डार दई. सो बेसिकली इज अ क्वेस्ट कि दैट मैं सागर में नैया डार दई का, और हनुमत कौन है खेवनहार, तो पार कौन लगाएगा लेकिन खेवनहार कौन है, देखिए दो अलग अलग चीजें. अब आंसर क्या है, सीता सखी वहां बैठन हारी
1: जी.
0: शक्ति उसमें बैठेगी, रामा पार लगाए वो आपको पार लगाएंगे, लेकिन खेवनहार कौन है, हनुमत खेवनहार सागर में नैया डार दे, मैंने तेरे ही भरोसे आप ही खेवनहार हो, यू विल टेक मी दैट साइड. सो इतनी सिंप्लीफाइड एंड इतनी गूढ़ और इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पॉकेटेड एक इतने खूबसूरत अगर गीत में है तो मैं उसमें क्यों लाग लपेट करूं, क्यों उसमें मैं इंस्ट्रूमेंट डालूं और क्यों उसको भरूं और क्यों उसको ग्रैंड बनाने की कोशिश करूं, वाइल इट इज वर्किंग सो वेल, स्ट्रेट हार्ट टू हार्ट वर्क करता है. इधर से आवाज निकली सीधे दिल में लगती है, दैट्स हाउ इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन इंटरनेट. यू कैन सी थाउजेंड एंड थाउजेंड एंड थाउजेंड. मैं आपको बता रहा हूं पिछले 15 दिन पहले मैंने देखा था 2.5 लाख रील्स थी उसकी, 15 दिन पहले 2.5 लाख रील्स से भी पता नहीं हुआ, देखेंगे तो लगता मिलियन हो गई या 500 के हो गए.
1: बिल्कुल बहुत तेजी से ये चर्चित हो रही फिल्म और गाने हिट
0: गाने,
1: गाने लोगों की जुबान पर. बहुत मुश्किल है आज के इस युग में गाने को हिट करना और गाने हिट हो रहे हैं, रीलें बन रही, तो बहुत अच्छी बात है. तो यहाँ पर वही गाना हम श्रोताओं को सुनवाते हैं
0: जी.

0: रह गई।
1: गाने के बाद हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने सुना है कि आज के इस डिजिटल युग में भी आप कलम से कागज से लिखते हैं और ये पूरी फिल्म आपने कलम और कागज से लिखी है, तो ये क्या मामला है? आपको पसंद नहीं है डिजिटल मतलब लैपटॉप पे टाइपिंग करना, या आप कागज कलम को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्या बात है?
2: हुआ ऐसा कि मैं सारे जीवन में डिजिटली ही लिखते आया हूँ, तो मैं पेन एंड पेपर पे लिखता नहीं था, कभी कभी लिख दिया तो लिख दिया, पर वो ऐसा रहा था कि जब फिल्म हमने अनाउंस कर दी और मैंने जो भी मेरे दिमाग में सीन्स थे उनको उतारने के लिए जब मैं लिखने बैठता था तो मैं ऑब्वियसली द डिजिटल डिवाइसेस आर सो डिस्ट्रैक्टिव बिकॉज ऑल द टाइम कुछ ना कुछ आ रहा है, या तो कोई कॉल कर रहा है या तो किसी मैसेज कर रहा है उसको आपको रिप्लाई करना है, इंस्टाग्राम पे कुछ आ रहा है, तो इट्स डिस्ट्रैक्टिंग। एंड ऑल्सो आप अगर उसको सर्च करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन भी जाते हो इंटरनेट पे तो वो भी आपको कहीं से कहीं ले जाता है,
1: दिख जाता है
2: और समय बहुत जाता है उसमें। तो मैं एकदम तंग आके और गुस्से में मैंने आके सारी डिवाइसेस बाहर निकाल दी।
1: क्या बात है,
2: मैं सब कमरे से बाहर। तो हमारे ऑफिस में एक छोटा सा स्पेस है जो स्लीपिंग पॉड है, जो गुस्कुम गुफा भी बोलते हैं कि हम, तो मैं वो गया, वो सेट हो जाता है, पूरा पैक हो जाता है, सारी डिवाइसेस बाहर की, पेन पेपर पकड़ा और मैंने लिखना शुरू किया। पहला सीन जैसे क्रैक हुआ मैं गया अंदर, मैंने लिखना शुरू किया। इन 15 दिन में रिकॉर्ड 15 डेज टाइम में मैंने पूरी स्क्रिप्ट फिनिश कर दी। आपको बिलीव नहीं होगा कि पहला ड्राफ्ट ही है जो मैंने शूट किया है, देयर इज नो चेंज इन द फिल्म, इज स्ट्रेट एक बार में। तो मेरा सजेशन लोगों को यही है कि डिजिटल डिवाइसेस आर सो डिस्ट्रैक्टिव, जब भी आपको लेखन करना है, जैसे आपने भी पेन पेपर पे लिखा है सब,
1: बिल्कुल
2: है ना,
1: मोबाइल में है, जबकि
2: मोबाइल में आप लिख सकते हो, पर आप जो आपको जैसे बोलते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन से कनेक्ट फील होता है ना आपको, आपका माइंड वो बोलते हैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बोलिए जो भी बोलिए, कि आपको कहीं ना कहीं एक लूप है वो, हाथ से जब आप लिख रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन से जो निकल रहा है वो हो रहा है, और उसमें किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो डिवाइस आपकी आंख में रोशनी नहीं छोड़ रही है, वो ऊपर से एक मैसेज नहीं आ रहा उसमें और बीच में से कॉल नहीं आ रही है, ऑल दैट हैपेंस। एंड देयर आर पीपल जो कि सिर्फ जो है ना मोबाइल फोन पे लिख लेते हैं, पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना वो सैंक्टिटी चली जाती है,
1: बिल्कुल कहीं न कहीं
2: डिस्ट्रैक्शन होते रहते हैं।
1: सही कह रहे हैं, और ये बात है कागज पे लिखा हुआ भले दिमाग में लिखा हुआ लेकिन कागज रखा है साथ में, हाँ। ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक गाना होना चाहिए, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुना है?
2: मुझे लगता है कि फूलों के रंग से इज माय ऑल टाइम
1: फेवरेट,
2: प्रेम पुजारी का गाना
1: है, लिखा हुआ सचिन देव बर्मन संगीतकार, तो सुनते हैं।

0: पुजारी फिल्म का ये गाना था और इस गाने के साथ एक बार हम आपको फिर बुंदेलखंड ले चलते हैं। बुंदेलखंड की कोई ऐसी यादगार घटना हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: बुंदेलखंड में जब मैं पढ़ने से पहले भी, मतलब मुझे लगता है मैं स्कूल में भी नहीं गया था, तो मैंने हमारी मैं मेरे पेरेंट्स के साथ में, मेरे माता जी पिताजी के साथ में ट्रेवल कर रहा था एक कालपी से उरी के बीच में, और वहां पर रास्ते में एक भवानी मंदिर, भवानी जी का, माता का मंदिर होता है। फर्स्ट मेमोरी मेरी वही है सबसे स्ट्रांग। और अचानक से वो गाड़ी रुक जाती है, बस रुक जाती है, और सब लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि अरे मतलब डकैत ऐसा नहीं। एंड गाड़ी रुक जाती, सब सहम जाते हैं, पर मैं बहुत इंटरेस्ट से आगे चला जाता हूँ। लिटरली होता है ग्लास जो होता है उसके पास, मैं बच्चा हूं मैं, वो मेरी बहुत स्ट्रांग मेमोरी है। जहां पे फिर मैं देख रहा हूँ बड़ा सा खोड़ा और उसपे छोटी सी महिला उसने जो है ना पट्टा बांध रखा है, उसके यहाँ पे बंदूक है। वो बड़ा फैसिनेटिंग था, मतलब फॉर अ किड अचानक से इतना कोई आया है जिसको, और ऐसी वेशभूषा में किसी को देखा नहीं। तो वो फिर वो दर्शन वर्शन करती हैं, वो भवानी मंदिर में अपने सर झुकाती हैं और फिर वो चली जाती हैं वहां से। किसी कुछ होता नहीं है, मतलब ऑब्वियसली वो लूट के लिए नहीं आई थी, वो दर्शन करने के लिए आई थी। तो एक वो है, और दूसरा जब मेरे स्कूल के समय, जब मैं स्कूल और कॉलेज जब मैं पढ़ रहा था, कौंच भी जो ना कुंच ऋषि की धरती थी वो, मुझे बहुत लेटर समझ में आया। वहां पे रानी लक्ष्मीबाई जब वहां से निकली थी और वो चोटिल थी, घायल थी, तो कौंच में एक जगह थी जहां पे उन्होंने रात गुजारी थी, मलहम वगैरह भी वहीं पे हुई थी उनकी। तो ये सारी चीजें जो थी, और प्लस बुंदेलखंड में वो जो भाषा है बहुत ही, मतलब ब्रिज की लठमार और थोड़ा सा उसके अंदर हल्का सा भाव और प्रेम भी आ जाता है।
0: जी, जी।
1: तो वो लहजा जो है ना मुझे हरदम से बहुत फैसिनेट करता है, स्पेशली पान सिंह तोमर और बैंडिट क्वीन वगैरह जो फिल्म्स हैं, इन सब के अंदर इनफैक्ट वो नत्था वो यूज टू स्पीक उसमें पीपली लाइव में, वो भी बुंदेली बोलता है। फिर वो एक और बहुत भाभी जी घर पे हैं, वो एक सीरियल है, वो मेरे बहुत क्लोज मित्र थे जिनके अभी उनका देहांत हो गया, जिन्होंने जो राइटर थे उसके, वो उन्होंने एक कैरेक्टर हप्पू सिंह। तो ये सब बहुत बुंदेली बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, एक्चुअली पॉपुलर बोली है, पर वो कभी ऐसा मेन स्ट्रीम में वो गाने मेन स्ट्रीम नहीं हुए थे। और ऐसा नहीं कि मैंने बुंदेली ढूंढने के लिए बुंदेली ढूंढा था, मुझे तो उत्तर प्रदेश और मध्य भारत की बोलियों में गाने चाहिए थे। तो लगभग 50% सॉन्ग से ऐसे जो है ना सासा आले हंसा चाले अवधि है, फिर ये ब्रिज है, आवागमन थोड़ा ब्रिज और इसके बीच का है, आवागमन मिटा दो भोले शंकर। तो ये सारे गाने जो है ना एक करके, वो आइडिया ये था कि जितना हो सके हम मिट्टी की खुशबू इस फिल्म के अंदर लेके आए।
0: तो यहाँ पर गाना सुनवाते हैं।
2: हर हर महादेव।

0: आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे हनुमान अंश, फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी से ममता सिंह की बातचीत की पहली कड़ी। इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी सुनिएगा अगले सप्ताह इसी समय। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: आज के

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता, सुबह और शाम 6:00।

0: सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है
1: ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
3: विविध भारती से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम रंग तरंग।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है FM बैंड 101.3 MHz पर। प्रातः के 11 बज चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: रवैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। रवैया, कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
3: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
2: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
4: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: जहाँ प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है।
1: हाँ।
0: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट है।
1: हाँ।
0: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
0: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: हेलो,
1: हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
3: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
4: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
3: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
5: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
1: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
0: लेप्रोसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
2: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM बैंड 101.3 MHz पर। प्रातः के 11:30 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

0: ये जानना चाहते हैं कि आज की आवाज मेरा ख्याल है आपकी पहली फिल्म
1: नहीं है। मेरी पहली फिल्म थी मुजफ्फर अली की गमन
0: जी,
1: और उसमें मैंने काम किया था। स्मिता थी, फारूक शेख था, जलाल आगा था।
0: कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, गमन फिल्म का रोल कैसे मिला आपको?
1: वो सही परांज पे की वजह से, उसने मैं वो पाहिजे जातीजे विजय तेंदुलकर का प्ले कर रहा था, तो उसने सही ने रेकमेंड किया मुजफ्फर को कि ये ऐसा ऐसा बच्चा है, तो उस तरह मुझे वो रोल मिला और मैंने किया। बहुत हालांकि बहुत छोटा सा किरदार था, लेकिन अपने आप को स्क्रीन पे देख के मुझे लगा था कि यार क्या कमाल, ये सुंदरम में लगी थी फिल्म। मैंने सोचा मैं फिल्म देखने जाऊंगा तो लोग मुझे देखते रहेंगे, परेशान करेंगे। पूरे थिएटर में 13 लोग थे, ऊपर हम 6 थे
0: जी।
1: बालकनी में एक सातवां आदमी था हमारे अलावा, शायद बारिश बहुत हो रही थी इसलिए कोई थिएटर में आए थे, और नीचे कुछ 5-6 लोग थे
0: जी।
1: कुल मिला के 13 लोग थे, लेकिन मैं अपने आप को स्क्रीन पे देख के इतना खुश हुआ था
0: जी।
1: निकलने के बाद मुझे लगा लोग मुझे पहचानेंगे, कुत्ते ने भी नहीं देखा मेरी तरफ
0: जी।
1: हालांकि फिल्म मुझे इतनी, मुझे तो बकवास लगी थी, लेकिन उसको अवार्ड्स बहुत मिले
0: जी,
1: मुझे ये इंटरनेशनल अवार्ड्स किस वजह से मिलते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सच कहो तो मुझे वो फिल्म उतनी रास नहीं आई थी, लेकिन शायद ऐसे ही फिल्मों को इंटरनेशनल अवार्ड्स मिलते होंगे, मालूम नहीं।
0: अच्छा, अंकुश आपकी बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म रही है।
1: हाँ, उसके बाद मैंने आज की आवाज की, और उसके बाद एन चंद्रा ने मुझे अंकुश का रोल ऑफर किया। हालांकि अंकुश में उन्होंने पहले दूसरा रोल ऑफर किया था, ये मैंने जो रोल किया वो रविंद्र महाजनी करके हमारे मराठी के एक एक्टर थे, उनको पूछा था, लेकिन उन्होंने 25,000 रूपये मांगे तो वो उनके पास थे नहीं
0: जी।
1: तो फिर एन चंद्रा ने मुझे पूछा तो मैंने ये रोल किया, लेकिन एन चंद्रा का मेरी ये इस करियर में फिल्मों में आने में बहुत बड़ा हिस्सा है। उन्होंने मुझे वो रोल नहीं दिया होता तो शायद ही मेरी थोड़ी सी जो पहचान है वो हो पाती, तो इन चंद्रा का मैं आभारी हूँ उसलिए
0: जी। अच्छा, बात उन दिनों की चल रही है आपके शुरुआती दौर की, तो शुरुआती दौर का कोई गाना अपनी पसंद का सुनवाना चाहेंगे श्रोताओं को?
1: वो शुरुआती मुझे उस फिल्म का, वो इतनी शक्ति हमें देना दाता मुझे बहुत पसंद है,
0: अंकुश फिल्म,
1: अंकुश का
0: जी, सुनते हैं।

0: नाना, अपहरण आपकी फिल्म है, तो अपने रोल के बारे में कुछ बताइए ना।
1: एक जो कहानी जो कहने जा रहे हैं, जो एक स्वाभाविक जो घट रहा है हमारे यहाँ हमारे देश में, हालांकि हर पूरे दुनिया में जो घट रहा है उस पर टिप्पणी करना चाहते हैं प्रकाश झा। एक बेहतरीन कुछ कहना चाहते हैं, बेहतरीन मतलब कोई फिल्म का कैसे सब्जेक्ट हो सकता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसको फिल्मी बगैर फिल्मी बना के उन्होंने जिस तरह से कहा है मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये इस फिल्म का हिस्सा होने का मुझे मौका मिला।
0: जी, और प्रकाश झा बना रहे हैं, आपने जिक्र भी किया, तो प्रकाश झा के साथ किस तरह की आपकी ट्यूनिंग है शूटिंग के दौरान फिल्म?
1: प्रकाश झा के साथ बेहतरीन ट्यूनिंग है क्योंकि हमारा एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ। आज भी वो मुझे खाना खिलाता है, मैं उसे खिलाता हूँ, एक दूसरे को गाली नहीं देते, तो मुझे लगता है इसका मतलब यह है कि हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। उन्होंने जितने पैसे तय किए थे वो सब दिए मुझे, मैंने भी लिए, और आज भी एक दूसरे के प्रति आदर है।
0: अच्छा, कोई यादगार घटना है अपहरण से जुड़ी हुई कुछ बताना चाहेंगे?
1: यादगार मतलब इस फिल्म की वजह से मुझे प्रकाश ने, अजय देवगन नाम का एक बेहतरीन इंसान है, एक्टर कैसा है खैर आप लोग जानते हैं, लेकिन एक बेहतरीन इंसान है, बड़ा नटखट है, बहुत मतलब हैरान करता है सेट पे सबको, लेकिन कमाल का इंसान है। मैं उसका आभारी हूँ प्रकाश का कि वो उसकी वजह से अजय मुझे मिला।
0: किसी ऐसी घटना का जिक्र करना चाहेंगे?
1: अरे एक छोड़ यार भाई, इतनी घटनाएं मतलब इतना परेशान करता था सबको, कभी किसको भंग खिला दे, कभी जमाल गोटा खिला दे, कभी कुछ भी करता है, मालूम नहीं है यार, ये बड़ा परेशान करता है बच्चा।
0: अच्छा नाना, सुना है कि दोबारा आप निर्देशन की ओर आना चाह रहे हैं?
1: हाँ, बहुत सालों के बाद एक जहन में कहानी थी, प्रकाश को मैंने ऐसे ही बैठे बैठे बोल दिया, तो उसने, प्रकाश ने कहा ये क्यों नहीं बनाता अपने बैनर के लिए, तो उनके बैनर के लिए मैं बना रहा हूँ। अब वो उसका नहीं रहा, मेरा भी रहा, मेरा हो गया उसका बैनर
0: जी,
1: तो उसके लिए बना रहा हूँ।
0: और प्रहार आपकी
1: पहली फिल्म
0: निर्देशित, तो प्रहार के बारे में क्या यादें हैं कुछ बताइए ना।
1: प्रहार के बारे में मैं जब भी प्रहार देखता, मेरा जो बच्चा है उसमें से छोटा सा, मेरे बचपन का रोल उसने किया है, मैं सच कहता हूँ आज भी मैं अपने बच्चे को देखता हूँ मुझे वही बच्चा याद आता है, मेरे जो बड़ा हुआ वो मुझे मल्हार जो है वो मेरे जहन में ही नहीं बैठता, मुझे वही बच्चा याद आ जाता है। तो प्रहार के साथ मेरी जुड़ी हुई जो बातें है वो मल्हार के साथ जुड़ी हुई है, जिस तरह से मैंने उससे काम करवाया था, वो बेचारा रोता था, उसको रुलाने के लिए मैंने क्या किया, और आज भी वो मिलता भी है तो उसी तरह से मिलता है
0: जी। कैसे करते थे, कैसे रोल कैसे करवाते?
1: यार रो नहीं रहा था तो दो चाटे लगा दिए मैंने कहा रो, और वो इतना
0: दुख नहीं होता था आपको?
1: हमने क्या करे, लेकिन वो शॉट चाहिए था, और बाद में मैंने उसको गले लगाया तो मुझे ढकेल रहा था, कहता कि नहीं मुझे गले लगना, तूने मारा मुझे, सबके सामने मारा, और भीड़ के बीच में मैंने उसके साथ वैसे बर्ताव किया था। खैर काफी अच्छी यादें हैं।
0: अच्छा, फिल्म प्रहार के निर्देशन का ख्याल कैसे आया था आपके मन में?
1: वही बात कि मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था बहुत पहले, वो तो मैं कर नहीं पाया, वहाँ खड़की में, मैं पुणे में जाते हुए खड़की जो लगता है, खड़की में हम जब भी कोई मैं जवान देखता था उनका सामान उठाओ या कुछ करो, उनको सलाम करो, जहन में था, लेकिन जिस तरह से उनकी इज्जत होनी चाहिए वैसे वो जो हमारे सिविल एरिया में जब आ जाते हैं तो उस तरह की उनकी इज्जत नहीं की जाती, ऐसे मुझे लगता था। और फिर वो लगातार जब हमारे यहाँ वॉर होती

0: है तब हम बड़े नारेबाजी करते हैं, लेकिन जैसे वो खत्म हो जाता है हम उनको भूल जाते हैं, उनकी कुर्बानी भूल जाते हैं। तो उस वजह से वो जहन में था। उसके बाद मैंने मराठा लाइट इन्फेंट्री में स्पेशल परमिशन लेके काफी वक्त गुजारा वहां, पूरी स्क्रिप्ट लिखी और बाद में ये फिल्म बनाई थी।
1: अच्छा, ये बहुचर्चित बहुप्रशंसित फिल्म थी, लगभग 15 साल हो गए। हमने सोचा था कि आप और फिल्में डायरेक्ट करेंगे, लेकिन इस बीच आपकी फिल्में आई नहीं, क्या वजह थी?
0: नहीं, वजह ये थी कि बीच में जब मैं वैसे बहुत ही साधारण घर से था, उतने पैसे थे नहीं मेरे पास। ये फिल्म करने के बाद काफी ऑफर्स आई तो पैसे बटोरने में मैं मशगूल हो गया, हालांकि ये गलत था। और अपना एक घर हो, छोटा सा क्यों ना हो, उस घर के लिए। फिर आदमी हूँ, इंसान हूँ, तो फिर वो लालचे बढ़ जाती है, फिर ये थोड़ा सा ये भी चाहिए, फिर थोड़ा ये भी चाहिए, फिर थोड़ा ये भी चाहिए, और ये बढ़ता गया और वो मैं कर नहीं पाया। अब जाके ऐसे लगता है कि जिंदगी में जितना कुछ चाहिए था वो उससे बहुत कुछ ज्यादा ऊपर वाले ने दे दिया है। तो एक जहन में कहानी थी तो करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि एक बार आप सोच लो कि मुझे इतना चाहिए और वहां अगर रुक जाओ ना तो बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन हम उसमें इतने मशगूल हो जाते हो बटोरने में।
1: अच्छा, फिल्मों में आप बड़े गुस्सेल नजर आते हैं और मुझे भी पूछते हुए थोड़ा सा डर लग रहा है तो इस जो असली जिंदगी है, असली शख्सियत क्या है नाना पाटेकर की?
0: नहीं, अब आपने मुझे देखा है, आप पहली बार मुझे मिल रही है,
1: बहुत अच्छा लग रहा है।
0: हाँ, तो आपको तो मालूम है मैं मेरे किरदारों के वजह से, अब किरदार ही ऐसे निभा है तो ये बिल्कुल जायज है कि आपको लगे कि नहीं मैं वैसे ही हूँ। अब अभी आप मिली है तो आपको शायद पता चला होगा कि मैं उतना डरावना नहीं हूँ जितना आपने सोचा था। खैर, लेकिन वो क्या, जैसे एक बार एक किरदार अगर लोगों को पसंद आ जाता है वो फिर उसी तरह के किरदार में आपको डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर वो कैद कर देते हैं।
1: पर असल जिंदगी में नाना पाटेकर बड़े ही अच्छे और
0: हाँ भाई, मैं भी हंसना चाहता हूँ, मैं भी खाना खाता हूँ, मैं भी सोता हूँ, मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी हंसी आती है, मुझे भी दुख होता है।
1: अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कोई आपकी पसंद का गाना सुनते चले?
0: वो एक जो दो आंखें भारत का सैया
1: सैया झूठों का बड़ा सरदार
0: निकला,
1: जी सुनते हैं।

0: अच्छा मुनाना जय की श्राफ के साथ आपकी कई फिल्में आई हैं।
1: चार पांच फिल्में हैं।
0: हाँ, परिंदा, अग्नि साक्षी, युग पुरुष भी।
1: युग पुरुष थी, फिर गैंग थी।
0: तो जैकी के लिए कुछ बताइए ना, कैसी ट्यूनिंग रही है, कैसी दोस्ती
1: रही? जैकी बहुत अच्छा दोस्त है, बेहतरीन इंसान है। ऊपर से दिखाता है बहुत ही ऐसे है नहीं, वो बहुत बहुत बहुत ही सीधा सा बंदा है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मुझे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो मेरा दोस्त है।
0: जी, तो कोई वाकया बताइए ना दोस्ती का, कि लोगों को भी यकीन हो।
1: आज तक मिलते रहता है, आज तक गणपति में आता है, बीच में जभी जभी फोन करके पूछता है, माँ कैसी है, तू कैसा है, टाइम है क्या, चलाऊं क्या कैरम खेलने। वो पहले शशिलाल नायर, वो मैं, काफी अंगार फिल्म जब हमने की थी, काफी खेला करते थे। वेरी नाइस सोल, वेरी नाइस सोल।
0: अच्छा, जैकी श्रॉफ के लिए कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे श्रोताओं को?
1: जैकी श्रॉफ

0: अच्छा जैकी साहब, के लिए और कुछ बताना चाहेंगे? कोई खास घटना, थोड़ी नोक झोंक, तकरार भी होती है?
1: नहीं, जैकी के साथ कभी तकरार हुई ही नहीं, वो उसके साथ तकरार नहीं हो सकती। ज्यादा गुस्सा आएगा, उधर चले यार, जाने देना, छोड़ना, खत्म हो गया, उधर ही खत्म हो जाता था उसका।
0: अच्छा नाना, लोग आपकी डायलॉग डिलीवरी के बारे में बहुत चर्चा करते हैं और डायलॉग डिलीवरी के बड़े दीवाने हैं यूं कहें, लेकिन आजकल फिल्मों में जैसे ज्यादातर फिल्मों के डायलॉग हिट नहीं होते हैं, हालांकि आपके फिल्मों के साथ ऐसा नहीं है, तो आप कितनी मेहनत करते हैं इसके लिए?
1: मुझे नहीं मालूम, ये सभी कुछ निर्भर होता है कि वो फिल्म लिखते जो है, मेरा श्रेय उसमें 10% होगा, लेकिन जो लिखते हैं उस पर ज्यादा निर्भर करता है। लेकिन वो किरदार कौन सा है, किस तरह से आपको निभाना है, उस पर निर्भर है। हर जगह वो उस तरह से नहीं बोल सकते आप।
0: कोई खास तैयारी करनी पड़ती है आपको?
1: रटने तो पड़ते हैं भाई, वो अंदर डालने पड़ते हैं, सिर्फ

0: रखना नहीं, अगर नाभि तक जाए तो वहां से वो आते हैं तब जाते, गले से उतरते हैं तो वो झूठ लगते हैं, अंदर से आते तो आप वो खांसते भी है तो भी अच्छा लगता है, आवाज आपकी श्रील हो जाती है तो भी अच्छा लगता है, फटती है तो भी अच्छा लगता है, क्योंकि लोगों को पता चलता है कि नहीं वो अंदर से जहन से बोल रहा है तो बहुत आसान हो जाता है।
1: क्या बताना चाहेंगे कि कौन कौन से डायलॉग्स आपको बहुत पसंद है आपकी फिल्मों के?
0: नहीं मुझे याद ही नहीं,
1: नहीं याद है,
0: उस वक्त याद रहता है क्योंकि वो उस प्रसंग से निगड़ित रहते हैं, उससे जुड़े हुए रहते हैं, तो उस वक्त उसका इम्पैक्ट सही होता है। अभी आइसोलेशन में अभी ऐसे बोलूं मैं अलग से तो उसका मजा नहीं है।
1: संजय लीला भंसाली की फिल्म खामोशी में आपने,
0: उसके डायलॉग मुझे बहुत पसंद है मेरे,
1: बताना चाहेंगे?
0: ना
1: बताइए ना,
0: याद कीजिए उसके कौन से है, बोल ही नहीं सकते, गुंगे का रोल था ना, उसके बारे में क्या बोलूं, आपको बोलना चाहिए उसके बारे में।
1: किस तरह की मेहनत आपको करनी पड़ी?
0: काफी वो संजय ने एक जो बच्ची थी हमको सिखाने के लिए, खुद
1: जी
0: वैसी थी, उसका बच्चा जो मेरे बच्चे का रोल किया था वो उस संगीता का लड़का था उसमें
1: जी,
0: तो वो हमें पढ़ाती थी सिखाती थी और उसके बदौलत मैं जो कुछ कर पाया, लेकिन वो संजय ने उसका सब जिम्मा लिया था। संजय बहुत मतलब करता है जब, तो वो पूरा उसमें अपने आप को पूरा डाल के वो करने की संजय की
1: इन्वॉल्व करके जी। अच्छा खामोशी की चर्चा हो रही है, खामोशी का जिक्र हुआ है, तो उसी फिल्म का गाना सुनवाना चाहेंगे?
0: आज मैं ऊपर।

दोस्तों विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं जाने माने अभिनेता नाना पाटेकर से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत और आज हम उन्हें दे रहे हैं विनम्र श्रद्धांजलि। ये कार्यक्रम जारी रहेगा समाचारों के बाद।

0: सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं करने की भी सिफारिश की है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से कम के लंबित नोटिसों को वापस लेना भी शामिल है।
1: पेंडिंग नोटिसेस बिलो द सेड थ्रेशोल्ड।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली की यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दीक्षा प्लेटफॉर्म से भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
3: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशंस और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट्स दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार केंद्र हैं। 4 दिन का सम्मेलन कल शुरू हुआ। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने युवाओं से भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपने कौशल, रचनात्मकता और नवाचार क्षमता का सदुपयोग करने का आह्वान किया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आज एक संस्थान में श्री मुरुगन ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की केंद्रीय भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। 2 दिन का सम्मेलन आज शुरू हुआ। ये शिखर सम्मेलन सभी राज्यों के महिला और बाल विकास क्षेत्र के साथ राजनीतिक नेतृत्व और आधिकारिक संबंध की भागीदारी का साक्षी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा, एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें एआई के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले वर्ष 863 अरब डॉलर का निर्यात किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 1 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य है। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में 31वें सीआईआई साझेदारी शिखर सम्मेलन के पूर्वावलोकन में ये बात कही। ये शिखर सम्मेलन 12 और 13 नवम्बर को विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आज नई दिल्ली में गंगा पुनरुद्धार पर गठित सशक्त कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नमामि गंगे कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई और नदी पुनरुद्धार के लिए कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रमुख उपायों पर विचार विमर्श किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सकों को दिए जाने वाले उपहारों और अन्य लाभों सहित औषधि कंपनियों की विपणन प्रणालियों के वैधानिक नियमन की जांच के लिए केंद्र सरकार को 3 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और तरुण मन्नेपेली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दोस्तों, समाचारों से पहले आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता नाना पाटेकर से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। आइए उस बातचीत का आगे का हिस्सा सुनते हैं।
5: अच्छा नाना, आपकी दो छवियां मानी जाती हैं, तो आपकी दोनों छवियों के बारे में हम बात करना चाहते हैं। एक तो गुस्सेल छवि है और दूसरी बड़ी सॉफ्ट है। तो आपकी कई ऐसी फिल्में जिसमें आपका किरदार तेज तर्रार और मार धाड़ वाला है, जैसे क्रांतिवीर, गुलाम ए मुस्तफा, अग्निसाक्षी, तिरंगा या फिर अब तक।
6: अग्निसाक्षी में कहां मारधाड़ है,
5: थोड़ा गुस्सेल तो रहा।
6: गुस्सेल तो बहुत ही है लेकिन मारधाड़ कहाँ है।
5: तो गुस्सेल भी है और मार धाड़ वाला रोल, तो दोनों को हम मिक्स करते हुए बात करना चाह रहे हैं। तो अपनी इस छवि के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
6: मैं क्या कहूँ, तुम बताओ। तुम बताओ क्या
5: कैसा अनुभव रहता है आपको? क्या
6: अरे भाई, अनुभव तो आप लेते हैं, मैं तो कुछ अलग ही हूँ, मुझे मालूम है
5: जी।
6: ये तो मेरे लिए सिर्फ एक किरदार होता है
5: जी।
6: आपका अनुभव क्या है? बहुत से लोग ऐसे है कि अग्निसाक्षी के बाद वो औरतें मुझसे बात ही नहीं करती थी कि नहीं ये बंदा ऐसे लेकिन कहीं वो आइडेंटिफाई भी कर सकते।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी है। जुर्माने और कार्यवास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया गया है। कर फाइलिंग में देरी, गलती या भुगतान करने में विलंब करने वाले करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है।
1: जीएसटी काउंसिल टुडे हैज रिकमेंडेड।
2: जीएसटी परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानकों की सिफारिश की है। 10,000 रुपए के निर्धारित मौद्रिक

0: करती थी कि हमारा मियां भी थोड़ा बहुत ऐसा ही है, इतना ही पजेसिव है, इतना ही थोड़ा सा मारधाड़ उतनी नहीं करता होगा
1: जी।
0: लेकिन हर कोई बंदा अपनी बीवी के बारे में उतना तो पजेसिव होता है, जितना दिखाया हमने उतना तो नहीं होगा लेकिन कुछ हद तक तो होता ही है, तो कहीं तो आइडेंटिफिकेशन हो जाती है
1: जी। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो छवि आपकी है, इस छवि में कहीं कैद तो नहीं किया जा रहा है?
0: बहुत बहुत कैद हो गया। मैं सच कहता हूं कि मुझे लगता है कि अगर उस वक्त मैंने वो लगातार वो जिस तरह के रोल किए वो नहीं करता तो शायद मुझे अलग तरह के रोल उस वक्त मिल जाते, लेकिन वो वैसे हुआ नहीं। लेकिन उसके पहले मेरे परिंदा के बाद अगर मैं अमोल पालेकर ने मुझे थोड़ा सा रुमानी हो जाए उस तरह की फिल्म, मतलब उन्होंने भी सोचा था कि नाना ये तुम्हारे मतलब प्रकृति का रोल है नहीं और तुम ये नहीं कर पाओगे। मैंने कहा भाई एक्टर हूँ, थोड़े दिन मेरे साथ रिहर्सल कर ले और बाद में देख ले, अगर तुझे नहीं जचता तो निकाल दे मुझे। और फिर मैंने वो फिल्म उनके साथ की थी, हालांकि उसके डायलॉग जो है बहुत कमलेश पांडे ने लिखे थे
1: जी।
0: तो मतलब वो मुक्त छंद में लिखे हुए वो डायलॉग थे, मतलब हाँ मेरे दोस्त वही बारिश जो आसमान से आती है, बूंदों में गाती है, पहाड़ों से फिसलती है, नदियों में चलती है, नहरों में मचलती है, कुएं पोखर से मिलती है, खपरेलों पर गिरती है, गलियों में फिरती है, मोड़ पर संभलती है, फिर आगे निकलती है। तो जिस तरह से उसका रिदम था, इसे पानी भी कहते हैं उर्दू में आप, मराठी में पानी, तमिल में तन्नी, कन्नड़ में नीर और बांग्ला में इसे चौल कहते हैं, संस्कृत में जिसे वारी, नीर, जीवन, पय, अमृत, उद, अंबु भी कहते हैं, ग्रीक में इसे अक्वा प्यूर, अंग्रेजी में वाटर, फ्रेंच में और केमिस्ट्री में H2O कहते हैं। ये पानी जब आंख से ढलता है तो आंसू कहलाता है, लेकिन चेहरे पे चढ़ जाए तो रुबाब बन जाता है, कोई शर्म से पानी पानी हो जाता है। और कभी कभी ये पानी सरकारी फाइलों में अपने कुएं समेत चोरी हो जाता है। पानी तो पानी है, पानी जिंदगानी है, इसलिए जब रूह की नदी सूखी हो, मन का हिरन प्यासा हो, दिमाग में लगी हो आग और प्यार की गागर खाली हो, तब मैं हमेशा ये बारिश नाम का गीला पानी लेने की राय देता हूँ। मेरी मानिए तो ये बारिश खरीदी है, सस्ती सुंदर टिकाऊ बारिश सिर्फ 5,000 रुपए में, इससे कम में कोई दे तो चोर की सजा हो मेरी, आपकी जूती सिर पर मेरी, मेरी बारिश। तो ये जो है,
1: क्या बात है, बहुत अच्छा।
0: ये उन्होंने लिखा है आज इतने सालों के बाद, मतलब 15-16 साल के बाद भी वो जहन में रहता है, क्योंकि उसका एक जो रिदम है, उसके वर्ड्स है, उसकी वजह से याद नहीं करना पड़ता
1: जी।
0: तो वैसे वो वजूद में उन्होंने, जावेद साहब ने जो लिखा था, कैसे बताओ मैं तुम्हें
1: जी।
0: मेरे लिए तुम कौन हो, धड़कनों का तुम गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, प्रीत हो, मनमीत हो, आंखों में तुम, यादों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में, मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम, जाऊं कहीं देखूं कहीं, तुम हो वहां, तुम हो वहीं, कैसे बताओ मैं तुम्हें, तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं, कैसे बताओ मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो। सो ये जो है, ये हुनर राइटर का है, नहीं तो ये जहन में कैसे रहेगा, सोचना नहीं पड़ता, वो लफ्ज अपने आप जुबान पे आ जाते हैं क्योंकि वो दिमाग में नहीं है, जहन में जाके बैठा है
1: जी। पर तारीफ का थोड़ा श्रेय तो आपको इस वक्त लेना चाहिए,
0: तो वो
1: सारे याद है आपको।
0: वो क्या है, पोस्टमैन जैसे वो यहाँ से पत्र वहाँ डाल देता है ना
1: जी,
0: वैसे हमारा काम है वहाँ से ले लिया और आप तक पहुँचाया बस
1: जी। बहुत अच्छा लगा हमें, और जो आपने इतना सारा सुनाया, और हमारे श्रोता भी बहुत, मेरे ख्याल से
0: मैंने आपको कहा मौका दिया, मैं तो बोलते गए आपको सुनना पड़ा आपको।
1: इस वक्त तो आपको सुनना लोगों को ज्यादा पसंद आएगा, इसलिए आप ज्यादा बोले। अच्छा, गुलजार साहब के साथ हुतुतु में आपका कैसा अनुभव रहा है?
0: बहुत अच्छा अनुभव रहा, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि वो किरदार, अब गुलजार साहब ने एक बार स्क्रिप्ट लिख दी तो लिख दी, उसमें कोई बदलाव आ नहीं सकता, वो उतना ही वैसे ही वैसे। मैं चाहता था कि वो थोड़ा सा, मैंने बहुत मिन्नतें की लेकिन उन्होंने मेरा रोल बढ़ाया नहीं, वैसे ही रखा।
1: अच्छा।
0: बिल्कुल जायज था, लेकिन वो करते हुए हर एक आदमी का एक अपना तरीका होता है काम करने का, लेकिन वही गुलजार साहब जब वो खुद कैमरा के सामने खड़े हुए ना तो पूरे पसीना पसीना हो गए थे।
1: अच्छा।
0: वजूद में उनको मुझे ट्रॉफी देनी थी, इतना ही रोल करना था। गुलजार साहब मतलब सर से लेके नाखून तक नीचे भीग गए थे। मैंने कहा आप कैसे लगा, वो उस वक्त आसान लगता था ना, नाना ऐसे करो ऐसे करो, कहते बदतमीज ठहर, जरा खत्म होने दे फिर बता दो।
1: अच्छा।
0: तो वो हर एक की अपनी एक फैकल्टी होती है। गुलजार साहब जब कविता पढ़ते हैं तो लगता है कि मतलब क्या सुनते ही रहे, हर एक का एक अपना तरीका है, बड़ा मजा आता है।
1: गुलजार साहब के लिए कोई गाना सुनवाना चाहेंगे?
0: गुलजार साहब के लिए

0: मेरा गोरांग लेले महिषामरंगी,
1: ये उनका लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से उनका पहला गाना है।

0: आपने थोड़ा सा गुनगुनाया लेकिन बहुत धीमे धीमे गुनगुनाया।
1: हाँ, इससे ज्यादा गुनगाऊंगा ना सब रेडियो बंद कर देंगे ना, जोर से गुनगाऊंगा।
0: अगर सच में गाते हो आप, मैंने सुना है कि आप संगीत के बहुत शौकीन हैं।
1: मुझे बहुत अच्छा लगता है संगीत,
0: शास्त्रीय संगीत।
1: तानसेन तो नहीं बन सका लेकिन मैं कानसेन हूँ, मैं सुनता बहुत हूँ, और शास्त्रीय संगीत मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि विदेशी संगीत मैं बहुत कम सुनता हूँ, तो शायद वो विदेशी संगीत मुझे रास नहीं आता, उसकी वजह यह है कि मेरी अकल कम है, वो अंग्रेजी आती नहीं है ज्यादा, तो उसकी वजह से शायद। लेकिन शास्त्रीय संगीत भी कोई समझ में नहीं आता, लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है।
0: कभी गाते नहीं है?
1: नहीं, गाता हूँ, गुनगुनाता हूँ, लेकिन किसी को डराना है तब।
0: अच्छा। नाना, अब मैं आपकी दो तीन महत्वपूर्ण फिल्मों की बात करना चाहती हूँ, एक सलाम बॉम्बे, दीक्षा और त्रिशाग्नि। तो बतौर अभिनेता ये बताइए कि आपको क्या संतोषजनक लगी थी ये फिल्में, क्योंकि ये फिल्में ऑफ बीट थी, बल्कि आजकल की शैली में कहें तो कला फिल्मों का दर्जा दिया जाता है। बतौर अभिनेता ये बताएं कि कैसी लगी थी आपको?
1: नहीं, मुझे, मैं सच कहता हूँ, मैं जब स्क्रिप्ट मुझे अच्छी लगती है तो मैं तुरंत हाँ कर देता हूँ, फिर रहती बात की आपका किरदार क्या है उसमें। अब ये फिल्में जब मैंने हाँ बोल दी थी, दीक्षा का वैसे रोल बहुत ही छोटा था, सलाम बॉम्बे का हालांकि काफी फुटेज थी उसको, या त्रिशाग्नि तो पूरी फिल्म ही उस पर है, उस कैरेक्टर पर। एक रहती है कि यहां से निकल के आप कहीं सीखने जा नहीं सकते, और इधर अंदर रहते हुए एक सीखने का मौका होता है। तो घोष साहब थे जिन्होंने त्रिशाग्नि बनाई, तो उनके साथ एक सीखने का मौका मिला था। फिल्म चलेगी कितनी नहीं चलेगी मुझे मालूम नहीं था, इसलिए त्रिशाग्नि की। दीक्षा उसी तरह पहले बनी हुई फिल्म थी, दूसरी भाषा में घटश्राद्ध उस पर वो आधारित थी, लेकिन घटश्राद्ध में मेरा कैरेक्टर नहीं था, बहुत ही एक शॉट के लिए था, जिसको उसको थोड़ा काफी फुटेज दी थी इसमें। और तीसरी थी सलाम बॉम्बे। सलाम बॉम्बे में जिस तरह से पहले मैं सहमत नहीं था, मैं सच कहूं, जिस बार मतलब फिल्म कंप्लीट होने के बाद, सलाम बॉम्बे देखने के बाद, मुझे ऐसे लगा कि निर्देशक हमारी यहाँ की गरीबी और वो गंदापन कितना है वही दिखाने की कोशिश कर रहा है, ताकि उस पर, तो मुझे, मैं उतना खुश नहीं था। लेकिन जिस वक्त ये फिल्में मैंने साइन की थी, लेकिन ये त्रिशाग्नि और इसने मुझे बहुत सुकून दिया, वो सीखने मिलता है, अलग लोग, अलग लोगों के साथ काम करके सीखने मिलता है, तो एक प्रोसेस था वो, उस प्रोसेस से मैं गुजरना चाहता था।
0: अच्छा, इन तीनों फिल्मों की बात करते हुए थोड़ा सा गंभीर हो गया है माहौल,
1: क्यों
0: तो थोड़ा सा लग रहा है
1: गंभीर,
0: तो माहौल को हल्का करने के लिए मैं ये जानना चाहती हूँ, क्रांतिवीर फिल्म में आपने अच्छा खासा डांस किया था बिंदु जी के साथ।
1: हाँ, मैं हिल गया था वहाँ ऐसे, मतलब टेढ़ा बाका उसको डांस कहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन

0: उसने मेहुल कुमार ने कहा ये ऐसे है, मैंने कहा हाँ भाई, और हमारी डांस डायरेक्टर या हमारा डांस डायरेक्टर विजय ऑस्कर आई थिंक डांस डायरेक्टर, उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई देखो एक टेक होने के बाद दूसरे टेक में मैं वैसे ही नाच नहीं सकता क्योंकि मैंने कैसे नाचा हूं मुझे ही मालूम नहीं, तो आपने एक बार जो तीन चार कैमरे लगा के जितना करना है वो कर लो
1: जी।
0: क्योंकि मुझे मतलब बिंदु जी के साथ नाचना था, बिंदु जी को कहा, मैंने कहा आप जैसे नाचती है वैसे तो मैं नाच नहीं पाऊंगा, तो मैं जैसे नाचूंगा वैसे आप नाच पाएंगे क्या, तो उनका पूरा ध्यान मेरी तरफ था कि मैं क्या कर रहा हूँ।
1: अच्छा।
0: और बिंदु जी को इतना परेशान कभी शायद ही किसी ने किया होगा, लेकिन जो कुछ नहीं एक अपने आप को महसूस करके जो भी करना था वो कर लिया था और कन्विंस हो गया था मैं कि नहीं वैसे करना जायज है, तो कोई पिछले साल नेशनल में हिस्सा भी लिया
1: जी,
0: कुछ थोड़ा सा
1: सिल्वर मेडल वगैरह आपको मिला।
0: हाँ, वो तो चलता है
1: कुछ कैसा लगता है आपको?
0: नहीं अच्छा लगता है, क्या होता है कि ये फिल्म आपके पास कोई एक और एक जरिया हो जिसकी वजह से अपनी इंटेंसिटी है कहीं तो आप डाइवर्ट कर सकते हैं, फिल्में तो मैं लगातार नहीं करूंगा, तो एक बेहतरीन सा कोई एक ऐसा खेल हो या कोई और हुनर हो जिसमें आप अपने आप को ढाल सकते हैं, तो मुझे ये पहले से दिलचस्पी थी, रुचि थी इसमें, तो इसमें गया और मजा आ रहा है,
1: अच्छा लगता है।
0: हाँ।
1: अच्छा, सिल्वर मेडल की बात हमने की है तो हमें याद आया पुरस्कारों की, आपको कई पुरस्कारों से नवाजा गया है, तो आपके जीवन में क्या महत्व है अवार्ड्स का?
0: मैं सच कहता हूँ अवार्ड्स का मेरे जीवन में बिल्कुल कोई महत्व नहीं है, पहले अच्छा लगता था नेशनल अवार्ड, आज भी मैं कहता हूँ मुझे मिले तो मुझे अच्छा लगेगा, उसके अलावा मैं किसी भी अवार्ड के लिए
1: जी।
0: अब हमारे शूटिंग के राइफल शूटिंग में तो मैनिपुलेशन का कोई सवाल ही नहीं है, आपने जो एक हाथ दिखाया दूसरे हाथ ले लिया, क्या करना है वो आप दिखा सकते हैं, यहाँ हमारे यहाँ किसको क्या अच्छा लगे कौन क्या कर रहा है मुझे समझ में नहीं आता।
1: सही अवार्ड तो लोगों की चाहत और लोगों
0: बस
1: की
0: बहुत है, बहुत लोगों को पसंद आया वो, अगर वो खुश है बस बहुत हो गया, या मैं ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, हालांकि तीन नेशनल अवार्ड मिले, तीन फिल्म फेयर मिले, खैर वो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन जिस तरह से दिए जाते हैं तो ऐसे लगता है कि ये दिए जाते हैं खरीदे जाते हैं क्या होता है, तो वो जब संदेह निर्माण होता है आपके दिमाग में जहन में तो वो ना ही लो तो अच्छा है।
1: नाना साहब, क्या आज भी आप पेंटिंग किया करते हैं? बचपन में तो किया करते थे ये?
0: नहीं बचपन में नहीं, मैं मतलब कॉलेज में जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में था, फिर वहां से मैं पास होके कमर्शियल आर्ट की डिग्री लेने के बाद एडवर्टाइजिंग एजेंसी में दस्टूसा में, तो आजकल कभी सेट पे बहुत ही मतलब टाइम लग रहा है, लाइटिंग हो रही है तो स्केचिंग कर लेता हूँ।
1: कुछ और बातें करें आपसे कुछ व्यक्तिगत जिंदगी से जुड़ी हुई, तो ये बताइए कि नाना का पसंदीदा खाना क्या है?
0: दाल चावल, नॉनवेज तो मुझे उतना रास नहीं आता, रोटी सब्जी तीखा हो तो जरा ज्यादा अच्छा है
1: जी,
0: बस मीठा नहीं खाता।
1: कभी खुद बनाने की कोशिश नहीं की?
0: खुद ही बनाता हूँ।
1: अच्छा।
0: ज्यादातर खुद ही बनाता हूँ, शायद उसी की वजह से तीखा बन जाता है।
1: अच्छा राणा साहब, सुना है कि आप क्रिएटिव राइटिंग में बहुत विश्वास रखते हैं।
0: क्रिएटिव राइटिंग मतलब यू बेटर डिस्क्राइब इट, व्हाट इज क्रिएटिव राइटिंग?
1: मतलब आप लिखते हैं साहित्य से जुड़ी हुई कुछ चीजें, कहानियां कविताएं इस तरह की कुछ चीजें लिखते हैं, कहीं पढ़ा हमने
0: ये, इसको आप क्रिएटिव राइटिंग कहती हैं? ऐसे नहीं, बताइए इसको आप क्रिएटिव राइटिंग कहती हैं?
1: मतलब यूं हम जानना चाहते हैं कि लेखन से कुछ आपको जुड़ाव रहा?
0: हाँ, लेखन से, लेकिन उसको क्रिएटिव राइटिंग नहीं कहते। क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है बताऊं आपको? आप अगर जानना चाहते हैं तो बताऊंगा।
1: जो हम मतलब जो महसूस करते हैं उसको लिखना?
0: नहीं, महसूस करते हैं उसको लेखन कहते हैं। क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है? क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है मुझे भी नहीं मालूम, तो हम इसको भूल जाते हैं।
1: अच्छा।
0: तो लेखन में तो मैं रुचि रखता हूँ थोड़ी बहुत, जो जहन में आता है वो लिख लेता हूँ।
1: किस तरह की चीजें लिखते हैं? जैसे
0: किस तरह की? मतलब आपने मुझे पूछा घर में कौन है, तो मैं कहता हूँ घर में है बस छह ही लोग, चार दीवारें छत और मैं, रात सावली एक सहेली, गोरा चिट्टा दिन है दोस्त, घर में है बस छह ही लोग, चार दीवारें छत और मैं, ऐसे टेढ़ावा का कुछ लिख लेता हूँ। अब देख रही है, बोल रही नहीं कुछ
1: मैं सुन रही हूँ, मैं सोच रही हूँ आगे कुछ आप सुनाएंगे।
0: मुझे लगा देख रही है, लेकिन आप सुन भी रही थी। सॉरी,
1: नहीं मैं अभिभूत हूँ कि आप कुछ और सुनाने जा रहे हैं। अगर सुनना पसंद आएगा ना,
0: मुझे लगा कि आंखों में ऐसे था कि क्या यार ये पागल आदमी है, यार मुझे सुनना पड़ता है, ऐसे था, इसलिए मैंने चुप बैठा।
1: नहीं मैं सुन रही थी कि लोग क्योंकि आपको सुनना पसंद करेंगे, इसलिए मैं सोच रही थी ज्यादा से ज्यादा आप

0: बनाए तो अच्छा लगेगा।
1: लेकिन क्या है, लोगों को हम दिखाई नहीं दे रहे हैं
0: जी,
1: लोगों आपकी आंखें लोगों को दिखाई नहीं दे रही, आपकी आंखों में ये आदमी क्या बकवास कर रहा है ऐसे कुछ लिखा था और मैंने पढ़ लिया। नहीं सर बता नहीं ना, थैंक यू वेरी मच।
0: अच्छा नाना साहब, डायरेक्टर पार्थो घोष ने विविध भारती के स्टूडियो में एक बार जिक्र किया था कि आपको पहाड़, जंगल और नदी बहुत पसंद है, तो वो मतलब आप उनको कहीं ले गए थे फार्म हाउस में, तो वो क्या थी कहानी कुछ हम जानते
1: हैं। वो उनको फार्म हाउस पे लेके गया, काफी बारिश होने लगी, पानी से गुजर रहे थे हम नाव से और इतनी ठंड थी, पार्थो घोष मतलब वहाँ जंगल उनके सर पे कम है, आपने देखा होगा उनके बाल झड़े हुए हैं, तो उनको वहां से ठंड शुरू होती थी और नाखून तक पैरों के, और वो इतने कांपने लगे, और वहां जाने के बाद वो हमने स्वेटर वगैरह तो थे नहीं, थोड़ा सा लिक्विड स्वेटर ले लिया हमने और हमारी ठंड जो है उसको काबू में रखने की कोशिश की, और वो जो है वहां वो बहुत डर गए थे, हालांकि उनको वो आदत नहीं है ऐसे जंगली जीने की, और मेरा चेहरा और मेरा बर्ताव भी आदिवासी है तो क्या करे। लेकिन मैं सच कहता हूं कि जो सुकून आपको पहाड़ों में, या वो हर एक की अपनी चाह है, कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको भीड़ ना देखे तो वो घबरा जाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि उनकी रोज छवि अखबार में अगर छप के नहीं आए तो उनको लगता है कि उनकी जिंदगी बेकार हो गई, बेचारे कितने बड़े बड़े हमारे एक्टर हैं, उनको लगता है नहीं हर विज्ञापन में उनको होना चाहिए, हर फिल्म में उनको होना चाहिए, हर इंटरव्यू में उनको होना चाहिए, हर सामाजिक क्षेत्र में भी उनको होना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग होते हैं, लेकिन वो कभी कभार ऐसी बात होती है कि इतना सब कुछ कमाने के बाद कभी विपत्ति आ जाती है, हमारे बंबई पर अभी आई हुई है बारिश हो गई, उनकी अपनी हाथ अपनी जेब में नहीं जाती, उनको अगर पैसे देने हैं तो कहेंगे हमारे शर्ट का नीलाम करो, इसका नीलाम करो, ये बेचो हमारा, हम जाके लोगों के पास पैसे मांगेंगे, लेकिन अपने जेब में हाथ नहीं डालते। तो ऐसे लोगों से मैं बहुत प्यार करता हूँ, मतलब इतना प्यार करता हूँ कभी ऐसे मिले ना तो मैं नहीं बोल सकता कि मैं उनके साथ कैसे बर्ताव करूंगा।
0: अच्छा इन दिनों आपकी क्या व्यस्तता है, कि कौन कौन सी फिल्में कर रहे हैं?
1: फिल्में अभी तो फिलहाल तीन फिल्में पूरी हो गई, एक अपहरण है, एक दूसरी ब्लफ मास्टर है और तीसरी टैक्सी नंबर 9211 है, तो नवंबर दिसंबर और जनवरी में तीन फिल्में लगातार आएगी, जो जिंदगी में मेरे कभी नहीं हुआ था, 5 साल का काम मैंने 1 साल में कंप्लीट कर दिया है। आपका गांव कौन सा है?
0: इलाहाबाद।
1: इलाहाबाद, अरे आप अमित जी के गांव से है।
0: कैसे आपके जहन में अचानक ये सवाल कैसे आया?
1: नहीं मैंने कहा आप इतनी साफ सुथरी हिंदी बोल लेती है और मेरी हिंदी ऐसी टूटी फूटी है, आपको तो कोई चारा ही नहीं बोलने, मतलब बोली भी नहीं सकती कि नहीं आप बुरी बोल रहे, बाद में शायद जाते वक्त अपने कलीग से बोलेगी आप, अभी तो नहीं बोल सकती।
0: पर्दे पर आपको खूब देखा है, खूब सुना है और बहुत पसंद सब लोग करते हैं यहाँ तक।
1: मैं आपकी बात कर रहा हूँ, सब करते हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम,
0: मुझे बहुत पसंद है आपका,
1: आपसे मैंने बुलवा के रखा कि नहीं देखो।
0: अरे मुझे बहुत पसंद है आपकी एक्टिंग, बहुत ही पसंद है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके सामने तारीफ करें तो ऐसा लगता है
1: नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा। आप तारीफ कीजिए, आप थोड़ी तो तारीफ कीजिए, नहीं हंसी है मत, हंसी है, मुझे लगता है कि मैं मतलब आप मेरे मजाक उड़ा रहे हैं, हंसती है तो मुझे लगता है खुशी से हंसती है कि मुझ पे हंसती है, मेरे समझ में नहीं आ
0: रहा। चलिए नाना साहब ये बताइए कि भविष्य में क्या योजना है?
1: भविष्य में मालूम नहीं है, मैं आज पे विश्वास करता हूँ, भविष्य क्या है मुझे मालूम नहीं है, कल क्या होगा मुझे मालूम नहीं है, कोई योजनाएं नहीं है, अभी की सांस अभी लूंगा, बात की ले पाऊंगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, तो भविष्य पे मेरा विश्वास नहीं है।
0: कोई फिल्म बनाना चाहती
1: नहीं, बनाना चाहता हूँ, वो योजना नहीं है, वो चाह है।
0: तो तबले की बात की है, और क्या क्या रुचियां हैं आपके एक्टिंग के अलावा?
1: तबला क्या हुआ, मैं जब मैं शुरू किया था सीखना, मैं 1-2-3 साल सीखा, उसके बाद वो हालात ऐसे थे मैं सीख नहीं पाया, क्योंकि फिर बाद में नौकरी करना शुरू किया मैंने बहुत कम उम्र में, फिर मैं कुछ कहीं और बजाना शुरू कर दिया लोगों के, तो फिर वो कंट्रोवर्सी में चला गया। तो ऐसे बुरी
0: अच्छा, बुरी चलते चलते नाना साहब बताना चाहिए।
1: नहीं नहीं बैठे बैठे चलते कहाँ, बैठे बैठे बोलेंगे, चलते चलते कहाँ।
0: अच्छा सुना है गणेशोत्सव बड़े शौक से आप मनाते हैं, क्या क्या तैयारी करते हैं?
1: तैयारियाँ मतलब हर साल मेरे पिताजी जब थे वो करते थे, पिताजी के जाने के बाद मैंने माँ को कहा था कि मैं ये त्योहार बंद कर दूंगा, तो माँ ने कहा जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो करो, तो मैंने कहा माँ अगर तू चाह

0: ती है अगर मैं ये करूं तो तू जिंदा रहे। अब माँ की उम्र है 85 और पिछले 25 साल से पिताजी के गुजर जाने के बाद 25-26 साल से मैं वो कर रहा हूं, मैं मेरे भाई सब मिलकर। उस 10 दिन में कोई शूटिंग नहीं, कोई डबिंग नहीं, कुछ नहीं, 10 दिन मैं अपने घर में रहता।
1: कोई गाना सुनवाना चाहेंगे?
0: आप सुनाइए, अभी इतनी देर मेरे पसंद के गाने आप सुनवा रहे थे, आपके पसंद का कौन सा गाना है? कौन सा है बताइए।
1: बहुत सारे
0: मैंने, बहुत सारे नहीं, एक अभी एक ही आप बताइए।
1: लता जी का गाया हुआ।
0: कौन सा? लता जी ने ही तो सारे गाने गाए हमारे जिंदगी में, हम सुनते आ रहे हैं।
1: तुम्हारे लिए का मुझे बेहद पसंद है।
0: तुम्हारे?
1: तुम्हारे लिए।
0: हाँ, कौन सा?
1: तुम्हें देखती हूँ तो।
0: अरे वाह,
1: आपको पसंद है?
0: बिल्कुल। लता जी का कौन सा गाना किसको पसंद नहीं है,
1: वो तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं अक्सर अपने प्रोग्राम
0: ये हमारे लिए, हम सभी जो है उनको जिंदगी में एक वरदान मिला है कि आपके आंखों को शायद हमारे यहाँ कुछ बुराइयां नजर आ रही है, लेकिन कान को एक सुकून मिलेगा जिंदगी भरे, ऊपर वाले ने हमको कहा है, इसलिए लता जी को इस दुनिया में भेजा है। क्या है, जो मेरी हिंदी है
1: जी
0: वो उतनी साफ सुथरी नहीं, आप इलाहाबाद की है, आपकी हिंदी काफी, तो वो मुझे लफ्ज ढूंढने पड़ते हैं अगर मैं हिंदी में बात
1: करता। अच्छा लग रहा है।
0: वो मतलब तेरी बाकी तो बोलता हूँ, अगर मेरी भाषा है, जिसने मतलब जिस भाषा में आप सपने देखते हो वो आपकी मातृभाषा है, मराठी में सपने देखता हूँ। नहीं तो काय होतं की मराठी मध्ये बोलत असताना ते शब्द असे सहज येतात, आता तुला कळत नसेल मी काय म्हणतोय, कुठली गाणी नाना, कुठलं गाणं तुला म्हणायचंय, काय म्हणायचंय, तर मग एकला जरा साजरा मुखडा चंद्रा वाणी फुल लाग, राजा मदन हसतोय कसा जीव माझा फुल लाग, एक नजर न साजरा मुखडा चंद्रवाणी फुल लाग, राजा मदन हसत कसान जीव माझा फुल लाग, नको राणी नको लाजू लाज मदी नको भिजू, हित नको तित जाऊ आडूशाला उभराऊ का बघत्यात, एकला तिला न साजरा मुकडा चंद्रवाणी फुलला।
1: क्या बात है,
0: आयला मराठी माणसांना कळायला पाहिजे का नाही, नानाचा मुलाखत म्हटल्यानंतर नाही तर जोड्याना हनतील ना मला। राम राम,
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने
0: अब एक बार हंस के दिखाई। नहीं नहीं, एक बार ऐसे नहीं, अब मुंह उधर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू,
1: बहुत बहुत शुक्रिया नाना साहब, नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम में ममता सिंह के साथ बातचीत की सेल्यूलॉइड की दुनिया के जाने माने स्टार नाना पाटेकर ने। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया विनीता ढोलकिया ने और विविध भारती के लिए इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी।
3: जाने माने अभिनेता नाना पाटेकर को ये थी विनम्र श्रद्धांजलि।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। 6:30 होने को ही आप सुनेंगे हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार, साथ में जिले की चिट्ठी, राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ विद्यार्थियों को जोड़ेगी। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के पहले चरण की लोक सूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू। टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए युवा शक्ति की ज्वाइंट स्क्वाड फॉर हेल्थ जोश टीमों का आगाज। पहले चरण में राजस्थान के 7 जिले शामिल। और राज्य के तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी। 10 अक्टूबर से नए

0: पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में डिजिटल कनेक्टिविटी की अहम भूमिका है। इससे लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक सुविधा मिली है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के कोने कोने में पहुंच चुकी है। इसके 5.5 लाख से ज्यादा बेस स्टेशन हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने दीक्षा प्लेटफॉर्म का जिक्र करते हुए डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
1: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशंस और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस अवसर पर कहा कि पिछले एक दशक में देश की टेलीकॉम और डिजिटल फ्रेटर्निटी ने अभूतपूर्व काम किया है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से दुनिया भर के टेक दिग्गज, नीति निर्माता, उद्योग विशेषज्ञ, स्टार्टअप्स और निवेशक एक मंच पर आए हैं। इस 4 दिन के सम्मेलन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की प्रगति को दिखाया जा रहा है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के प्रथम चरण की लोक सूचना जारी होने के साथ ही नाम नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में अजमेर, अलवर, जोधपुर, कोटा, नागौर और उदयपुर सहित 16 जिलों में जिला परिषद सदस्यों और 104 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव होंगे। अभ्यर्थी 13 अक्टूबर तक नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकते हैं। 14 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नाम वापसी की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर रखी गई है। नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरंत बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही संभावित प्रत्याशियों की सक्रियता बढ़ गई है और गांवों, चौपालों से लेकर राजनीतिक दलों के कार्यालयों तक दावेदारों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पंचायत चुनाव के पहले चरण की आवेदन प्रक्रिया को लेकर संबंधित जिलों में कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। साथ ही नामांकन प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए हेल्प डेस्क लगाई गई है। पहले चरण में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए मतदान 22 अक्टूबर को होगा। 24 अक्टूबर को पंच और सरपंचों के लिए वोट डाले जाएंगे। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भयमुक्त और पारदर्शी चुनाव के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। इस बीच राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव को देखते हुए पंचायत समिति स्तर पर 10 अक्टूबर को प्रत्याशी प्रबोधन कार्यक्रम रखा जाएगा। इसके माध्यम से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को नामांकन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी दी जाएगी। श्री सिंह आज जयपुर में राज्य निर्वाचन आयोग में आयोजित मतदाता जागरूकता के संबंध में वीसी के जरिए बैठक कर रहे थे। उन्होंने पंचायत चुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए। पंचायत चुनाव में मतदान दिवस पर संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। वित्त विभाग के संयुक्त शासन सचिव की ओर से इस बारे में आज अधिसूचना जारी की गई। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 निरस्त कर दिया था। राज्य में 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाए गए। इसके साथ ही देश में एक राष्ट्र, एक संविधान, एक निशान, एक प्रधान और एक विधान का संकल्प साकार हुआ। एक रिपोर्ट। अनुच्छेद 370 और 35A के हटने से जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा और स्वायत्तता समाप्त हो गई और वहां भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू हो गया है। पहले वहां अलग संविधान और अलग झंडा था। सर्वोच्च न्यायालय ने दिसंबर 2023 को अपने फैसले में केंद्र सरकार के इस निर्णय को पूरी तरह

0: वैध करार दिया। साथ ही ये कहते हुए मोहर लगाई कि कोई भी राज्य देश के संविधान से ऊपर नहीं है। अब देश के अन्य राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी नागरिकों को जमीन खरीदने और रोजगार पाने के समान अधिकार मिल गए हैं। इस ऐतिहासिक निर्णय से जहां आतंकवाद और अलगाववाद पर लगाम लगी है, वहीं पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास से समृद्धि का नया दौर शुरू हुआ है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस निर्णय ने राष्ट्रीय एकता के मूल भाव को और मजबूत किया है। न्यूज डेस्क से सालिहा गाजी।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान से युवा शक्ति को जोड़ा जाएगा। जॉइंट स्क्वाड फॉर हेल्थ जोश टीमों के माध्यम से टीबी के खिलाफ जन जागरूकता फैलाई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में जोश टीमों के राष्ट्रीय शुभारंभ के अवसर पर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये टीमें टीबी के लक्षण, बचाव, समय पर जांच और इलाज कराने में संदेश देंगी। साथ ही टीबी से जुड़ी भ्रांतियां दूर करने में अहम भूमिका निभाएंगी। पहले चरण में 11 राज्यों और 55 जिलों में जोश टीमें शुरू की जा रही हैं। इनमें राजस्थान के अलवर, बांसवाड़ा, बारां, जोधपुर, उदयपुर, राजसमंद और जयपुर जिले भी शामिल हैं। इनमें जोश टीम का पायलट शुभारंभ किया गया। इस टीम में माय भारत वॉलंटियर्स और एनसीसी कैडेट्स सहित अन्य युवाओं को शामिल किया गया है। आज विश्व दृष्टि दिवस है। नेत्र स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सभी के लिए सुलभ और किफायती नेत्र देखभाल के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम लव योर आईज रखी गई है। विश्व दृष्टि दिवस के मौके पर जयपुर के एसएमएस अस्पताल की नेत्र रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर धारा महिंद्रा ने बताया कि ग्लूकोमा और डायबिटिक रेटिनोपैथी सहित कई तरह की बीमारियां शुरुआती दौर में बिना किसी लक्षण के ही बढ़ती हैं। ऐसे में नियमित अंतराल पर आंखों की जांच जरूरी है।
2: छोटे बच्चे आजकल काफी ज्यादा मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों की आंखों में कई बार चश्मे का नंबर आ जाता है, जिसके लिए चेकअप कराने के लिए अगर हम उनको सही समय पर डॉक्टरी सलाह लेते हैं तो उनकी आंख की विजन का डेवलपमेंट है वो सही हो पाता है। इसके अलावा ग्लूकोमा और कैटरेक्ट, ये दो ऐसी बीमारियां हैं जिनका अगर हम सही समय पे कैटरेक्ट का तो पूर्णतया समाधान हो जाता है लेंस लगाने के बाद और ऑपरेशन के बाद में। ग्लूकोमा के मरीजों में समय रहते डॉक्टरी सलाह लेते हैं और अपना इलाज शुरू कर देते हैं तो ग्लूकोमा से होने वाली जो भी दृष्टि में कमी होती है उसको हम रोक सकते हैं काफी हद तक।
1: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का दिल का दौरा पड़ने से आज सुबह निधन हो गया। गोवा में अपने आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेता थे। नाना पाटेकर उन चुनिंदा कलाकारों में से थे जो पर्दे पर आते ही किरदार में जान डाल देते थे। 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित नाना पाटेकर ने परिंदा, क्रांतिवीर, अग्निसाक्षी, नट सम्राट, अब तक 56 और यशवंत सहित कई यादगार फिल्मों में अपने अभिनय की अमिट छाप छोड़ी।
3: मैं दिलों में रहता हूँ, उम्मीदों में बसता हूँ, सपनों में जीता हूँ और गम पीता हूँ। जब कोई सपना मुरझाता है, उम्मीद सूखती है, अरमान झुलस जाता है तो मैं आता हूं और बरस जाता हूं।
1: नाना पाटेकर के निधन की खबर से उनके प्रशंसकों और सिने प्रेमियों में शोक छा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नाना पाटेकर ने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता।
4: वे बेहतरीन कलाकार थे जिन्होंने अलग अलग किरदारों के माध्यम से दर्शकों का दिल जीता। नाना पाटेकर जी का जीवन तिरंगे की आन बान और शान के लिए समर्पित रहा। वो बंधनों में नहीं रहे, परिंदे की तरह फिल्मों के आसमान में उड़े। मैं नाना पाटेकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों और चाहने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।
1: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी प्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है और कहा कि उनका सशक्त अभिनय हमेशा याद किया जाता रहेगा। राज्य के तापमान में इन दिनों उतार चढ़ाव का दौर बना हुआ है। पूर्वी और पश्चिमी जिलों में अधिकतर स्थानों पर दिन के समय गर्मी का

असर है। वहीं उदयपुर और सिरोही सहित दक्षिणी जिलों में रात का तापमान में गिरावट आई है। यहां न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से नीचे दर्ज होने से सुबह शाम हल्की ठंड ने दस्तक दे दी है। अगले सप्ताह उत्तर पश्चिम राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बनने की संभावना है। इसके असर से 10 और 11 अक्टूबर को बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू जिलों में गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के भी आसार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इसके बाद तापमान में गिरावट आने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ विद्यार्थियों को जोड़ेगी। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के पहले चरण की लोक सूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू। टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए युवा शक्ति की ज्वाइंट स्क्वाड फॉर हेल्थ जोश टीमों का आगाज। पहले चरण में राजस्थान के 7 जिले शामिल। और राज्य के तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी। 10 अक्टूबर से नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से अजमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख नीलिमा दादीच ने तैयार किया है। अजमेर जिले में पिछले दिनों नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुए, पंचायत चुनाव की घोषणा हुई। प्रशासनिक गतिविधियों और धार्मिक आयोजनों के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसेवा से जुड़े कार्यक्रम हुए। नगर निकाय चुनाव के तहत जिले के 315 शहरी वार्डो में सदस्यों के लिए दो चरणों में हुए मतदान के बाद 14 सितंबर को मतगणना पूरी हुई। अजमेर नगर निगम की 80 वार्डो के परिणाम आने के बाद महापौर पद के लिए चुनाव हुआ। भाजपा की अनामिका शर्मा 43 मत प्राप्त कर महापौर निर्वाचित हुई। कांग्रेस की किरण गढ़वाल को 37 मत मिले। पिछले दिनों पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की घोषणा हुई। जिले की 10 पंचायत समितियों की 261 ग्राम पंचायतों में दो चरणों में चुनाव होंगे। इसके लिए 993 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पहले चरण में 23 अक्टूबर को सरवाड़, केकड़ी, सावर, पिसांगन, श्रीनगर और अजमेर ग्रामीण के संबंधित क्षेत्रों में मतदान होगा। दूसरे चरण में 29 अक्टूबर को अजमेर ग्रामीण के शेष क्षेत्र के साथ ही बड़लिया, सिलोरा, अराई और बिनाई में मतदान होगा। निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाता सूचियों के भौतिक सत्यापन का काम भी किया जा रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 की पुनः परीक्षा 20 सितंबर को हुई। राज्य के 11 जिलों में 666 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। अजमेर में भी परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हुई। वहीं पिछले दिनों आरपीएससी की एक टीम ने गुजरात लोक सेवा आयोग का अध्ययन दौरा किया। टीम ने वहां साक्षात्कार प्रक्रिया और अभ्यर्थियों को अंक देने की व्यवस्था का अध्ययन किया। विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत जिले में 17 सितंबर से विभिन्न गतिविधियां शुरू हुई। 19 से 25 सितंबर तक सेवा सेतु के माध्यम से ग्रामीण सेवा शिविर लगाए गए। इन शिविरों में पेंशन, राजस्व, पानी और बिजली से जुड़ी समस्याओं के समाधान के साथ ही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। पशुपालन विभाग की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं को संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए चिकित्सा और टीकाकरण शिविर भी आयोजित हुए। अजमेर रेल मंडल के सोजत रोड रेलवे स्टेशन से पहली बार चूना पत्थर का व्यावसायिक लदान शुरू हुआ। 58 वैगन में चूना पत्थर बोकारो स्टील प्लांट के लिए भेजा गया। ये मालगाड़ी करीब 1502 किलोमीटर की दूरी तय कर बोकारो पहुंची। इससे रेल मंडल को एक चक्कर में 1 करोड़ रुपए से अधिक का माल भाड़ा मिला। रेल मंडल में 14 से 30 सितंबर तक राजभाषा पखवाड़ा भी मनाया गया। निबंध, प्रश्नोत्तरी, टिप्पण, प्रारूप लेखन, वाक और कविता पाठ सहित कई प्रतियोगिताएं हुई। करीब 165 रेलकर्मियों ने ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लिया। समापन समारोह में 90 रेल अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। रेलवे स्टेशनों और कॉलोनियों में स्वच्छता तथा कचरा प्रबंधन को लेकर जागरूकता गतिविधियां भी हुई। स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े अवसरों पर भी कार्यक्रम आयोजित हुए। विश्व ओजोन दिवस पर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता रखी गई। इसमें 63 विद्यार्थियों ने भाग लिया। वहीं आयुर्वेद दिवस पर जेएलएन

0: अस्पताल परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय में परामर्श शिविर लगाया गया। अजमेर विद्युत वितरण निगम ने विद्यार्थियों को बिजली बचत और बिजली सुरक्षा से जोड़ने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया। विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने अपने स्कूलों में बिजली के उपकरणों का निरीक्षण कर ऊर्जा बचत के उपायों की जानकारी ली। उन्हें बिजली सुरक्षा, वायरिंग और अन्य उपकरणों के उपयोग के बारे में बताया गया। धार्मिक आयोजनों के तहत श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिरों में झांकियां सजाई गई, भजन कीर्तन हुए। वहीं गणेश चतुर्थी पर घरों और सार्वजनिक स्थानों पर गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई। 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी पर गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। बाबा रामदेव जयंती के अवसर पर रामदेवरा जाने वाले पैदल श्रद्धालुओं के लिए रास्ते में सेवा शिविर लगाए गए। इस बीच श्राद्ध पक्ष शुरू होने के साथ ही पुष्कर के घाटों पर श्रद्धालु पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही अजमेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम रे जरिए 25 करोड़ विद्यार्थियों ने जोड़ेला। पंचायती राज संस्थाओं रा चुनाव रा पहला दौर री लोक सूचना जारी वे बनसा गई, पर्चा दाखिल करन रो काम शुरू भयो। टीबी मुक्त भारत अभियान सारू जॉइंट स्क्वाड फॉर हेल्थ जोश टीमा री शुरुआत, पहला दौर माए प्रदेश रा 7 जिला शामिल। हर राज्य रा तापमान में उतार चढ़ाव रो दौर जारी, 10 अक्टूबर रू नुओ पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय वेवन री संभावना। समाचारों सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि सरकारी सेवाओं रो फायदो जनता ताई पुगावन माए डिजिटल जुड़ाव रो खास काम है। वे आज नई दिल्ली माई स्वरूफी इंडिया मोबाइल कांग्रेस रा 10वां संस्करण रा उद्घाटन जलसा माई बोल रहा हा। श्री मोदी कहो कि डिजिटल जुड़ाव जनता ने बनाई लिखाई और स्वास्थ्य रा हल्का माई सुविधा मिलिया है। वे कहो कि आज 5G कनेक्टिविटी देश रा कोना कोना माई पूग की है। प्रधानमंत्री कहो कि सरकार करीब 25 करोड़ विद्यार्थियों ने बनाई लिखाई रा न्यारा न्यारा डिजिटल और ऑनलाइन मंचाओं जोड़बारी कोशिश कर रही है। श्री मोदी दीक्षा प्लेटफॉर्म रो जिक्र करता था का डिजिटल शिक्षा रा बढ़ता महत्व रे बारा माई जानकारी देनी।
2: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशंस और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
1: ई मौके केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कहो कि लारला 10 साल माए देश माए टेलीकॉम और डिजिटल हल्का माए बेहतरीन काम फियो है। वह कहो कि 4 दिन री इंडिया मोबाइल कांग्रेस रा आयोजन दुनिया भर रा तकनीक रा जानकार, नीतियां बनावन वाला कारोबारी जानकार, स्टार्टअप्स और निवेश करण वाला एक मंच माथे आया है। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं रा चुनाव रा पहला दौर री लोक सूचना जारी फेवनसा गई, आज नाम पाना दाखिल करन रो काम शुरू फेक्यो। अजमेर, अलवर, जोधपुर, कोटा, नागौर और उदयपुर समेत 16 जिला में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों रा चुनाव रो काम आज शुरू फेक्यो। उम्मीदवार 13 अक्टूबर ताई संबंधित चुनाव अधिकारी सामी नाम पाना दाखिल कर सके है। दाखिल करी जा नाम पाना री 14 अक्टूबर ने जांच करी जावेला, जदकर 15 अक्टूबर ने नाम पाछा लिया जा सकेला। नाम पाछा लेवन रो भगत पूरो हुए ताई चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जावेला। ई विच नाम पाना दाखिल करन रो काम शुरू हुए बनसा गई। गांव चौपाल उनलेर सियासी पार्टियां रा दफ्तरां ताई दावेदारां री हलचल बधवा लागी है। पंचायत चुनाव रा पहला दौर में पर्चा दाखिल करने रो काम सरूफ हेवन सा गई संबंधित जिला रा कलेक्टर

0: को हम रोक सकते हैं काफी हद तक।
1: बॉलीवुड रा नामी एक्टर नाना पाटेकर देवलोक हुए क्या है। 75 साल रा नाना पाटेकर गोवा मायवारा रहवास मत है आज हमारे आखिरी सांस लेनी। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा में हमारा काम छाप छोड़ी। 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नवाजी जिया नाना पाटेकर, परिंदा, क्रांतिवीर, अग्निसाक्षी, नट सम्राट, अब तक 56 और यशवंत समेत के यादगार फिल्म में हमारा अभिनय रे अमिट छाप छोड़ी।
2: मैं दिलों में रहता हूँ, उम्मीदों में बसता हूँ, सपनों में जीता हूँ और गम पीता हूँ। जब कोई सपना मुरझाता है उम्मीद सूख

0: जब कोई सपना मुरझाता है, उम्मीद सूखती है, अरमान झुलस जाता है, तो मैं आता हूं और बरस जाता हूं।
1: नाना पाटेकर ने श्रद्धा भाव सागर याद करता था का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो के नाना पाटेकर वाला अभिनय जनता रो दिल जीतियो।
2: वो एक बेहतरीन कलाकार थे जिन्होंने अलग अलग किरदारों के माध्यम से दर्शकों का दिल जीता। नाना पाटेकर जी का जीवन तिरंगे की आन बान और शान के लिए समर्पित रहा। वो बंधनों में नहीं रहे, परिंदे की तरह फिल्मों के आसमान में उड़े। मैं नाना पाटेकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों और चाहने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।
1: राज्यपाल हरिभाव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्माई नाना पाटेकर र देवलोक विवन पर शोक जतायो है। रब मौसम प्रदेश रा उत्तराध आतुनी हल्का में 10 और 11 अक्टूबर में मादना ने गाज सागर जोरदार बायरो बाजन और कच्छे कच्छे हल्की मछला दर्जारी बिरखा रा आसार है। आदिना बीकानेर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ चूरू सीकर झुंझुनू और आर एस आर रा हल्का माए एड़ो ही मौसम रेवन री संभावना है। 13 और 14 अक्टूबर में उत्तराध आतुनी राजस्थान और आर एस आर रा जिला माए कच्छे कच्छे हल्की बारिश रा आसार है। दूजी कानी जोधपुर उदयपुर कोटा अजमेर और भरतपुर संभाग रा घनखर हल्का माए मौसम सूखो रेवन री संभावना है।
3: तो अब भी वही दौर चल रहा है जब विंटर आगे आने वाले समय में आने को तैयार है। तो फिलहाल तापमान कंडीशन सामान्य से ऊपर चल रही है, ड्राई वेदर कंडीशंस हैं। आने वाले दिनों में अब चूंकि मानसून चला गया है तो अब पश्चिमी विक्षोभ जैसे जैसे सक्रिय होंगे तो अपने राजस्थान में इवन जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी कुछ मौसम में बदलाव होगा। हालांकि जयपुर और आसपास में आगामी दिनों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन 10 से 14 अक्टूबर के बीच में एक पश्चिम विक्षोभ का आंशिक असर होगा, बादलों की थोड़ी आवाजाही देखने को मिलेगी।
1: आखिर में खास समाचार एक बार फिर सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम के जरिए 25 करोड़ विद्यार्थियों ने जोड़ेला। पंचायती राज संस्था वाला चुनाव रा पहला दौर री लोक सूचना जारी फेबन सा गई, पर्चा दाखिल करन रो काम शुरू हो। टीबी मुक्त भारत अभियान सारू जॉइंट स्क्वाड फॉर हेल्थ जोश टीमारी शुरुआत। पहला दौर माए प्रदेश रा 7 जिला शामिल। और राज्य रा तापमान माए उतार चढ़ाव रो दौर जारी। 10 अक्टूबर नुवो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होवन री संभावना। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो हो। नमस्कार।
4: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम व्यू 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोताओं शाम के 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।

0: बीज से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
1: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
0: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
1: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
2: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। राजू जी, आपको भी मेरा नमस्कार।
3: राम राम सा। किसान वाणी कार्यक्रम सुन वाला सगड़ा श्रोताओं ने राम राम सा।
2: जी, आज गुरु जी एक फोन इन प्रोग्राम होगा जिसमें किसान बहन भाई आपकी खेतीबाड़ी से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान स्टूडियो में जो विशेषज्ञ पधारे हैं उनसे पूछ सकते हैं, जो भी सवाल हो उनके उनसे पूछ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान उनका हल पा सकते हैं। स्टूडियो में आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आज विशेषज्ञ पधार चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय हम आपसे करवा देते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में है हेमराज बसवाल, आप उपनिदेशक कृषि, कृषि आयुक्तालय जयपुर। कार्यक्रम में आपका खूब खूब स्वागत है। नमस्कार जी। और जैसे कि राजू जी, हमारे स्टूडियो की 4 फोन लाइनें हैं जो कि हम श्रोताओं के लिए रखते हैं जिसपे वो फोन कर सकते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान और सवालों का जवाब पा सकते हैं। तो एक बार मैं बता देती हूँ, 2200600, 2200700, 2200800, 2366477। ये 4 फोन लाइनें हैं। बस ध्यान इतना ही रखना है कि आप मोबाइल से फोन करें तो 0141 जो जयपुर का स्टूडियो कोड है वो जरूर से लगा लें। और हमेशा की तरह यही कहना चाहेंगे कि जब भी फोन करें तो थोड़ा सा रेडियो से दूरी बना के बात करें ताकि आप जो भी पूछें, आपका जो भी सवाल हो वो स्पष्ट तौर से सुनाई दे, विशेषज्ञ सुन पाए, समझ पाए और फिर आपकी समस्याओं का समाधान कर पाए, प्रश्नों का दोहराव ना हो और छोटे बच्चों से आप फोन ना कराएं। तो कार्यक्रम में एक बार फिर से हेमराज बसवाल जी का खूब खूब स्वागत है। और जब तक श्रोताओं के फोन आते हैं हम जो सामान्य से हमारे प्रश्न होते हैं वो हमारे विशेषज्ञ से हम पूछ लेते हैं।
3: तो साहब बताओ, अभी जो राजस्थान में रबी की बोई जाने वाली जो मुख्य जो फसल है तिलहनी फसल, वह कौन सी है और दिन की बुआई कब तक करनी चाहिए?
4: किसान भाइयों नमस्कार। अभी रबी सीजन चल रहा है और रबी में जो मुख्य फसल है तिलहनी, वो राजस्थान में सरसों है। सरसों अभी बुआई का समय चालू है, आप 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं। और नमी, जहां नमी संरक्षित है तो अगेती बुआई हो जाती है और जहां नमी कम है तो भाई किसान भाई पलेवा करके प्री सोइंग इरिगेशन करके बुआई कर सकते
2: हैं। जी, बात आगे भी करेंगे, एक श्रोता जुड़े हैं, बात कर लेते हैं। हेलो किसान।
5: हाँ जी, हमारे यहाँ क्या है कि 10-15 पेड़ बोल रखे हैं, बैरोट से बोल रहा हूँ
2: जी। नाम भी बताएं आपका।
5: सुनील
2: जी, किस चीज के पेड़ बोल रखे हैं?
5: 5 कटहल के थे और 5 नींबू और दिए थे।
3: नींबू और किसके?
4: कटहल।
3: कटहल,
4: हाँ। समस्या क्या?
5: हाँ, उसमें क्या है कि लस्सी नहीं होती है, सफेद लस्सी लाल मुंह की है, वो सब पेड़ सूखे जा रहे हैं।
4: देखो, आप बता रहे कि आपके कटहल और नींबू के पौधे लगा रखे हैं, तो उसमें लाल मुंह की लट जो लग रही है वो जड़ों में लग रही है पत्तियों पे?
5: जड़ों में
4: है।
5: जड़ों में
4: तो वो लाल मुंह काले मुंह की वो सफेद लट लग रही, जो पीछे से सफेद होती है गोजा लट कहते हैं उसको, उसको सफेद लट कहते हैं, व्हाइट ग्रब कहते हैं। अधिकतर बरसात की सीजन में लगती है, तो उसके लिए एक तो ये है कि उसमें अब तो वो बुआई का समय जो समय होता है खरीफ में, तो उस टाइम तो ये आती है, पनपती है, लेकिन अब तो एक तरह से आपको रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें कोई भी रासायनिक दवा है जैसे एमेडाक्लोप्रिड और एक क्विनाल्फास दवा आती है, इनका आप मिश्रण दोनों का मिलाकर आप पौधे की जड़ में डाले, घोड़ डाले, कम से कम 1 लीटर पानी में आप डाले 2-3 ml तो एमेडाक्लोप्रिड डाले और 5 ml क्विनाल्फोस डाल के और पौधों की जड़ों में डाले, उसमें थाले में डाले ताकि वो नीचे तक जाए और वो जड़ को, वो जड़ में जो भी लट है वो खत्म हो जाए या वो रिपेलेंट हो जाए, वहां से भग जाए।
5: बताई थी और बताई थी, सब कुछ डाल दिया, वो डाल ही नहीं है।
4: अब तो ऐसा है, देखो इसमें

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए,
2: कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।

0: आप जो जड़ के आसपास की जो मिट्टी है उसको एक बार नीचे तक हटाएं, तो उसमें यदि कोई गोजा लट निकलती है तो उसको खत्म करें, उसके बाद नई मिट्टी उसमें शिफ्ट करें। यदि उसके अंडे है या कोई उसके लार्वा है तो वो भी निकल जाए, यदि वो रहेंगे तो वापिस पनप जाएंगे, तो नई मिट्टी शिफ्ट कर दे तो फिर उसके साथ दवाई डाले तो वो नहीं होगी बाद में। और पेड़ के उसके आपके पौधों के आसपास ज्यादा यदि पेड़ पौधे हैं बड़े तो उनको भी कटाई छटाई करें ताकि वो लट का जो है उसका भ्रंग है वयस्क भ्रंग वहां नहीं बैठे और वो अंडे नहीं दे।
1: हेलो हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी हेलो, किसान किसान वाणी कार्यक्रम में स्वागत है।
2: हाँ जी सर नमस्कार।
1: हाँ नमस्कार जी, क्या जानकारी चाह रहे हो?
2: जानकारी सर हमारे गाजर बोई हुई है, उसकी वो जड़ खाली पड़ रही है नीचे से।
0: अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: जोधपुर से।
0: अच्छा किसान भाई, जैसे आप बता रहे कि गाजर बोई है और उसकी जड़ काली पड़ रही है अभी, तो
2: मतलब जड़ काली पड़ के वो ऊपर से बढ़ गई है।
0: या, तो अभी क्या है कि अभी वही कितने दिन हो गए उसको बोए?
2: लगभग हो गए 10 दिन।
0: 10 दिन, तो अभी क्या है कि जितने भी जड़ जनित रोग वो जमीन में होते हैं, ये फफूंद जनित रोग होते हैं, तो जड़ पे लगते हैं बुआई के आसपास, जो एक नर्सरी में लगते हैं राइजोटिनिया फाइटोपथोरा और पीथियम नामक कवक लगते हैं, तो वो जो भी फसल बोते हैं उसकी जड़ को जमीन के पास से गड़ा देते हैं और नीचे जड़ गड़ा देते हैं। इसमें आप कोई भी अंतर प्रवाही फफूंदनाशी दवा डाले, इसमें एक मेटालाक्साइल दवा आती है, पाउडर आता 35% WP, वो घोल के डाले तो वो जो भी जड़ गल रही है ना वो खत्म हो जाएगी आपकी, वो जड़ गलन रोग वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि नर्सरी में आता, नर्सरी जो भी कोई अपन बोते हैं या ज्यादा बीज बोते हैं नर्सरी टाइप, तो उसमें ये जड़ गलन रोग आ जाता है। ये दवाई डाले और फिर थोड़ी सिंचाई कर दे तो ये जड़ गलन नहीं लगेगा। आप
3: फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो किसान।
4: हेलो नमस्ते।
3: नमस्कार, हेलो किसान, नाम बताइए।
4: मेरा नाम महेंद्र सिंह है, मंडार तहसील है मेरी, कारगिल जिला है
3: जी। क्या पूछना चाहते हैं आज?
4: मैं ये पूछना चाहता हूँ सरसों में डीएपी कितना होना चाहिए?
0: हाँ महेंद्र सिंह जी, सरसों एक तिलनी फसल है, तो इसमें आप ज्यादा डीएपी नहीं लेके रहे, सुपर फास्फेट और यूरिया का प्रयोग करें बुआई में तो बहुत अच्छा रहेगा। अपन किसान भाई ज्यादातर डीएपी की तरफ जाते हैं, सरसों को गंधक की जरूरत होती है उसके दाने और पौधा बढ़ने के लिए, तो आप सुपर फास्फेट यूरिया का प्रयोग करें। और यदि आप डीएपी बोना चाहते हैं तो उसमें आप ये बीघा, जैसे आपके कच्ची बीघा लो या पक्की बीघा में आप कम से कम आप ले लो 20 से 30 किलो डीएपी पर पक्की बीघा आप ले लो, और सुपर फास्फेट यूरिया का करो तो आप उसमें कम से कम आप एक हेक्टर में 150 किलो सिंगल सुपर फास्फेट जिसमें 16% फास्फोरस होता और 50 किलो आप लो यूरिया, दोनों को मिला के और बुआई करो और उसके बाद पटवास लगा के और फिर सरसों की बुआई करो तो सरसों जोरदार होगी, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा में सल्फर मिलेगा और फास्फोरस दोनों मिलेंगे।
1: हेलो हेलो किसान।
5: हेलो नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, क्या जानकारी चाहते हैं आप?
5: मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ जी, गांव रायपुर जोनी में से जी।
1: जी बताए।
5: मेरे जी 4 पेड़ है जी लेस में के
0: जी।
5: हेलो।
0: हाँ हाँ बताइए।
5: तो उसमें से वो 3 साल के होंगे जी, वो उसको फड़ के आने की संभावना, मतलब कीड़े मकोड़े ज्यादा चढ़ रहे हैं उससे।
0: राजेंद्र जी आप बता रहे कि लेस वाले पौधे हैं 3 साल के हो गए, एक तो इसमें जैसे फल नहीं आने का तो कई कारण होते हैं, एक तो उसमें वो वैरायटी कैसी है आपने सही किस्म चुनी है, दूसरा होता है उसमें जो पोषक तत्व जिसमें आप देसी भी ले सकते हैं उर्वरक भी लेते हो तो वो प्रॉपर दे रहे नहीं दे रहे, एक ये भी कारण
5: है जी। खाद खुद सब कुछ
0: ठीक है,
5: खाद पानी सब कुछ दे रहे हैं
0: ठीक है। अब इसके बाद उसमें हार्मोनल इम्बेलेंस, हार्मोन का असंतुलन भी हो जाता तो फल समय पर नहीं आ पाते।
5: हार्मोन? हाँ जी हार्मोन, मतलब
0: हार्मोन इंडोल ब्यूटारिक एसिड, जैसे अपने हार्मोन होते हैं ना अपने शरीर में, जैसे डायबिटीज का इंसुलिन होगा इस तरह, उनमें भी हार्मोन की कमी आ जाती है, तो तो इंडोल एसिटिक एसिड होती है या नेफ्थलिंग एसिटिक एसिड होता है, हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन।

0: मोना था, इनका आप 5 से 10 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करें तो उसमें संतुलन हो जाएगा, फल समय पे आने लग जाएंगे। और कीड़े मकोड़े की जहां तक बात कर रहे हो तो उसमें कोई भी कीड़े मकोड़े से, या तो बड़े पौधे हो गए तो इसमें प्यूनालफास दवा आती है एक पानी के रूप में तरल, उसको आप 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला के छिड़काव कर दे और वो कीड़े मकोड़े सब खत्म हो जाएंगे, कोई लट भी होगी खत्म हो जाएगी।
1: ठीक है जी, धन्यवाद।
2: धन्यवाद जी। तो सर आप बात कर रहे थे कि अपने जो सरसों की बुआई के बारे में, उसके आगे पूछना चाहेंगे कि इसमें जो बीज दर है वो कितनी रखनी चाहिए।
0: देखो
3: एक बार फोन आया, फोन बात कर लेते हैं। हेलो किसान।
4: हाँ नमस्कार जी।
3: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: सर मैं ब्याज में से बोल रहा हूँ, मंगल क्षेत्र खान
3: जी। क्या पूछना चाह रहे हैं आज?
4: सर से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई फर्स्ट बुआई के अंदर यूरिया कितना डालने मेरे जमीन के अंदर, क्या दीमक का प्रकोप कुछ ज्यादा है?
0: किस चीज का ज्यादा है?
3: दीमक।
0: दीमक, दीमक। आप फर्स्ट बुआई में यूरिया की जरूरत नहीं है, मतलब बुआई के समय तो आप बेसल जो उर के बोना पड़ता है, बुआई से पहले कोई सा भी आप फास्फेटिक फर्टिलाइजर और मिक्सअप जो नाइट्रोजन और फास्फोरस फर्टिलाइजर या एनपीके तीनों का वो आप बुआई कर सकते हैं। उसके बाद आप करो दीमक की समस्या, दीमक के लिए आप बुआई के समय बीज उपचारित करके बोए, उसमें फिप्रोनिल 5% सोल्यूबल कंसंट्रेट आता उसमें मिला के, हर फसल का अलग अलग होता, सरसों में कम होता, चने में 5 ml प्रति किलो के हिसाब से डालते हैं, गेहूं में भी लगभग इतना ही 5 ml प्रति किलो के हिसाब से बीज में मिला के वो बुआई करते हैं। और सिंचाई के बाद, सिंचाई के साथ आप भी दे सकते हैं फिप्रोनिल 5% इस दवा को।
4: ठीक सर, धन्यवाद।
3: फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो किसान।
5: हेलो
3: जी, किसान वाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो।
5: हेलो
3: जी, किसान वाणी कार्यक्रम में खूब खूब स्वागत है, बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं आज?
5: एम आर चौधरी जयपुर सिंह बोल रहा हूँ जी। मैं
3: जी चौधरी
5: जी पूछने रहा सर, मैंने यहाँ प्लाट में 400 गज प्लाट है, उसमें सब्जियां बोई
0: जी,
5: पूरे में दिमक लग गई। अच्छा। और बीज भी मैंने जो आपका जहाँ जो ये दुकानें आपकी है वहाँ से लिया है।
0: देखो
5: और
0: बताइए,
5: और दो घिया के पेड़ है, मेरे हिसाब से 100 घर सब्जी खा सकते, इतना फैला हुआ उसमें एक भी नहीं लगी पिछले 4 महीने।
0: बिल्कुल आप कर रहे हो, बीज अच्छी कंपनियों के लिए अच्छी दुकानों से लिए, लेकिन बीज कारण नहीं हो सकता, वो दीमक तो एक कीट है, चाहे अच्छा लो चाहे देसी लो कैसा भी लो, लेकिन उसका उपचार करना बहुत जरूरी होता। यदि दीमक ज्यादा है ना तो उसमें गर्मी में, एक तो सबसे पहले हर साल गर्मी में एक अच्छी तरह जुताई करके, 400 गज के जो प्लाट बता रहे हो उसमें बढ़िया गर्मी में जो चटक गर्मी होती है वहां जुताई करके छोड़ो 15-20 दिन।
5: अच्छा,
0: महीना।
5: अच्छा जी।
0: तो इसके जो भी नीचे टर्माइट ईडीएम नीचे वो घर वर बन रहे वो सब खत्म हो जाए, इनके अंडे जो भी है वो खत्म हो जाए। उसके बाद आप बता रहे हो कि वो घिया का पौधा लग नहीं रहा, तो घिया में क्या है कि कई बार हार्मोन का बैलेंस हो जाता है, वो बढ़वार तो खूब होती है, बेलड़ी खूब बढ़ जाती है।
5: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो उसमें आप कोई भी हार्मोन का, एक तो क्या है कि उसमें नत्रजन उर्वरक जैसे यूरिया वगैरह मत दो, इतना बढ़वार कम हुआ, अपन को फल ज्यादा लेने, ज्यादा बढ़वार नहीं लेनी। तो उसमें कोई भी हार्मोन जो भी ऑक्सीजन हार्मोन है आता बाजार में मिलता, उसका 5 ml 15 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करे, उसमें नेप्थेलिनिक एसिड आता, इंडोल ब्यूटारिक एसिड आता, वो ऑक्सीजन हार्मोन के नाम से मिलता, एक इसमें फिप्रो एक अलग हार्मोन है जिब्रेलिक एसिड जो फलों को बढ़ाने में काम करता, उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं इनके अलावा, तो उसमें आपके फल आ जाएंगे बेलड़ी।
3: फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, हेमराज बसवाल उप निदेशक कृषि आयुक्तालय जयपुर आज हमारे साथ हैं, आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, आगे भी कार्यक्रम में हमारे साथ रहेंगे पर इस छोटे से अंतराल के बाद।
6: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है
7: इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
6: पुतला बोल रहा
7: है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
6: मतलब
7: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी

0: बच कैसे सेहतमंद होगी?
1: अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता चलती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहा,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। सुनो, इस त्योहार को हमारी नई कार आ जाएगी ना?
4: कार भी आएगी और हम अपने घर को रेनोवेट भी करवाएंगे।
3: वो कैसे?
4: SBI अनलिमिटेड सेलिब्रेशन है ना, कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स और प्रोसेसिंग फी वेवर।
3: कॉल 1-800-1234 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
5: हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम किसान वाणी में दोबारा स्वागत, और आपने साथ आज विशेषज्ञ जुड़े रहे हैं हेमराज बसवाल, उपनिदेशक कृषि, कृषि आयुक्ता ले जयपुर। हेलो,
6: राम राम जी।
5: राम राम जी। हेलो किसान, किसान वाणी कार्यक्रम में स्वागत है, क्या जानकारी चाहते हैं?
6: मैं साधु से बोलूं जी, राम कुमार रिवार।
7: हाँ बोलिए राम कुमार जी, क्या समस्या?
6: समस्या की मैं इस आंवले की खेती के बारे में जानना चाहता हूँ।
7: देखो आंवला एक अपने फलदार फसल है और इसको दो सीजन में आप बो सकते हैं, एक तो जुलाई अगस्त में और एक फरवरी मार्च में। यदि आपकी सिंचाई की व्यवस्था है तो फरवरी मार्च में कर सकते हैं। इसके लिए पहले लेआउट तैयार करें और खेत को समतल करके लेआउट बनाएं और गर्मी में उसके लेआउट करके गड्ढे खोदें, उसके बाद उसका मिट्टी कम से कम 15-20 दिन बाहर रहे, उसमें फिर गड्ढों को बिल्कुल एक नियत विधि है उसके अनुसार गड्ढों को खाद और कीटनाशक और मिट्टी मिला के और ये फफूनाशी दवा मिला के उस गड्ढों को भरे, उसमें बरसात के सीजन में जो आप जुलाई अगस्त में आप पौधे लगाएं। यदि सिंचाई की व्यवस्था हो तो फरवरी मार्च में लगा सकते।
6: पौधे की दूरी कितनी रखनी है?
7: दूरी अलग अलग है, जैसे आप उसमें खेती करना चाहते हैं तो उसमें दूरी ज्यादा रखनी, 6x6 मीटर में रखते हैं। और
6: एक बीघे में कितने पौधे लग सकते हैं सर?
7: अब इसमें आप बीघा, अब हेक्टर का आप कर दो, जिसमें कैलकुलेट कर लेना अलग अलग। यदि आप 5x5 मीटर लगाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप उसमें भाग दे लिए, 10,000 में एक हेक्टर का पौधा आ जाएगा। आप उसकी डिस्टेंस पौधे से पौधे की दूरी कम रखेंगे, केवल बगीचा ही रखेंगे तो आप 4 मीटर भी रख सकते हैं अलग अलग, क्योंकि अलग अलग वेराइटी आ गई आजकल, हाथी झूल, फ्रांसिस आ गई और चकिया है, तो हर एक फसल, हर एक पौधे की हर एक किस्म का अलग गर्त होता, उसकी पेरीफेरी ज्यादा होती।
6: इसकी पूरी जानकारी सर कहाँ से मिलेगी मुझे?
7: आप हमारे आपके गंगानगर में उपनिदेशक उद्यान कार्यालय है, वहाँ हमारे उपनिदेशक महोदय बैठते हैं, वहाँ आप जाइए, वहाँ बिल्कुल आपको पूरी इसके बारे में जानकारी मिलेगी, बसरते वहाँ कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी और कृषि पर्यवेक्षक भी आपके क्षेत्र में रहते हैं वो भी, लेकिन आप कार्यालय जाए वहाँ से पूरी जानकारी आपको इस आंवले के बारे में मिल जाएगी।
6: धन्यवाद जी।
8: धन्यवाद फोन करने के लिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बसवाल साहब, हम सरसों की फसल की बात ही कर रहे थे
7: जी,
8: बताएं।
5: एक तो उसके अपने बीज दर के बारे में आप बताइए और बीज को उपचारित करने के बारे में बताइए।
7: देखो सरसों एक तिलहनी, एक मुख्य रबी की तिलहनी फसल है, इसमें लगभग किसान भाई 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक बोते हैं और कुछ जहां सिंचाई से बोते तो आखिरी अक्टूबर तक भी वो बुआई कर सकते हैं। इसमें 4 से 5 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से बीज की जरूरत पड़ती है, तो ये वैसे इसमें बीज में सल्फर होता है तो ज्यादा कीड़े तो नहीं लगते हैं, लेकिन इसमें फफूंद जरूर लगती है, इसमें सफेद रोड़ी बाद में लग जाती है और फिर नीचे अगली स्टेज में इसमें जड़ से जनित रोग लग जाता, इसलिए इस बीज को अपन मैंकोजेब दवा आती है 75% WP, इससे 5 से 6 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करके बोए तो उसमें फिर वो फफूंद जनित रोग अपने जमीन में नहीं लगते पौधे।
8: हेलो किसान। हेलो हेलो
9: हेलो खेती बाड़ी नमस्कार
8: जी। हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में खूब खूब स्वागत है, नाम बताएं आप अपना, कहाँ से बोल रहे हैं ये?

0: भी बताएं।
1: प्रेमदास बोल रहा हूँ लाडलू से, तहसील लाडलू, जिला लीलवाला कुतामन से।
0: जी क्या पूछना चाहते हैं आज?
1: मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो मिर्ची है, मिर्ची के जो मिर्ची छोटी छोटी लग रहे हैं और उनके जो पत्ते हैं वो सिकुड़ रहे हैं।
2: प्रेमदास जी, जो मिर्ची अभी पौध लगे कितने दिन की हो गई?
1: पौध नहीं, वो बड़ी है।
2: अच्छा, बड़ी है। उसमें इसमें माथाबंदी रोग करते हैं, इसको प्रण कुंचन करते हैं, इसमें टीएमवी एक नंबर का वायरस लग जाता तो पत्तियों को सिकुड़ा देता, पत्तियों को मोड़ देता, माथाबंदी रोग कहते हैं। अब इसमें यही है, यदि पुरानी मिर्ची है तो ज्यादा गुथरा, यदि माथा बंद ज्यादा है तो उनकी कटिंग करें, ज्यादा हो रहा तो, और यदि कम मुड़ान हो रहा तो उसमें एमेडा क्लोप्रिड दवा आती 17.5 SL, वो आप 10 ml 15 लीटर पानी में मिला के या 1 ml 1 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करें, या थाया मेथोक्साम 25% वाटर सोल्यूबल ग्रेनुल आते हैं, वो आप 5 से 10 ग्राम के लगभग एक दानेदार दवा आती है, वो आप 10 ग्राम उसमें डाले 15 लीटर पानी में, वो घोल के और उसमें थोड़ा सा चिपकनी वाली दवा डाल के उसमें छिड़काव करें, और 15 दिन में आप छिड़काव करें तो माथाबंदी आपकी काफी हद तक सुधार आ जाएगा, और ज्यादा गुथरा तो उनको काट के हटाए क्योंकि वो फिर वो सुधर नहीं सकता।
0: फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: हेलो,
4: नमस्कार साहब।
3: हेलो किसान, नमस्कार, किसान वाणी कार्यक्रम में स्वागत है। क्या नाम है सर आपका?
4: मेरा नाम ताज मोहम्मद, मैं जोधपुर जिला इस्लाम नगर में बोल रहा हूँ साहब।
3: क्या जानकारी चाहते हैं?
4: जानकारी आई है कि हमारे तो सब पहले आप जो जवाब दे और जो मारे फड़ू तर में आपने बहुत बहुत धन्यवाद दे, फोन इन कार्यक्रम शुरू कियो जो आपने धन्यवाद देने वास्ते साहब कियो। मैं
2: कोई समस्या हो ताज मोहम्मद जी?
4: समस्या तो हाल बना तो साहब कई हो नहीं, चार वक्त है,
2: रब का रब का ये बना रहे रहमो करम।
0: हेलो किसान।
5: हाँ नमस्कार साहब।
0: नमस्कार, हेलो किसान, किसान वाणी कार्यक्रम में खूब खूब स्वागत है। बताएं कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
5: मैं तो सर कर रहा हूँ चांद समा जिला फरोदी से।
0: जी क्या पूछना चाहते हैं आज?
5: सर ये पूछना चाहते हैं, ये जीरे के समय 10 महीने में बीजे या 11 महीने में?
2: देखो अभी अब 10वें महीने के आखिरी से लेके और 15 नवम्बर तक आप जीरे की बुआई कर सकते हैं, ये मौसम के ऊपर है, तापक्रम यदि सही रहता है और नीचे चला जाता तो आप बुआई कर सकते हैं, लेकिन आप 15 नवंबर तक बुआई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
5: अरे हमारे यहाँ फलोदी पर तापमान बहुत ज्यादा
2: फलोदी में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है और ठंड भी बहुत कम हो जाती है,
5: ठंड भी ज्यादा और गर्मी
2: ज्यादा, तो अभी तापक्रम को देख के ही बुआई करना, आपके वहाँ बहुत ज्यादा तापक्रम है अभी भी।
5: अच्छा अच्छा, है ना, ये आपने प्रोग्राम शुरू किया बहुत अच्छा लगा, मैं कहूँ दोबारा शुरू कर दिया आपने।
2: बिल्कुल
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये होना
5: किसानों के लिए, होना किसानों के लिए होना चाहिए ये, मतलब
2: बिल्कुल होना चाहिए सर, होना चाहिए।
3: रबी फसल में अभी अपने जो दलहनी फसलें बुआई करें तो उसमें अपने जिप्सम की जो मात्रा है वो कितनी डालनी चाहिए?
2: किसान भाइयों, जैसे तिलहनी और दलहनी फसलों में जिप्सम बहुत अच्छा काम करता है, ये इसमें एक तो गंधक होता है, एक कैल्शियम होता है, तो ये तिलहनी फसलों में तो तेल की मात्रा बढ़ाता है और दलहनी फसलों में ये दाने को मोटा और सुडोल चमकदार बनाता है इसमें, तो इसलिए 250 किलो के आसपास आप प्रति हेक्टर जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं, और इसको बुआई से पहले ही खेत में डालें और बढ़िया उसमें हल से जोत के और मिट्टी को समतल बना दें।
3: हेलो किसान। हेलो
0: हेलो
6: हेलो,
3: किसान वाणी कार्यक्रम में स्वागत है, क्या जानकारी चाहते हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
6: जी हम फरोदी जिले से बात कर रहे हैं, मोहम्मद यासीन बात कर रहा हूँ।
3: जी मोहम्मद जी, क्या जानकारी चाहते हैं?
6: एक मेरे अभी अभी मैंने टैली का पौधा लगाया था।
3: अच्छा, केजरी का तो, या शीशम, क्या बोल रहे हैं?
6: टैली, टैली जो साया के बात होती है ना।
3: हाँ,
6: तो उसमें क्या कि पत्ते पीले पड़ते हैं और मर रहे हैं,
2: तो
6: पानी भी
2: आप कह रहे हो कि पत्ते पीले पड़ रहे हैं उसके?
6: हाँ, तो इसमें कई जड़ रहे हैं,
2: कई कारण होते हैं, एक तो इसमें होता है कि पानी की मात्रा समय पे नहीं होती है, पानी तो बराबर

0: नंबर दे रहे हैं आप?
1: ना ना, पानी तो बराबर दे रहे हैं।
0: दूसरा आता है इसमें पोषक तत्वों की कमी, मतलब उसमें खाद वाद दिया है कि नहीं, पुराना गोबर का खाद और उर्वरक दिए?
1: अच्छा, पुराना खाद देना पड़ेगा?
0: वो वो पुराना सड़ा खाद,
1: जो बकरी की खाद दे या ये
0: कोई सा भी दो, पुरानी होनी चाहिए। बकरी की खाद दो तो कूट के दो।
1: अच्छा।
0: और उसमें थोड़ा सा डीएपी और या एनपीके डालो। कितने दिन का पौधा?
1: पौधा तो अभी बारिश के मौसम में लिया था।
0: तो छोटा ही पौधा अभी तो। हाँ, उसमें आप ये भी थोड़ा सा देशी खाद भी दे उसके साथ, कोई 100 ग्राम आप डीएपी या एनपीके डाले, उसको अच्छी तरह थावड़े में डाल के मिलाए और पानी दे दे समय समय पर उसको।
1: और एक यहाँ पर जो दीमक बहुत ज्यादा है, क्या है ये दीमक?
0: दीमक तो क्या है कि एक सर्वभक्षी कीट है जो सब जगह हो जाता, नमी कम होते ही ऊपर आ जाता, तो इसमें दीमक के लिए तो अभी तो उसको दीमक को मारना तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसको भगा सकते हैं अपन दवाई से। तो एक फिप्रोनिल दवा थी, उसको आप पानी के साथ घोल के दे सकते हैं। फिप्रोनिल 5% की आती है, मिलाई आता, तो उसको आप 2 से 3 ml एक लीटर पानी में मिलाकर आप वो सिंचाई कर सकते हैं, उससे दीमक भग जाएगी आपकी।
2: किसानवाणी कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: राजू जी,
2: जी
3: हेलो किसान कार्यक्रम में आज विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, हेमराज बसवाल, उपनिदेशक कृषि आयुक्तालय जयपुर। आज आप स्टूडियो में आए, बहुत बेहतर तरीके से समस्याओं का समाधान किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आज हेलो किसान कार्यक्रम का समय पूरा हो रहा है, तो दे रहे इजाजत दें आशा को
2: और राजू को,
3: चलें और करें।
2: नमस्कार।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना,
6: मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता।
4: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित,
7: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
4: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
7: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
4: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
7: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
4: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। इसका प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर अजमेर चैनल से किया गया। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
1: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: सुनो, इस त्योहार तो हमारी नई कार आ जाएगी ना?
3: कार भी आएगी और हम अपने घर को रेनोवेट भी करवाएंगे।
2: वो कैसे?
3: SBI अनलिमिटेड सेलिब्रेशन है ना? कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स और प्रोसेसिंग फी वेवर।
2: कॉल 1-800-1234 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
4: खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुन वाला सगला श्रोताओं ने राजू को गुणो गुणो राम राम और आशा बहन थन भी राम राम सा।
5: राम राम राजू भाई, आपने भी खूब खूब राम राम और खेतीबाड़ी सुन वाला सगला श्रोताओं ने अपना काश्तकार भाई ने आशा था भाई का भी घना घना राम राम सा।
4: देखो टाइम चल रही है, बार आपने खरीद की फसल को पूरा हो गो और रबी की जो फसल है बिकी बुआई की खेत की तैयारी और बुआई को टाइम चल रहे है। तो देखो अबार सबसे जो मुख्य बात है ध्यान रख वाली यह है कि आपने जो फसल बोआ
5: जी
4: तो आपने जो खेत की मिट्टी पानी और आपने जो रोग कीटन ध्यान में रखकर फसल और फसल की किस्म को चुनाव कर आप बुआई करा
5: जी।
4: ताकि आप ज्यादा मुनाफो ले रहा अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सका।
5: बिल्कुल, और काश्तकार भाई देखो तैयारी पहली करवो जी सो ज्यादा जरूरी है कि पानी आबा से पहली पाल बांधा जदि आप सुरक्षित रहना चाह जब समय आगो न आपके पास आपने किस्मा को पतो ना आपका उन्नत किस्म का बीज ना आपने यह पतो कि मिट्टी की जांच में कहीं सिफारिश आई चु कोई हिसाब से कहीं आपूर्ति करनी चाहिए कहीं पानी को पीएच मान चो आपके फसल ने कहीं चाहे जो चो तो फिर व्यवस्था सारी बिगड़ जावे चो तो परिणाम चोखा हो गई कौन है इतनी तैयारी सबसे पहली जरूरी।
4: बिल्कुल सर, तो देखो आपने जो खरीद की फसल खत्म हुई के बाद में आपने जो मिट्टी सुरक्षित रखा या नहीं रखा तो अभी आपने जो नमी है तो बिया आप सरसों या और जो फसल अभी बुआई कर सका
5: जी।
4: नहीं तो आपने देखो पले और लगा खेत में उचित नमी दे और खेत की अच्छी तरह जुताई कर फसल अवशेष करीब फसल का अगर है तो बंद जुताई मिट्टी पलटवा हलसू और देसी टिलर से आप जुताई कर और बिना अच्छी तरह मिला दें और खाद अपना देकर देसी खाद की अगर आप खेत में डाल बचावा तो बिन बुआई के 30 दिन के पहले या 20 दिन के पहले आप डाल और अच्छी तरह मिला खेत के माइन और बाद में फसल की बुआई करनी चाहिए और फसल का जगह आपने जो कोई भी फसल की किस्म ले आप अच्छा उत्पादन के लिए तो आप बिन बीज ने उपचारित करवा के बाद में ही आप बीज ने बोवा।
5: बिल्कुल, और राजू भाई जैसे कि आप बताए रहे चो भाई जो फसल अवशेष हो रहे चाहे उनको निस्तारण करना उनको निपटान कर वो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर फसल अवशेष खेत में रह वाला और अब आप आगामी फसल की तैयारी कर रहे चाहे बुआई भी कर दे वाला तो वे फसल अवशेष आगे जो फसल ने पोषण चाहिए उन्हें खुद ले ले वाला और फसल की बढ़वार कौन हो वाली इतना ये एक महत्वपूर्ण चीज है इन्हें आपने नजरअंदाज कौन करनी चाहिए और फसल अवशेषा को निस्तारण यानी खरपतवार को जो नियंत्रण चाहे वो बहुत ही बेहतर तरीका से करनी चाहिए जी अगर चोखी पैदावार लेनी चाहिए तो।
4: बिल्कुल, और आप जो बीज लेवा तो आप जो कृषि कार्यालय है बिहू संपर्क कर आप उचित किस्म को अगर अपन सरकारी सब्सिडी पे या और कोई पे मिल रहे है या कोई अनुदान पे मिल रहे है तो वो बीज आप काम में ले सका और बाकी सलाह सो अपना क्षेत्र में हो वाला जो बढ़िया उत्पादन वाली किस्म है बाकी जानकारी आप ले बाकी बुआई कर सका।
5: और राजू भाई देखो बात खूब सारी अपनी होगी चे विषय विशेषज्ञ भी स्टूडियो में पधार चुके थे वहां से जानकारी लेवे ना पर पहली वहां का स्वागत का स्वरूप एक गीत सुना देवा उनके बाद वहां से बात भी करेला अब सगलाई मिलट सुनायो गीत।
4: बिल्कुल सर।

0: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
1: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।

0: राजू भाई,
1: हाँ जी,
0: गीत तो आपा सुन ही लिया।
1: बिल्कुल सर।
0: और अपना जो विशेषज्ञ है वहां को स्वागत भी आपा कर लिया।
1: बिल्कुल।
0: तो अब यहाँ के साथ कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा।
1: बिल्कुल।
2: किसान साथियों, देखो जानकारी देवा के वास्ते अपने बीच मौजूद हैं डॉक्टर सुनीता गुप्ता। आप प्रोफेसर हैं पादप कारिकी विभाग राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर से आप पधारी हैं और आपसे आज जानकारी लेवेगा जैव प्रौद्योगिकी के बारे में। तो डॉक्टर सुनीता जी, स्वागत है आपको। राम राम।
3: राम राम किसान भाइयों। राम राम।
2: सबों पहले तो जो को मौका किसान भाई बहनी आने यह बताओ कि देखो जैव प्रौद्योगिकी ये विषय पर बात कर रहे हैं तो वो कई है सब।
3: किसान भाइयों, जैव प्रौद्योगिकी एक बेसिक या विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जो जीवों और जो जीव जंतु होते हैं उनकी कोशिकाओं में जो छोटे छोटे कण होते हैं जैसे कि जीन होते हैं उनको साइंटिस्ट होते हैं उसको यूज कर करके किस तरह से उनसे विभिन्न उत्पाद तैयार कर लेते हैं और किस तरह से ये सोसाइटी को बेनिफिट करते हैं या समाज कल्याण के लिए हितकारी होते हैं। तो ये जैव प्रौद्योगिकी की एक बेसिक साइंस की ब्रांच है जिसमें सभी शाखाओं जैसे बॉटनी है, जूलॉजी है, केमिस्ट्री है और मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग है, इनका सभी का सम्मिलन होता है।
2: जी साहब, ये तो हो परिचय। और आप खेती किसानी के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब यह बताओ कि जो जैव प्रौद्योगिकी है इको कृषि में क्या इतिहास रही है?
3: जैव प्रौद्योगिकी की जो का इतिहास जो है प्राचीन काल से चला आ रहा है। प्राचीन समय में जो लोग थे इसका जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते थे।

0: के रूप में ब्रेड और शराब बनाने के रूप में करते थे। लेकिन जो इसकी विधिवत शुरुआत हुई है वो 20वीं सदी के अंत में हुई थी, जब डीएनए की संरचना को हमने जान लिया था और जीन ट्रांसफर की जो तकनीक है उनको हमने विकसित कर लिया था। सबसे पहले 1983 में जो है ट्रांसजेनिक पौधे होते हैं उनका परीक्षण किया गया और सन 2014 में पहला ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट आया था जिसके को हम जानते हैं टमाटर का फ्लेवर सेवर टमाटर। और इसकी जो क्वालिटी क्या होती है कि ये एक जेनेटिकली या जेनेटिक मॉडिफाइड प्रोडक्ट है और इसमें जो शेल्फ लाइफ है मतलब इसको हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट सबसे पहले अमेरिका की मॉन्सेंटो कंपनी ने दिया था, उसके बाद भारत में 2002 में बीटी कपास आया था, तब से ही जो है प्रचलन चालू है जैव प्रौद्योगिकी का और अभी तक इसकी शुरुआत प्राचीन समय से चली आ रही है वो अभी तक कायम है।
1: डॉक्टर साहब, ये जो कि जीएम फसल है या कहीं हुआ है और इसका लाभ के ही
0: किसान भाई, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि जीएम फसलें ऐसी फसलें होती हैं जिनमें कि किसी अन्य स्रोत से, चाहे हम उसको बैक्टीरिया से लें या किसी अन्य प्लांट से लें, किसी अन्य जीव से लें, उनके जीनों को हम जो कि किसी वांछित करेक्टर्स के लिए, वांछित गुणों के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनको स्थानांतरित कर दिया जाता है। जीएम फसल का जो एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है वो है बीटी कपास, और जिसमें एक जीवाणु होता है बेसिलस थुरिंजेसिस, उसमें जो स्थित जो जीन होता है उसके द्वारा बीटी कपास को कीटरोधी बनाया जाता है और ये आजकल सबसे इम्पोर्टेंट जो है जीएम क्रॉप है। इसके अलावा कुछ सूखा रोधी किस्में होती हैं, कुछ लवण सहनशील किस्में भी इस तरह से जीएम क्रॉप्स के रूप में विकसित की जा चुकी हैं।
1: डॉक्टर साहब, जो जैव प्रौद्योगिकी है इसके द्वारा कौन कौन सी फसलें विकसित करी गई?
0: देखो, जैव प्रौद्योगिकी के लिए कुछ किस्में विकसित कर ली गई हैं, सबसे ज्वलंत उदाहरण है इसका है बीटी कपास। जैसे अभी मैंने इसमें भी बताया था कि जो बीटी कपास होती है ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, जिसमें क्या होता है कि कपास में एक पिंक बॉल वर्म जो होता है वो कीड़ा अटैक करता है और जिससे इस फसल को नुकसान होता है। तो इस जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से इस फसल में जो क्राइजीन होता है, जो बैक्टीरिया होता है जीन उत्पन्न करता है जिसको कि हम क्राइजीन कहते हैं, उसके द्वारा इस फसल को, जब ये लार्वा या जो पिंक बॉल वर्म इस फसल को खाता है तो उसके ये जो प्रोटीन है वो उसके ग्लट में जाकर के और उसको नुकसान पहुंचाता है और जिससे जो इस फसल को है कीटरोधी बनाया जा सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा उदाहरण है जीएम फसल का वो है गोल्डन राइस। ये जो गोल्डन राइस है ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप थी है और इसमें जो चावल है इसमें सबसे अच्छा है कि ये न्यूट्रिटिव है, इसमें विटामिन ए की बहुत ज्यादा मात्रा होती है जिससे जो कुपोषण की समस्या उससे निजात मिल सके और इसका जो चावल का जो रंग होता है वो सुनहरा होता है, इसी वजह से इसका नाम गोल्डन राइस रखा गया है। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट क्रॉप है वो है जीएम मक्का और ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है और इसमें भी ये जो क्रॉप है ये सूखे के प्रति सहिष्णु है, तो जहां पर क्लाइमेट चेंज होता है या जहां पर वर्षा की कमी होती है वहां पर इस फसल को उगा करके अच्छी इनकम किसानों के लिए लाभकारी हो सकती है।
1: डॉक्टर साहब, जो कि खाद्य सुरक्षा की बात आवे है तो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा के खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित करी जाए इसके?
0: बिल्कुल, जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है। आज हम जानते हैं कि जो हमारी जो आबादी है वो बढ़ती जा रही है और जो फूड की कमी होती जा रही है, तो ये जीएम फसलें उस सुरक्षा की दृष्टि से काफी कारगर सिद्ध हो रही है। जैसे कि बीटी कपास, अब बीटी कपास के रूप में यदि हम देखें तो ये जो होती है कीटरोधी किस्में, इसके साथ साथ इसके उपयोग से क्या होता है कि जो पेस्टिसाइड्स में या इंसेक्टिसाइड में जो किसान जो एक बहुत बड़ा अमाउंट जो खर्च कर देते हैं उससे उसको निजात मिल सकती है। और दूसरा, जो कीटनाशकों के उपयोग से जो पर्यावरण में जो असंतुलन आता है, जो पर्यावरण में गिरावट आती है या पर्यावरण के जो संतुलन है वो नहीं रह पाता, तो इसके उपयोग से इससे भी हमें बचा जा सकता है। दूसरा क्या है कि जो उदाहरण के लिए यदि हम बताएं कि किस तरह से जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, तो जो इकरी सेट है जो कि हैदराबाद में है, उसने चने की सूखे के प्रति सहनशील, मूंगफली की भी एक किस्म दी है जो कि पर्ण रोग के प्रति प्रतिरोधी है, बाजरा की ऐसी किस्में तैयार कर ली है कि जिनमें आयरन और जिंक की मात्रा बहुत अधिक होती है जिससे कि जो है खाद्य सुरक्षा के साथ साथ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी हमें मिल सकती है।
1: तो डॉक्टर साहब, जगह किसान भाइयों के लिए आप बात कर रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी के बारे में, तो किसानों के लिए कई लाभ आएगा?
0: देखो किसान भाइयों, जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों को अधिक उपज, बेहतर गुणवत्ता और कीट व रोग प्रतिरोधक फसलें मिलती हैं जो कि अभी हम मैं बता ही चुकी हूँ। इससे जो होती है उनकी जो फसलों को उगाने की जो उत्पादन लागत होती है वो भी कम हो जाती है।

0: और जब उत्पादन लागत कम हो जाती है तो किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा जो इन फसलों के प्रयोग से जो हम हानिकारक कीटों के प्रयोग से बच जाते हैं, तो इससे हम पर्यावरण की अनुकूल प्रौद्योगिकी भी विकसित कर लेते हैं या हम अपने पर्यावरण को भी अनुकूल बना देते हैं। तो जैसे अभी अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए हमने बीटी कपास की बात करी, और इसके अलावा जो अभी हमने गोल्डन राइस की बात करी कि जिसके उपयोग से या जो गोल्डन राइस जो किस्म पैदा की गई है उसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है, तो इससे जो पोषक तत्व में या जो माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है उसको खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा जो खराब मौसम के लिए कई बार सूखा पड़ जाता है, कई बार बाढ़ की स्थिति आ जाती है, कई बार उच्च तापमान की वजह से भी जो है फसलों को नुकसान हो जाता है, इन सभी खराब मौसम, सूखा और अत्यधिक तापमान को सहनशील करने वाली फसलें भी जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा विकसित कर ली गई है, और इसकी वजह से ही जो है किसान जो है इसका लाभ अपनी खेती में कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, जो अपना खेत हुए भी कमाए, जो खेत की मिट्टी हुए वह फसल उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण हुए, तो मृदा की जो उपजाऊपन क्षमता है बिना बढ़ावा के वास्ते भी जो है जैव प्रौद्योगिकी सहायक हो सकेगी?
0: बिल्कुल सही सवाल किया आपने। जो मृदा की जो उर्वरता है वो जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम बढ़ा सकते हैं। देखो, अब किसी भी फसल को बढ़ने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब हम माइक्रोबियल जो बायोटेक्नोलॉजी है ये मृदा सुधार का एक बहुत बड़ा पहलू है। तो जो हमारे कुछ चने वाली फसलें होती हैं या जिनको कहना चाहिए जो पल्स क्रॉप होती हैं, उनके जो जड़ों में क्या होते हैं माइक्रोबियल कवक और नाइट्रोजन को फिक्सिंग करने वाले जीवाणु होते हैं, और जिससे कि है इस तरह से हम अपने जो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को है या नाइट्रोजन की आपूर्ति है उसको हम इन जीवाणुओं द्वारा कम कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह के फसलों में से जो जीन को निकाल करके ये अनाज वाली फसलों में भी ट्रांसफर किया गया है, जिससे ये फसलें भी जो है वो नाइट्रोजन फिक्स कर सके या जो सह संबंध बना सके पौधों में और अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके।
1: तो डॉक्टर साहब, ईका द्वारा जो है बायो पेस्टिसाइड्स को निर्माण की प्रकार से हुआ है?
0: जो बायो पेस्टिसाइड होते हैं ये जो अपने सिंथेटिक पेस्टिसाइड होते हैं उनका एक विकल्प होता है। जो हम सिंथेटिक बायो पेस्टिसाइड यूज करते हैं ये वातावरण को बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं, साथ ही किसानों को इसकी उच्च रेट भी देनी पड़ती है। इसके विकल्प के रूप में जो पौधों में या जीवों में और जंतुओं में जो इस तरह के रसायन होते हैं उनको जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा उनको एक्सट्रैक्ट करके और बायो पेस्टिसाइड का निर्माण किया जाता है, जिसमें जो फसल है जैसे नीम है, पायरेथ्रम है, कपास है और तंबाकू है आदि जो वनस्पति, ये जो बायो पेस्टिसाइड है ये कम खर्चे भी होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, उनको इसका लाभ मिल सकता है क्योंकि इनका जो खर्चा आता है वो भी कम आता है और ये फसलों में बहुत अधिक कारगर साबित हो रहे हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, बहुत चौकी देखो आप बात बताया जैव प्रौद्योगिकी के बारे में, किसान का जो खेत हुआ भी की मिट्टी की उपजाऊपन क्षमता बढ़ावा में भी सहायक है और खाद्य सुरक्षा ने भी सुनिश्चित करा है। तो इसके अलावा अब चलता चलता जो माँ का किसान भाई ही बाने ये विषय पर अपनी तरफ से और कोई बात ये चर्चा में रहेगी तो आप अपनी तरफ से कहबो चाहो तो आप बता सको।
0: देखिए किसान भाइयों, जैव प्रौद्योगिकी वैसे एक महंगी तकनीक है, किसानों के लिए महंगी तकनीक है, लेकिन यदि हम इस तकनीक का उपयोग करके अपने जो फसल है यदि उसमें वैज्ञानिक उसमें वांछित गुणों का उपयोग कर लें, अपने जो समस्याएं आ रही है चाहे वो जलवायु परिवर्तन की हो, चाहे न्यूट्रिशन की हो, चाहे और दूसरी समस्या हो जो कीटरोधी हो, इस तरह की यदि हम फसलें तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए जो जैव प्रौद्योगिकी है वो बहुत अच्छी तकनीक है। और मैं तो चाहूंगी कि किसानों को भी इस तकनीक से रूबरू होना चाहिए, साथ ही जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनको अपनाना चाहिए।
1: तो किसान भैया, आई जानकारी जैव प्रौद्योगिकी के बारे में और आ जानकारी आपने दी डॉक्टर सुनीता गुप्ता जो कि प्रोफेसर हैं पादप कार्यकी विभाग राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर से आप आई और किसान भैया ने अतिरिक्त चौकी और उपयोगी जानकारी दी। इसके वास्ते डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रत्येक शुक्रवार सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम हेल्थ इश्यूज। प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेकू सर्जरी सेंटर, टोंक रोड, टोंक फाटक, गांधीनगर, जयपुर।
3: सुनो, इस त्योहार तो हमारी नई कार आ जाएगी ना?
4: कार भी आएगी और हम अपने घर को रेनोवेट भी करवाएंगे।
3: वो कैसे?
4: SBI अनलिमिटेड सेलिब्रेशन है ना, कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स और प्रोसेसिंग फी वेवर।
3: कॉल 1-800-1234 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
5: हाँ, तो जानकारी देवा के लिए महेश भाई जी को और

0: राजू भाई,
1: हाँ जी,
0: मारो गोरबंद नकराड़ो सरस्वती देवी धांधड़ा और हीरा लाल व साथियों की आवाज में सुना, और उम्मीद से आपने भी पसंद आयो लो, श्रोतावान ने भी पसंद आयो ही होलो।
1: बिल्कुल सर। और अब चार दस साल था मौसम की जानकारी कर ले बात
0: जी।
1: तो आज को अधिकतम तापमान रियो 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रियो 24 डिग्री सेल्सियस और साफ मौसम रियो। तो
0: और अब स्टूडियो की घड़ी कह रही है भाई, आज को जी को कार्यक्रम छे खेती बाड़ी को टाइम पूरा होते जा रहे छे, तो श्रोतावा दिराओ आज्ञा आशा ने
1: और राजू ने
0: चालार करा।
1: राम राम सा,
0: राम राम सा।

0: श्रोताओं, अभी हमारे ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। जयपुर अजमेर के अलावा आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी डूंगरपुर, नाथद्वारा, करौली, भरतपुर, झुंझुनू, अनूपगढ़ और कोटपुतली केंद्रों से भी सुन रहे हैं। और साथ ही आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। श्रोताओं, कुछ ही पलों में होगा कार्यक्रम हमारी पीढ़ियां। उसके बाद 8:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमारी पीढ़ियां।
1: नमस्कार, मैं एना कर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमारी बेटियां में।
2: प्रिय मित्रों, आज के इस वर्तमान युग में मनुष्य प्रतिदिन बहुत से कार्य को करता है और उसके जीवन में वो इतना व्यस्त होता है कि हर दिन उसके पास कोई ना कोई काम करने के लिए होता है। वो मेहनत करता है, प्रयास करता है और अपने जीवन में वो थक भी जाता है। हम सभी कभी ना कभी अपने जीवन में आलस्य का अनुभव करते हैं। कई बार हम जानते हैं कि कोई काम हमें करना चाहिए लेकिन फिर भी उसे हम टालते रहते हैं क्योंकि हम अपने जीवन में उस काम को नहीं करना चाहते हैं। आलस्य ऐसा ही होता है। न्यूटन का एक गति का नियम है और यह नियम इस बात को बताता है कि जो वस्तु रुकी हुई है वह रुकी रहना चाहती है और जो वस्तु चल रही है वह चलती रहना चाहती है जब तक कोई बाहरी शक्ति उसे बदलने के लिए मजबूर ना करे। कुछ ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। कुछ लोग अपने काम को शुरू करने और पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं लेकिन कुछ लोग काम को शुरू करने में कठिनाई महसूस करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। आलस्य धीरे धीरे हमारी आदत और जीवन शैली बन सकता है, इसलिए हर एक व्यक्ति को आलस्य के इस प्रलोभन से सावधान रहना चाहिए और अपने समय, जिम्मेदारियों और जीवन के उद्देश्य के प्रति जागरूक होकर आगे बढ़ना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में हम आलस्य के बारे में बात करेंगे और कैसे हम आलस्य को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं उसके विषय में भी आज के इस कार्यक्रम में हम

0: बात करने वाले हैं।
1: जी हाँ श्रोताओं, आप सबसे पहले हमारा नंबर लिख लें। हमारा नंबर है 9414066730। जी हाँ, 9414066730।
0: प्रिय श्रोताओं नमस्कार, मैं प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रिय मित्रों, लोगों के आलसी होने और हर काम को हमेशा कल पर टालने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वे अपने जीवन में बहुत ही अधिक आरामदायक स्थिति में रहना पसंद करते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि चीजें जिस तरह चल रही हैं उसमें कोई बदलाव हो। जी हाँ दोस्तों, ये होता है कम्फर्ट जोन। कम्फर्ट जोन यानी कि आरामदायक स्थिति। आरामदायक स्थिति एक खूबसूरत जगह है, लेकिन वहां कभी कोई विकास नहीं हो सकता। जो काम आप हमेशा करते आए हैं वही करना आसान होता है, लेकिन इससे आपको वह विकास नहीं मिल पाता जिसकी आप इच्छा रखते हैं। विकास के लिए आवश्यकता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और कठिन कार्य को करने का प्रयास करें। आलस्य हमारे जीवन में बहुत सी कमियों को लेकर आती है। आलस्य हमारे शारीरिक जीवन पर प्रभाव डालती है। शारीरिक जीवन के साथ साथ ये हमारे आर्थिक जीवन पर भी बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती है। जो लोग आलस्य छोड़ देते हैं उन्हें अच्छी सेहत के साथ साथ आर्थिक लाभ भी मिलता है। यदि मनुष्य आलसी है तो उसे अपने जीवन में बहुत सा नुकसान उठाना पड़ता है। एक बार एक धनी व्यक्ति था और ये धनी व्यक्ति बहुत ही आलसी था। उसने हर काम करने के लिए नौकर रखे हुए थे। वह दिन भर पलंग पर पड़ा रहता था और आराम करता था, खाता पीता था और सोता था। शारीरिक मेहनत ना होने की वजह से धीरे धीरे उसका मोटापा बढ़ने लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। मोटापे के साथ उसे कई बीमारियां भी हो गई, सेहत खराब होने लगी। घर के नौकरों को भी मालूम था कि मालिक आलसी है, बिस्तर पर पड़ा रहता है और खाता है, पीता है, सोता है, तो उन्होंने भी बेईमानी करना शुरू कर दिया। अब उस धनी आदमी को स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा था, क्योंकि ये धनी व्यक्ति अपने उन नौकरों पर ध्यान नहीं दे रहा था। एक दिन उसका दोस्त मिलने के लिए आया। घर आया दोस्त जानता था कि व्यक्ति बहुत आलसी है। उसने देखा कि धनी सेठ बीमार है और उस सेठ ने मित्र से इन परेशानियों को दूर होने का उपाय पूछा। मित्र बहुत समझदार था। उसने कहा कि उपाय तो है, लेकिन तुम वह कर पाओगे या नहीं? सेठ बोला कि मैं ठीक होने के लिए कुछ भी करूंगा, तुम बस मुझे उपाय बताओ। मित्र ने कहा कि रोज सुबह अपने गांव में एक सुनहरा पक्षी आता है, तुम्हें रोज सुबह उसके दर्शन करना है। उसके दर्शन करने से तुम्हारी समस्याएं खत्म होती चली जाएंगी। अगले दिन ये धनी व्यक्ति सुबह उठता है और उस पक्षी को देखने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उस दिन उसे वह सुनहरा पक्षी नहीं दिखाई दिया। अगले दिन सुबह सेठ फिर उठा और उस पक्षी को देखने के लिए आगे बढ़ा और उस पक्षी को खोजने लगा। अब रोज सेठ सुबह सुबह जल्दी उठकर पक्षी को खोजने के लिए निकल पड़ता था। सुबह जल्दी उठने और बाहर जाने से उसकी शारीरिक मेहनत से उसकी सेहत सुधरने लगी। नौकर भी सेठ को देखकर ईमानदारी से काम करने लगे थे। इस तरह सेठ का स्वास्थ्य भी ठीक हो गया और उसकी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे ठीक होती चली गई, क्योंकि अब उसके नौकर पूरी ईमानदारी के साथ अपने काम को कर रहे थे। एक दिन सेठ का मित्र वापस मिलने के लिए आया तो सेठ ने कहा कि मित्र, तुमने जो कहा था कि वह सुनहरा पक्षी रोज गांव में आता है, मैं कई दिनों से रोज उसको देखने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन वो मुझे आज तक नहीं दिखाई दिया। मित्र ने कहा कि जब से तुमने सुबह उठकर घूमना शुरू किया है तुम्हारी सेहत ठीक हो गई है और नौकर भी ईमानदारी से काम करने लगे हैं, तुम्हारी जीवन शैली सुधर गई है और तुम्हें आर्थिक नुकसान भी नहीं उठाना पड़ रहा, यानी कि अब तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो गई है। यही वह सुनहरा पक्षी है जिसने तुम्हारा जीवन बदल दिया है। प्रिय मित्रों, आपका आरामदायक क्षेत्र ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, आरामदायक क्षेत्र एक सुंदर स्थान है, लेकिन वहां कभी कोई विकास नहीं होता। आरामदायक क्षेत्र आपको सुरक्षित तो महसूस करा सकता है, लेकिन वह आपकी प्रगति को रोक देता है। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, नई ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी क्षमता को पहचानना चाहते हैं, तो आपको अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलकर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि वास्तव

0: सामाजिक विकास हमेशा सुविधा से नहीं बल्कि संघर्ष और साहस से जन्म लेता है। ये कंफर्ट जोन यानी कि आरामदायक स्थिति वह स्थिति है जहां व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित, सहज और तनाव मुक्त महसूस करता है। यहां कोई बड़ा जोखिम नहीं होता और सब कुछ परिचित होता है, लेकिन यही सुविधा धीरे धीरे व्यक्ति की प्रगति को रोक देती है। यदि हम विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थी केवल उतना ही पढ़ना चाहते हैं जितना परीक्षा पास करने के लिए आवश्यक हो। एक कर्मचारी नए जिम्मेदारियों को लेने से डरता है, एक व्यापारी नए काम को शुरू करने से डरता है। इन सभी स्थितियों में व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में रह रहा होता है। लेकिन ये आरामदायक स्थिति हमारा शत्रु कैसे है? ये हमारी क्षमता को सीमित कर देती है। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रतिभाएं और योग्यताएं दी हैं। जब हम केवल आसान कार्य करते हैं तो हमारी वास्तविक क्षमता तभी सामने नहीं आती। यह हमें परिवर्तन से डरना सिखाती है। नई परिस्थितियां हमें असहज महसूस कराती है, इसलिए हम पुराने तरीकों को भी अपनाए रखते हैं, जबकि विकास के लिए परिवर्तन आवश्यक है। यह आलस्य और टालमटोल को बढ़ावा देता है। जब सब कुछ आरामदायक लगता है तो हम कठिन निर्णय लेने और मेहनत करने से बचने लगते हैं। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। यह सीखने की प्रक्रिया को रोक देता है। नई बातें सीखने के लिए गलतियां करनी पड़ती हैं। लेकिन आरामदायक स्थिति हमें गलतियों से बचाता है, लेकिन उसी के साथ सीखने के अवसर भी छीन लेता है। लेकिन प्रश्न यह है कि विकास कहाँ होता है? वास्तविक विकास तब शुरू होता है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। नया कौशल सीखना, लोगों के सामने बोलना, कठिन परिस्थितियों में खड़े रहना, कठिन जिम्मेदारियों को स्वीकार करना, असफल होने के डर के बावजूद प्रयास करते रहना और ईश्वर पर विश्वास रखना। शुरुआत में ये सब कठिन लगते हैं, लेकिन यही अनुभव हमें मजबूत और परिपक्व बनाते हैं। किसी ने कहा है, आलसी हाथ निर्धनता लाते हैं परंतु परिश्रमी हाथ समृद्धि लाते हैं। इसका अर्थ केवल आर्थिक गरीबी ही नहीं है। आलसी व्यक्ति अवसरों को खो देता है, अपने कार्य को टालता रहता है और अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं निभाता, और इसका परिणाम यही होता है कि वह आर्थिक, मानसिक, आत्मिक और सामाजिक रूप से भी पीछे रह सकता है। परंतु परिश्रमी हाथ समृद्धि लाते हैं। परिश्रमी व्यक्ति अपने काम को ईमानदारी, लगन और समय पर पूरा कर लेता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे उन्नति करता है, लोगों का विश्वास जीतता है और ईश्वर की दी हुई योग्यताओं का सही उपयोग करता है। यहाँ समृद्धि का अर्थ केवल धन नहीं बल्कि सम्मान, सफलता, स्थिरता और ईश्वर के द्वारा मिलने वाली वो आशीषें हैं जो ईश्वर ने मनुष्य के लिए रखी हैं। इस पूरे अंश में हम इस बात को देखते हैं कि आलसी व्यक्ति के स्वभाव का बहुत ही प्रभावशाली और कभी कभी हास्यपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया गया है। एक और कहावत है और उसमें कहा गया है, आलसी कहता है मार्ग में सिंह है। वास्तव में वो एक बहाना बना रहा है। हो सकता है कि मार्ग में कोई सिंह ना हो, लेकिन आलसी व्यक्ति काम पर जाने या अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए काल्पनिक खतरों का बहाना बनाने लगता है। आज के समय में ऐसे बहाने हो सकते हैं, जैसे कि अभी सही समय नहीं है, मेरे पास पर्याप्त साधन नहीं है, लोग मेरा साथ नहीं देते, अगर मैं असफल हो गया तो कल से शुरू करूंगा। प्रिय श्रोताओं, आलस्य अक्सर डर या बहानों के पीछे छिपा होता है। लेकिन आलस्य से बचने के लिए हम अपने जीवन में क्या करें? सबसे पहली चीज, बहाने बनाने की बजाय हम पहला कदम उठाएं। छोटे छोटे कार्यों को भी समय पर पूरा करने की आदत डालें। कठिनाइयों को अवसर समझिए, रुकावट नहीं। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वह आपको अनुशासन, परिश्रम और विश्वास योग्यता का जीवन जीने की सामर्थ्य दे। प्रतिदिन ऐसा कार्य करें जो आपको थोड़ा चुनौतीपूर्ण लगे। असफलता से डरने की बजाय उससे सीखें। नए अवसरों के लिए हाँ कहना सीखें। याद रखिए, असुविधा अक्सर विकास की शुरुआत होती है। जहाँ सुविधा प्राप्त होती है वहीं से विकास आरंभ होता है। विश्वास आपको वहाँ ले जाता है जहाँ आराम कभी नहीं ले जा सकता। जब हम अपने जीवन में उस आरामदायक स्थिति से बाहर निकलते हैं तभी हमारा चरित्र, विश्वास और क्षमता विकसित होती है। प्रिय श्रोताओं,
1: आलस्य को दूर करने का तरीका तभी समझ आ सकता है जब पहले हम इस बात को समझ लेंगे कि

0: आलसी क्यों हो रहे हैं, तो किस प्रकार से हम उन आदतों को बदल सकते हैं और आलस्य को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। पहली चीज, ऐसे लक्ष्य बनाएं जिन्हें आप पूरा कर सकते हैं। लक्ष्य हमेशा यह समझने में मदद करते हैं कि हमें क्या हासिल करना है और किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। इसलिए शुरुआत में एक या दो छोटे और स्पष्ट लक्ष्य बनाइए। उसी प्रकार से धैर्य और दृढ़ता विकसित करें। जीवन में सफल लोग हमेशा प्रेरित महसूस नहीं करते हैं। कई बार उनका भी मन काम करने का नहीं होता है, लेकिन वे कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। इसे दृढ़ता कहा जा सकता है, अर्थात किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य के लिए कठिनाइयों के बावजूद लगातार प्रयास करते रहें। इसे विकसित करने के लिए अपने काम में रुचि खोजिए, नियमित अभ्यास कीजिए और छोटी छोटी आदतों को लगातार दोहराएं। जब हम किसी अच्छे काम को नियमित रूप से करते हैं तो धीरे धीरे वह हमारी आदत बन जाता है। और अंतिम चीज, अपने समय और ऊर्जा में संतुलन बनाए रखें। हमारे पास समय तो सीमित है, लेकिन हमारी ऊर्जा भी सीमित है। जब हम बहुत ज्यादा काम करते हैं और आराम, नींद, व्यायाम और सही भोजन को नजरअंदाज करते हैं तो धीरे धीरे थकान और तनाव बढ़ने लगता है। इसलिए प्रोडक्टिव यानी अच्छा और प्रभावी जीवन जीने के लिए केवल समय का प्रबंध करना पर्याप्त नहीं होता है, अपनी ऊर्जा का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो प्रिय श्रोताओं, इस तरीके से हम अपने जीवन में आलस्य को दूर कर सकते हैं और एक अलग ही एनर्जी अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप भी अपने विचार, परामर्श, सुझाव या आपके सवाल हमें लिख सकते हैं।
1: अब हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं या फिर आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें। हमारा पता है, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 110001। और हमारा फोन नंबर है 9414066730। जी हाँ, 9414066730। तो अब मुझे दीजिए अनुमति, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 6300 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

होगी, यही बस मेरी एक दास्तान जिंदगी होगी। श्रोता, सबसे पहले ये नगमा लिया है दहलीज फिल्म से, महेंद्र कपूर और भूपेंद्र सिंह की आवाज में।

हमारा दर्द किसने देखा है, हमारा दर्द किसने देखा है, हमें तो बस खुदा ने ही तड़पते देखा है। तन्हाई में बैठकर रोते हैं, ये और बात है कि महफिल में सबने हमें हंसते देखा है। श्रोता महेंद्र कपूर भूपेंद्र सिंह की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा दहलीज फिल्म का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से फिल्म संगीत आपके रेडियो दोस्त शंकर पारिक के साथ।

अगला गीत फिल्म आम्रपाली से लिया है, आवाज है लता मंगेशकर की। शैलेंद्र के गीत, शंकर जयकिशन का संगीत।

मिलने की तरह मुझसे वो पल भर नहीं मिलता, मिलने की तरह मुझसे वो पल भर नहीं मिलता, दिल उससे मिला जिससे मुकद्दर नहीं मिलता। श्रोताओं, आम्रपाली फिल्म में लता मंगेशकर की आवाज में सुना आपने ये दिल।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के आखिर में किशोर कुमार की आवाज में ये गीत हमने लिया है फिल्म प्यार का मौसम से। मजरू सुल्तानपुरी के गीत, राहुल देव बर्मन का संगीत।

दिल तो था यही मेरे पास जब मेरा वो भरोसा था, किसने कितने किए गुनाह बस यही देखने का दिन बाकी था। किशोर कुमार की आवाज में गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का प्रोग्राम यहीं पर संपन्न करने की दीजिए इजाजत आपके रेडियो मित्र शंकर पारिक को। नमस्कार, खुदा हाफिज। श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। इसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से किया गया। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। अब से कुछ ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा कार्यक्रम 8:30 पर स्पोर्ट्स किंग, तत्पश्चात 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9:00 न्यूज एट 9, साथ ही 9:15 पर होंगी उर्दू में खबरें। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं लेकर के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। जापान में होने वाले एशियाई पैरा खेलों से पहले भारतीय दल को आज औपचारिक विदाई दी गई। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय दल की नई जर्सी का अनावरण किया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच टी20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल रांची में खेला जाएगा और प्रसार भारती तथा इन डॉट स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने किसान क्रिकेट लीग आयोजित करने की घोषणा की।

0: तो कार्यक्रम को आज शुरू किया जाए बैडमिंटन की खबर के साथ, जहां दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जापान की रिको गुंजी को हराया। हालांकि तन्वी शर्मा को महिला सिंगल्स और तरुण मन्नेपल्ली को पुरुष सिंगल्स के अपने मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। पुरुष डबल्स जोड़ी कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय का मुकाबला अब से कुछ देर में इंग्लैंड के ओलिवर बटलर और सैमुअल जोन्स से होगा।
1: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने दूसरे राउंड ऑफ 16 मुकाबले में जापान के रिको गुंजी को 21-15, 21-15 से हराया। मैच की शुरुआत से ही सिंधु ने दबाव बनाए रखा और दोनों ही सेट में गुंजी को वापसी का मौका ना देते हुए जीत दर्ज की। अब सिंधु का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त और पूर्व विश्व चैंपियन थाईलैंड के रचनोक इंथानोन से होगा। सिंधु ने हाल ही में जापान ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट जीता था। थारुण मन्नेपल्ली और तन्वी शर्मा के लिए ये निराशजनक रहा, जिन्हें सीधे गेम में हार का सामना करना

0: करना पड़ा। दूसरी वरीयता प्राप्त फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव ने मन्नेपल्ली को 21-14, 21-19 से हराया, जबकि रथ चानोक ने तन्वी को एक तरफा मुकाबलों में 21-18, 21-7 से मात दी। पूर्व विश्व नंबर एक किदाम्बी श्रीकांत भई कनाडा के ब्रायन यांग से 21-15, 15-21, 13-21 से हार कर पहले ही दौर में टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इससे पहले HS प्रणय, उन्नति हुड्डा, अश्मिता चांधिया और मल्लविका भंसौर भी शुरुआती दौर में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गयी। HS प्रणय को डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन से हार का सामना करना पड़ा, वहीं उन्नति चीन की हान कियान शी से हार गयी, जबकि अश्मिता डेनमार्क की लाइन क्रिस्टोफरसन से कड़े 3 गेम के मुकाबले में हार गयी। मालविका स्कॉटलैंड की क्रिस्टी गिलमोर से सीधे गेम में हार गयी। वैष्णवी स्पोर्ट्स कैन।
1: तो पीवी सिंधु ने अपने आगे की राह पक्की कर ली है और अब से कुछ देर बाद कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की पुरुष डबल्स जोड़ी भी अपना मुकाबला खेलेगी। इनके सामने इंग्लैंड की ओलिवर बटलर और सैमुअल जोन्स होंगे। तो देखना होगा कि क्या भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय कर पाती है या नहीं। और अब कार्यक्रम में बात जापान की आइची नगोया में होने वाली एशियाई पैरा खेलों की। इन खेलों से पहले आज भारतीय दल को औपचारिक विदाई दी गई। इस अवसर पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय पैरालंपिक समिति द्वारा आयोजित इस समारोह में भारतीय दल की नई जर्सी का अनावरण किया। श्री मांडविया ने चुनौतियों को पार करने वाले पैरा खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा कि इन खिलाड़ियों ने जीवन की यात्रा पहले ही जीत ली है और अब इन्हें पदक की यात्रा जीतनी है।
2: हमारे पैरा एथलीट जापान में एशियन गेम्स में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। हमने उसका हौसला भी बढ़ाया, उसको प्रोत्साहित भी करा। और पैरा एथलीट वे युवा है जो अपने जीवन को तो जीत गया है, ये छोटी बात नहीं है। अपना परिवार का विश्वास जीतना, सभी चैलेंज को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना, स्पोर्ट्स को सिलेक्ट करना, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में भाग लेने के लिए जाना, जीवन की यात्रा को तो आप जीते हैं, लेकिन आपको मेडल की यात्रा को भी फतेह करना है। मैं आपको अभिनंदन करता हूं, शुभेच्छा देता हूं।
1: समारोह में खेल मंत्री ने कहा कि सरकार अपनी तमाम नीतियों द्वारा खिलाड़ियों को हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: लास्ट एशियन गेम्स में हम 111 तक पहुंचे, हमें और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए जज्बा चाहिए, प्रोत्साहन चाहिए, सपोर्ट चाहिए। हमारे देश के एथलीट को, चाहे वो पैरा एथलीट हो, चाहे वो एथलीट हो, उसको संसाधन की कोई कमी नहीं है। सरकार की ओर से, फेडरेशन की ओर से, ओलंपिक्स एसोसिएशन की ओर से जो भी सहयोग की आवश्यकता हो, उसको सहयोग उपलब्ध हो रहा है। आर्थिक रूप में, ट्रेनिंग के रूप में, खेलो इंडिया एथलीट के रूप में, टॉप्स के एथलीट के रूप में सरकार आपके साथ खड़ी रहती है।
1: श्री मांडविया ने कहा कि भारत एक युवा राष्ट्र है और देश के युवा इसे विकसित राष्ट्र बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ी जब पोडियम पर खड़े होते हैं तो पूरे देश को खुशी होती है।
2: दुनिया का सबसे युवा देश आज हमारा भारत है। 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। इस स्ट्रेंथ को मेडल में कन्वर्ट करना, इनोवेशन में कन्वर्ट करना, सफलता में कन्वर्ट करना, सशक्तिकरण में कन्वर्ट करना, ये मोदी सरकार का मंत्र है। और होलिस्टिक अप्रोच के साथ मोदी जी आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स में कैसे आगे बढ़े, पहलू को टच करते हुए आज हमारा भारत बदल रहा है, नया भारत बन रहा है, विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारे एथलीट जब पोडियम पर खड़े होते हैं, पोडियम को फिनिश करते हैं, दोस्तों सफलता हमारे नजदीक आती जा रही है।
1: तो भारतीय दल अब तैयार है इस चुनौती को पार करने के लिए। इस अवसर पर भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया, चेयरपर्सन पायल कनोडिया और मुख्य कोच सत्य नारायण समेत कई बड़े खिलाड़ी मौजूद रहे। और भारतीय टीम के इस अभियान पर और अधिक जानकारी लेकर के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी विशेष भारत का जो ये अभियान है। पहले एशियन गेम्स समाप्त हो चुके हैं और अब बारी पैरा खिलाड़ियों की है कि वो किस तरह पोडियम पे कितना अधिक मौकों पर भारतीय तिरंगे को गुंजायमान करते हैं। तो कह सकते हैं कि भारत को अपने किन किन खिलाड़ियों से उम्मीदें होंगी और किस तरह की अभियान की उम्मीद है।
3: शक्ति, भारत का 121 सदस्यीय दल रवाना हो चुका है। 80 पुरुष खिलाड़ी और 41 महिला खिलाड़ी इस टीम में शामिल हैं। एथलेटिक्स पे सबसे ज्यादा 44 खिलाड़ी हैं। अगर बात करें किन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर, तो प्रमोद भगत और भाविना पटेल जो फ्लैग बेरर हैं इंडिया के, तो उन पर सबसे ज्यादा निगाहें होंगी, क्योंकि प्रमोद भगत एक बार पैरालंपिक्स में भी गोल्ड जीत चुके हैं और 4 गोल्ड और 2 एशियन गेम्स मेडल भी उनके नाम पे हैं। अगर सुमित अंतिल की बात करें तो

0: बार गोल्ड उन्होंने भी जीता है पैरालंपिक्स में, और अवनी लेखरा जो पहली भारतीय महिला बनी थी 2 गोल्ड जीतने वाली, तो उन पर भी काफी निगाहें होंगी। साथ ही साथ शीतल देवी का भी प्रदर्शन जो है देखने लायक होगा कि किस तरीके से वो भारतीय दल का प्रतिनिधित्व करती नजर आएंगी।
1: जी बिल्कुल, आपने काफी बड़े और दिग्गज खिलाड़ियों के नाम गिनाए जिनसे भारत को बिल्कुल उम्मीद होगी, और 18 अक्टूबर से यह आयोजन शुरू होगा, 24 तारीख तक चलेगा। जब 2024 के ओलंपिक्स खत्म हुए उसके बाद जब पैरालंपिक्स की बारी आई तो भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने वहां पे नए कीर्तिमान बनाए, और एक लगातार हमने क्रम देखा है जहां पे खेलों के आयोजन के बाद जब पैरा खेलों की बारी आती है तो भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करते हैं, नए कीर्तिमान बनाते हैं, हमने पैरालंपिक्स में देखा है। और अब इस बार कितनी उम्मीद होगी, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने एक तरफ 85 पदक जीत के अपना काम किया है, अब बारी पैरा खिलाड़ियों की है, जो 100 के आंकड़े की उम्मीद थी, क्या इस बार पार होती हुई नजर आएगी?
0: बिल्कुल शक्ति, भारतीय खिलाड़ियों से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। आपने जिक्र किया पैरा ओलंपिक्स का, तो मैं कहना चाहूंगा कि एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स 2023 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, जहां भारतीय एशियन गेम्स में 106 मेडल जीते थे और पैरा एशियन गेम्स में 111 मेडल अपने नाम किए थे। तो पैरा एशियन गेम्स में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा था, वहीं पैरालंपिक्स की भी आपने बात करी तो वो भी प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा। इस बार 121 खिलाड़ी जो है पैरा एशियन गेम्स में जा रहे हैं, तो देखना ये दिलचस्प होगा कि 100 मेडल का आंकड़ा जो एशियन गेम्स में पूरा नहीं हो पाया तो क्या पैरा एशियन गेम्स में हो पाएगा, सभी को यही उम्मीद है।
1: जी बिल्कुल, लेकिन हम अभी जब श्रीमान शुक मांडविया जी को सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि पिछले बार हमने 111 पदक जीते थे, लेकिन इस बार क्या कुछ चुनौतियां रहेंगी, क्योंकि दल की संख्या भी अगर देखी जाए तो पिछले बार भारत ने एक बेहद बड़ा दल भेजा था, लेकिन इस बार उसकी तुलना में थोड़ी सी कटौती खिलाड़ियों में हुई है।
0: बिल्कुल शक्ति, पिछली बार भारत का जो दल था पैरा एशियन गेम्स में वो 303 सदस्यों का था, जहां भारत ने 111 मेडल अपने नाम किए थे जिसमें 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल थे। इस बार वो दल सिर्फ 121 सदस्यों का है जिसमें 80 पुरुष 41 महिलाएं खेलेंगी, और एथलेटिक्स से भारत को सबसे ज्यादा उम्मीदें होंगी क्योंकि एशियन गेम्स में भी हम लोगों ने सबसे ज्यादा मेडल्स जो है एथलेटिक्स में ही जीते, तो 44 खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे पैरा एशियन गेम्स में, और बहुत सारी उम्मीदों को लेकर भारत का जो है परचम लहराने का प्रयास करेंगे।
1: जी बिल्कुल, खिलाड़ियों से उम्मीद होगी कि इस तरह की एथलीट्स ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में भारत के लिए एक पदकों की झड़ी लगाते हुए नजर आएंगे, जैसा हमने पिछले कई बड़े आयोजनों से जिसमें पुराने पैरा एशियन गेम्स हो, पुराने पैरालंपिक्स हो देखा है। इस बार भी भारतीय दल तैयार है जापान की इस चुनौती को एक बड़े कीर्तिमान के साथ समाप्त करने के लिए। और अब कार्यक्रम में बात क्रिकेट के मैदान की। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल खेला जाएगा। यह मैच रांची के JSCA अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। विशेष, भारत ने पहले मैच में एक शानदार जीत दर्ज की थी 8 विकेट से, और अब श्रृंखला के पहले मैच को जीत करके बढ़त जो है 1-0 की है। कल भारत के लिए कैसी स्थितियां होंगी रांची में और किन खिलाड़ियों पर नजर रहने वाली है?
0: शक्ति, भारतीय बल्लेबाजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि पिछले मुकाबले में हमें देखने को मिला कि बल्लेबाजी के दम पर एक तरफा मुकाबला भारत ने अपने नाम कर लिया, लेकिन गेंदबाजी की भी तारीफ होगी क्योंकि वेस्टइंडीज के खिलाफ जब भारतीय गेंदबाजों ने अपना प्रदर्शन शुरू किया तो 44 रन पर 3 विकेट झटक लिए थे, लेकिन वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने वापसी करते हुए स्कोर को 171 तक पहुंचा दिया। उसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करी। हालांकि जब से श्रेयस अय्यर ने अपनी कप्तानी की कमान संभाली है तब से बल्लेबाजी के परफॉर्मेंस में उनका थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन इस पारी से उन्होंने बताया है अपने आलोचकों को कि उनकी क्या क्वालिटी है।
1: जी बिल्कुल, एक क्वालिटी खिलाड़ी है इसमें कोई संदेह नहीं, जो क्लास और आक्रामकता का एक अनूठा समागम देखने को मिलता है उनकी बल्लेबाजी में। कल ऐसी भी उम्मीदें होंगी कि वैभव सूर्यवंशी भी भारतीय प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं। वैभव या फिर लोकल बॉय ईशान किशन, क्या उम्मीदें होंगी इन दो खिलाड़ियों से? खासकर
0: शक्ति, दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, और ईशान किशन की फॉर्म की अगर बात करें तो पिछले 1-2 सालों से उन्होंने जो कुछ भी अचीव किया है वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लगता है, क्योंकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से लेकर उसके बाद आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस, T20 विश्व कप जिताना भारत को और अहम मौकों पर परफॉर्म करना, ये ईशान किशन की पहचान बन चुकी है। वहीं युवा वैभव सूर्यवंशी ने भी U19 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया था भारत के लिए, और अब वो अपने मौके तलाश रहे हैं टीम में। क्या टीम कुछ अलग कॉम्बिनेशन करते हुए वैभव सूर्यवंशी को मौका दे सकती है? यदि देती है तो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से वैभव सूर्यवंशी प्रेशर में परफॉर्म करते हैं।
1: जी बिल्कुल, देखना होगा कि किस तरह से अपने आप को एक मैच्योर खिलाड़ी की तरह स्थापित करने का काम करते हैं। इस समय एक और अपडेट आया क्रिकेट के मैदान से, जहां श्रीलंका के टेस्ट कप्तान धनंजय डिसिल्वा ने आज टेस्ट कप्तानी छोड़ दी है। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने कुसल मेंडिस को

0: उनकी जगह पे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है। प्रसार भारती और इन डॉट स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने आज किसान क्रिकेट लीग केसीएल के आयोजन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों से क्रिकेट खिलाड़ियों और गायकों की खोज करना है। लीग के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लीग का आयोजन अगले वर्ष फरवरी में होगा और इसमें भाग लेने के लिए पंजीकरण अगले 2 से 3 सप्ताह में शुरू हो जाएगा।
1: किसान क्रिकेट लीग इज नेशन वाइड क्रिकेट लीग फोकस्ड ऑन ओनली द रूरल पीपल और यंगस्टर्स हु हैव क्रिकेट एज देयर करियर चॉइस। सो वी विल बी डूइंग द नेशन वाइड टैलेंट हंट इन विच वी विल बी इनवाइटिंग मोर देन 1 लाख प्लेयर्स हु विल बी देन एनालाइज्ड बाय आवर कोचेस। दे विल बी ब्रॉट टू द फिजिकल ट्रायल्स एंड देन 140 प्लेयर्स विल बी चोजन आउट ऑफ। ईच प्लेयर विल बी प्रोवाइडेड इनिशियल पैकेज ऑफ 5 लाख रुपीज फॉर द लीग।
0: तो एक और मंच क्रिकेट का तैयार होता हुआ, खासकर इस बार फोकस है ग्रामीण क्षेत्रों पर, रूरल एरिया पर। 15 ओवर का फॉर्मेट होगा, वाइड बॉल क्रिकेट होगी, जहां पहले सत्र में 45 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें देशभर से 7 टीमें, 140 खिलाड़ी और 30 गायक शामिल होंगे। श्री पांडे ने कहा कि यह पहल दर्शकों को मुफ्त और पारिवारिक मनोरंजन प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
1: I think it is one of the progressive step in the right direction because being a public service broadcaster, Prasar Bharati caters people. One, it comes free of cost, so you don't have to take any subscription to watch live matches. That is a very big thing.
0: तो ये एक अनूठा संगम जहां मनोरंजन और क्रिकेट एक साथ देखने को मिलेगा। और अब चलते चलते रुक कर लेते हैं हॉकी के मैदान पर, जहां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी का आयोजन जलंधर और मोहाली में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश को 6 टीमों के टूर्नामेंट में स्थान दिया गया है। इस टूर्नामेंट में भारत के अलावा जापान, चीन, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और अब बांग्लादेश की टीम भाग लेगी। पंजाब में लगभग 2 दशक बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी की वापसी होने जा रही है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय, अपने सुझाव आप हमें स्पोर्ट्सकैन की ईमेल sportscan@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार।
3: वस्तु और सेवाकर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार अगले महीने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डीप फेक से निपटने के लिए नियमों पर परामर्श पत्र जारी करेगी। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की। कनाडा की कवित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। और पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वस्तु और सेवाकर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
4: The council recommended removing arrest powers under GST.
5: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
4: From 25,000 to 10,000.
3: कर फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है।
4: जीएसटी काउंसिल टुडे हैज रेकमेंडेड।
5: जीएसटी परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानकों की सिफारिश की है। 10,000 रुपए के निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं करने की भी

0: की सिफारिश की है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से कम के लंबित नोटिसों को वापस लेना भी शामिल है।
1: पेंडिंग नोटिसेस बिलो द सेट थ्रेशोल्ड।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
3: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए, उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
2: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया।
3: डीप फेक कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है, ये भी हम देख रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क पर काम करें। सरकारें, टेक्नोलॉजी कंपनी, टेलीकॉम ऑपरेटर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सभी को इस फ्रेमवर्क से जुड़ना होगा। मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं, आइए एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाए जो ऐसे फोर को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की।
4: 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजन दिया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य का भारत कनेक्टेड रहे, भविष्य के भारत में डिजाइन रहे और भविष्य का भारत नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस एक दशक में जो संपूर्ण भारत की टेलीकॉम और डिजिटल फ्रेटर्निटी ने करके दिखाया है, वो शायद कई और देशों को सदियों लग जाती जो 10 वर्ष की अवधि में भारत ने करके दिखाया है।
2: श्री सिंधिया ने किफायती और सार्थक डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए निवेश और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सहायक नीतिगत ढांचे के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी को बिना किसी सीमा के हासिल करना चाहिए। स्केल विदाउट बाउंड्रीज विषय के अंतर्गत इस कार्यक्रम में पॉलिसी, रेगुलेशन, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें AI के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीपफेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग से समाज को अधिक लाभ मिलेगा।
5: वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक एक्सटेंसिव स्टडी की गई है, किस तरह से समाज के उन वर्गों को AI का बेनिफिट मिले जो नॉर्मली टेक्नोलॉजी से वंचित रहते थे। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का एक मार्गदर्शन दिया है, उसी भावना के साथ कई ऐसे एग्जाम्पल जैसे किसानों के लिए एक एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा हुआ है AI का, जिसमें 40% के आसपास यील्ड बढ़ी है और पानी का उपयोग कम हुआ और साथ ही साथ फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट भी कम हुआ।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: तो शुरू करें इन्वेस्ट।

0: सभी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सभी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि इसके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और उच्च न्यायपालिका तथा वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है। एक रिपोर्ट।

0: पत्र में चिंता व्यक्त की गई है कि भारत के संवैधानिक निकायों पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये निहित राजनीतिक स्वार्थों द्वारा चलाया जा रहा अभियान है। पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के अंतर्गत वैध है। उन्होंने बताया कि पिछला SIR लगभग 2 दशक पहले पूरा हुआ था और किसी ने भी उन संशोधनों को साजिश नहीं कहा था। हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि उच्च न्यायालय ने SIR को वैध और चुनाव आयोग की शक्तियों के दायरे में माना है। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि वे दावों की जांच पड़ताल और पुष्टि किए बिना अटकलों और अनुमानों को बढ़ावा न दें। पत्र में संवैधानिक निकायों से दृढ़ रहने, पारदर्शिता बनाए रखने और राजनीतिक खींचतान से दूर रहने का आग्रह किया गया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवैधानिक पद पर 25 साल का लगातार कार्यभार लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक रिकॉर्ड है। इस अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में 2 दिवसीय नमो बुक फेस्ट को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 12-13 वर्ष में दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी के बहुआयामी व्यक्तित्व में काफी दिलचस्पी देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी ये यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जारी रहने वाली अथक वचनबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन के इस दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि दृष्टिकोण नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी पहलों के जरिए किस तरह कार्यान्वित हुआ।
2: वर्ष 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। यह देश में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन के हर स्तर पर समान अवसर और प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की थी कि वे वर्षों से लंबित महिला आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए मिलकर काम करें।
3: आज पंचायतों में, नगरपालिका में, नगरपालिका बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता, आग्रह करता, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार से राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि इस कानून के जरिए मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने का रास्ता खोल दिया है।
4: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित कर मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भागीदारी देने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह केवल आरक्षण नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व एवं उनके सामर्थ्य पर विश्वास किया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
1: नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। यह भारत की नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें देश के भविष्य को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। 2 दिन का विभागीय शिखर सम्मेलन आज शुरू हुआ। ये सम्मेलन सभी राज्यों के महिला और बाल विकास क्षेत्र के साथ राजनीतिक नेतृत्व और आधिकारिक संबंध की भागीदारी का साक्षी है। कनाडा की लेखिका एन कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें यह सम्मान साहसिक और कल्पनाशील लेखन के लिए मिला है। स्वीडिश अकादमी ने स्टॉकहोम में पुरस्कार की घोषणा की। पुरस्कार राशि 1,02,00,000 स्वीडिश क्रोनर यानी करीब 11.5 करोड़ रुपए है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
5: सेंसेक्स 1,045 अंक गिरकर 71,593 पर बंद हुआ। निफ्टी 371 अंक लुढ़क कर 22,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले

0: मामूली गिरावट के साथ 96.79 पर बंद हुआ।
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीम का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
2: मोदी जी ने इस बात की चिंता की है कि हर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे और साथ में खुराक की व्यवस्था दी जाएगी और मुफ्त दवाई दी जाएगी, इसकी व्यवस्था की। अब हमारा काम यह है कि हम केस को डिटेक्ट करें और उनको दवाई तक पहुंचाएं और उनको दवा भी दिलाएं, खुराक भी दिलाएं, इस बात के लिए हम काम में जुटे। आज हमारे 55 जिलों में लगभग सभी ब्लॉक्स में 11 स्टेट्स में जोश की टीम को ये टास्क दिया गया है।
1: भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन

0: दिया गया है।
1: भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और तरुण मन्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गन ने भारतीय पैरा तैराक और खेल जगत की जानी मानी हस्ती पद्मश्री से सम्मानित सत्येंद्र सिंह लोहिया से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मुर्गन ने कहा कि सत्येंद्र सिंह का साहस, दृढ़ता और खेल में बेहतरीन प्रदर्शन का प्रेरणादायक सफर देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करता रहता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार अगले महीने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डीप फेक से निपटने के लिए नियमों पर परामर्श पत्र जारी करेगी। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की और कनाडा की कवित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम बीसी प्रमोद विद द न्यूज।

लता मंगेशकर की आवाज में बुढ़ा मिल गया फिल्म का ये गाना आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे संगीता डी बर्मन का था। इसी के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम खत्म होता है।

0: अभी नहीं।
1: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
0: है ना? बोलो, बोलो।
1: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
1: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
0: वादा,
3: हाँ जी वादा।
4: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही क्षणों में होगा कार्यक्रम आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज। तो जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका

प्रतिभा, कला, अभिनय और सुंदरता से सेल्यूलाइट को चमकदार बनाया है और इन अभिनेत्रियों में से एक है राजश्री, जिनका जन्म 8 अक्टूबर को मुंबई में हुआ था। राजश्री की पहली फिल्म थी इनके पिता और निर्देशक वी शांताराम की सुबह का तारा, जिसमें इन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया था। नाम था सोगी, जो फिल्म के किरदार मोहन की बहन का रोल था और इसे इन्होंने अदा किया था। मोहन थे फिल्म में प्रदीप कुमार और इस फिल्म की नायिका थी राजश्री की माता जयश्री। आइए राजश्री पर फिल्माया हुआ ये गाना।

राजश्री शांताराम यानी राजश्री, जो एक सुंदर अभिनेत्री और नृत्यांगना के रूप में जानी पहचानी जाती हैं। भारतीय फिल्म जगत में कई अभिनेत्रियों ने अपनी

जयश्री वी शांताराम की पत्नी थी, जिन्होंने मराठी और हिंदी की फिल्मों में काम किया, जिसमें मराठी की 1941 की फिल्म शेजारी थी। डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, शकुंतला, परछाइयां, दहेज जैसी फिल्मों में आपने काम किया और इन्हीं फिल्मों से आप पहचानी भी जाती हैं। आपकी दो संतानों में से एक मशहूर अभिनेत्री राजश्री और सुपुत्र मुंबई के पूर्व शेरिफ किरण शांताराम है। राजा राम वानकुंदे शांताराम और संध्या अभिनीत स्त्री 1961 की फिल्म थी, जिसमें राजश्री भी थी। ये फिल्म कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित थी। इस फिल्म को 34वें अकादमी अवार्ड के लिए बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए चयनित किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये चयन की प्रक्रिया जो है साकार नहीं हो सकी। किशोर साहू निर्देशित फिल्म 1963 की गृहस्थी में राजश्री ने अभिनय किया। इनके नायक थे मनोज कुमार। ये फिल्म दक्षिण भारत में बनने वाली पारिवारिक ड्रामा प्रवृत्ति यानी कि ट्रेंड को शुरू करने वाली फिल्म थी।

सन 1963 में आई एक बार फिर किशोर साहू के निर्देशन में बनी राजश्री की फिल्म, नायक मनोज कुमार और फिल्म थी घर बसा के देखो। ये फिल्म एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म थी जिसकी कहानी में रोमांस और कॉमेडी का अच्छा मिश्रण था। ये एक विधवा माँ के इर्द गिर्द घूमती कहानी है जो शहर में अपने बेटे को शिक्षित करने के लिए अपना गांव का घर गिरवी रख देती है। बेटा अपनी पसंद की लड़की से शादी करता है और बाद में जो परिवार के साथ दुर्व्यवहार करती है। राजश्री ने इस फिल्म में शारदा मेहरा का किरदार निभाया था। आधुनिक पत्नी का रोल श्यामा ने किया था।

1964 में शहनाई, 1964 में ही जी चाहता है और इसी साल आई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में राशि ने विद्या नाम की लड़की का किरदार निभाया था। फिल्म के नायक थे जितेंद्र।

सन 1965 में आई फिल्म दो दिल, इसी साल राजश्री को एक अलग पहचान देने वाली फिल्म आई जानवर। राजश्री की इस फिल्म के नायक थे शम्मी कपूर।

0: बात 1966 की है, फिल्म आई सगाई। ये एसडी नारंग के निर्देशन में बनी फिल्म थी और इसमें अभिनय किया था राजश्री और विश्वजीत ने, जिसमें राजश्री ने शील नाम का एक किरदार निभाया था। ये कहानी एक स्त्री की है जिसका पति बीमार है और उस स्त्री को चाहने वाला एक शख्स है। ये एक औरत के जीवन की राह और कष्ट, मानसिक यंत्रणा की कहानी है। इस फिल्म में अन्य पुरुष की भूमिका प्रेम चोपड़ा ने निभाई थी।
1: खफा ना होना अगर मैं पूछूं कहां से पाया ये हुस्न शबाब।

0: अब तुमने खफा ना होना अगर मैं पूछूं।
1: मोहब्बत जिंदगी है। इस फिल्म में राजश्री के साथ थे धर्मेंद्र, महमूद, चांद उस्मानी, देवेंद्र वर्मा, नाजिर हुसैन जैसे कलाकारों को ली हुई इस फिल्म में राजश्री ने नीता मेहता का किरदार निभाया था और इस फिल्म में गीत एसएच बिहारी के थे और संगीतकार थे ओपी नैयर।

सगाई फिल्म की तरह दिल ने पुकारा में आशा की सगाई डॉक्टर प्रकाश से होनी थी, लेकिन कश्मीर में छुट्टियों के दरमियान आशा राजन से मिलती है। दोनों की शादी तय है, पर ऑक्सफोर्ड की डिग्री के बाद ही राजन शादी कर लेगा ये तय होता है। यात्रा के दौरान एक दुर्घटना में पता चलता है कि सभी यात्री मारे गए हैं। इसके बाद स्थितियां ऐसी बनती है कि प्रकाश और आशा की सगाई तय होती है और उनकी सगाई हो भी जाती है। तब आशा को यह पता चलता है कि प्रकाश हमेशा से ही उन्हें चाहते थे, लेकिन अपने मित्र राजन के लिए वो अपने प्यार का त्याग करते हैं। एक दिन डॉक्टर प्रकाश को पता चलता है कि राजन जैसा दिखने वाला एक शख्स उनके हॉस्पिटल में एडमिट है, जो अपनी याददाश्त भूल गया है। आशा और प्रकाश दोनों ही उसकी 3 सालों से वो कहाँ था, कौन है, ये पता करने का तय करते हैं। और वो ये नहीं जानते कि हकीकत का पता चलने पर उनके जीवन की राह बदल भी सकती है।

सन 1967 की फिल्म गुनाहों का देवता राजश्री की चर्चित फिल्मों में से एक है, जिसके निर्माता निर्देशक थे देवी शर्मा। जितेंद्र इस फिल्म के नायक थे। संगीत शंकर जयकिशन का था। एक बेहतरीन डांसर के रूप में हमेशा ही डांस नंबर्स को फिल्मों में राजश्री ने दर्शनीय बनाया है।

अब राशि की उस फिल्म का जिक्र है जो एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें फिल्म का नायक यानी राज कपूर पूरी दुनिया की सैर $8 के साथ करते हैं। राजश्री, अमिता, ओम प्रकाश और महमूद इस फिल्म में अन्य

0: अराउंड द वर्ल्ड भारत की पहली 70mm फॉर्मेट में बनी फिल्म थी। ये फिल्म एक युवा करोड़पति की यात्रा की कहानी है जो जापान में केवल $8 के साथ फंस जाता है। वो किसी तरह एक क्रूज जहाज पर नौकरी करता है और एक सुंदर खूबसूरत लड़की से मिलता है। इसी तरह हमारी पसंदीदा अभिनेत्री भी इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही अमेरिकन ग्रेग चैपमैन से मिलती है। 3 वर्षों बाद वे विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। फिर ये सुंदर प्रतिभावान अदाकारा अपने पति के साथ अमेरिका चली जाती है। इस दरमियान राशि की 3 फिल्में भी आती है, एक सुहाग रात, ब्रह्मचारी और 1973 में नैना।
1: मोहे लगी रे।

0: आइए अब ब्रह्मचारी फिल्म की बात करते हैं। सचिन भौमिक द्वारा लिखी कहानी पर बनी ये फिल्म सुपर हिट फिल्म थी और फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी इसने धूम मचाई थी। शम्मी कपूर, राजश्री, प्राण, मुमताज, जगदीप, सचिन और असित सेन अभिनीत इस फिल्म के निर्माता थे जीपी सिप्पी।
1: मेरी मोहब्बत को ठुकरा दे चाहे मैं कोई तुझसे ना शिकवा करूंगा, आंखों में रहती है तस्वीर तेरी, सारी उम्र तेरी पूजा करूंगा।

भारतीय सिनेमा में 1973 की फिल्म नैना राजश्री की अंतिम फिल्म थी। सन 1954 में पहली फिल्म, फिर 1961 से 1973 तक फिल्मों में सक्रिय रही राजश्री। विवाहोपरांत अमेरिका में बसी और अपने कपड़ों के व्यवसाय के साथ परिवार के साथ अमेरिका में रह रही हैं। आज भी इनकी रुचि फिल्मों में है, यानी कि आप सिनेमा से अभी भी जुड़ी हुई हैं।

हमने अभिनेत्री राशि के सिनेमा के सफर और उनकी अपनी जिंदगी के कुछ यादगार लम्हों को, गीतों को, फिल्मों को आज के फनकार में आपको बताया, या यूं कहिए कि आज के फनकार को सजाया। आलेख और स्वर जी श्याम का, और प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।

0: इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
2: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात्रि के 10 बजे हैं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का आगाज हम कर रहे हैं लता मंगेशकर और एम जी श्री कुमार की आवाज में। बोल गुलजार के हैं, संगीत ए आर रहमान का, फिल्म है दिल से।

अगला गीत आप सुनेंगे दिल तो बच्चा है जी फिल्म से, आवाज मोहित चौहान की है, बोल संजय के, संगीत प्रीतम का।

उनसे गीत का अगला गीत आप सुनेंगे कलाम खान की आवाज में। विशाल शेखर का संगीत है, बोल रजत अरोड़ा के। फिल्म है द ड्रटी पिक्चर।

अरिजीत सिंह की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना। फिल्म है सोनू के ट्रीट के स्वीटी। अगला गीत आप सुनेंगे कबीर फिल्म से, अखिल और तुलसी कुमार की आवाज में, बोल कुमार के हैं, संगीत अखिल का है।

फिल्म संगीत का अगला गीत आप सुनेंगे लव आजकल फिल्म से, राहत फतेह अली खान की आवाज, इरशाद कामिल के बोल, संगीत प्रीतम का।

दिल तो पागल है फिल्म से अभी आपने गीत सुना लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल है, संगीत उत्तम सिंह का। अगला गीत आप सुनेंगे अखिल और ध्वनि भानुशाली की आवाज में, कुणाल वर्मा के बोल है, संगीत अभिजीत वागवानी का। फिल्म है लुका छुपी।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गीत आप सुनेंगे। जावेद अख्तर के बोल हैं, संगीत अनु मलिक का, फिल्म है मैं हूं ना।

राहत फतेह अली खान की आवाज में आपने गीत सुना मौसम फिल्म से। इरशाद कामिल के बोलते संगीत प्रीतम का। फिल्म संगीत का अंतिम गीत हम सुनेंगे वजह तुम थी वजह तुम हो फिल्म से, अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाज में।

वजह तुम हो फिल्म से अभी आपने गीत सुना अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाज में। इसी के साथ फिल्म संगीत का सफर यहीं थमता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात्रि के 11 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए हिंदी में समाचार।

0: हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
2: The council recommended removing arrest powers under GST.
3: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
2: From 25,000 to ₹10,000।
1: टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्रवाई के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
4: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
1: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा, एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि इसके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और उच्च न्यायपालिका और वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीमों का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं की नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में भारतीय सेना की 94वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने वायु सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी वायुसेना दिवस पर देश के सभी बहादुर वायु योद्धाओं को सलाम किया। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिकू कुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और थरुण मान्यपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11:05 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब यही समाप्त होती है। कल प्रातःकालीन 5:53 पर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।